उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हमसे है

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं 101. मुझे कहते हैं साहिल. 8:47 हो चुके हैं. जी जी,
1: सुना है मेरा नाम रिबेका अब्दुल? ओह
0: या,
1: कहीं अखबारों में,
0: अखबारों में, तस्वीरों में कहीं मुझे देखा तो होगा.
1: ऐसा जमाना आ गया ना, बंदा कहते नहीं अखबारों में तस्वीर नहीं आए तो बेहतर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, होप यू डूइंग वेल. और आप सब ने जो है वो अपने दिन का आगाज बड़े अच्छे से कर लिया होगा. मैंने और साहिल ने तो अपने दिन का आगाज जो है वो कर लिया है आते ही इधर उधर. क्यों, आपको मेरी आवाज नहीं आ
0: रही? यहीं से आनी थी.
1: यहाँ से आनी थी
0: जी.
1: फिर इनका माइक ठीक नहीं है, मेरा कसूर नहीं है.
0: अब आपकी आवाज सही आ रही है.
1: सही आ रही है ना?
0: जी जी जी.
1: सो मैंने कहा मैं और साहिर तो आते ही सुबह सुबह. अच्छा ऐसे लग रहा है 10 दिन बाद दिल हल्का करने का मौका मिला अपनी सहेलियां बैठी हुई.
0: हाँ,
1: तो मैं पता है ऐसा हुआ था, उसने ऐसा कहा.
0: इतनी बातें करने वाली ना, कितना कुछ है. लेकिन चूंकि आप कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि ऑफ द ईयर हो रही थी, दिल दुखा देने वाली, तकलीफ देने वाली. बहुत सारे हालात मुल्क के इस तरह के हैं कि मतलब अब छोटे छोटे बच्चों के साथ जो जो मामलात हो रहे हैं, तो वो सुनने के बाद, देखने के बाद, उनकी जो टीवी पे रिपोर्टिंग हो रही है, जो उनके बारे में न्यूज़ आ रही है, तो वो देखने के बाद अभी ये डिस्कशन हो रही थी कि कितनी तकलीफ का बाइस है ये चीज़ें कि हमारे मुल्क में हमारे अपने बच्चे सेफ नहीं हैं. तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखना चाहिए.
1: बिल्कुल साहिल, एंड आई टोटली एग्री. इसके साथ मैं एक और चीज़ भी करूँगी. हम ना कुछ चीज़ों पर कहते हैं कि इदारों ने कुछ चीज़ें करनी है. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स वालदैन की तो है,
0: बिल्कुल.
1: लेकिन इसके साथ साथ एज अ सोसाइटी, मुझे लगता है हमारे पास मिसिंग पार्ट पता क्या है, हम एज अ सोसाइटी हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करनी है ना. सोसाइटी वाला जो हमारा ब्लॉक है ना, हमने उसको बिल्कुल खाली रखा हुआ है. या तो उसका ढक्कन बंद ही कर दिया है, तो या फिर हमने उसका ढक्कन उतार ही दिया है ना. ये उतार ही देंगे. सो आई थिंक वो वाला जो कॉर्नर है ना, उसको हमने खाली कर दिया. जैसे अक्सर हम बात करते हैं नराया जो है मेरी नीस, उसके बारे में, तो हम कहते हैं एक तरबियत हम 2.5 साल, 3 साल, 3.5, 4 साल तक. हाँ. जब तक वो घर में है, स्कूल नहीं जा रही, तो एक तरबियत तो हम करें.
0: बिल्कुल.
1: और एक तरबियत फिर उसकी करेगा सोसाइटी.
0: बिल्कुल.
1: तो सोसाइटी जो तरबियत करेगी, वो कैसे लोग होंगे, उसके कॉलीग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, उसके इर्द गिर्द का सर्कल कैसा होगा. आप हर चीज़ चुन तो नहीं सकते ना. आप कहेंगे जी इस क्लास में ये इसके टीचर नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे सही नहीं लगे.
0: exactly
1: मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, इवन साहिल ये मेरी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं ना माइक्रोफोन पे, हमने सोसाइटी को क्या देना है, ये हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं.
0: बिल्कुल.
1: सो हम जब बात करते हैं कि पेरेंट्स ने करना है और जो ऑफिशियल इदारे हैं उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, ऐसा आप मुझे बताएं, आप कहीं पर चल रहे हैं और आप किसी बच्चे को चीखता रोता हुआ देख रहे हैं, हालात ये हो गए कि लोग उस बच्चे को हेल्प भी नहीं करेंगे, किसी बड़े को हेल्प नहीं करेंगे, हाय हमारे गले ना पड़ जाए, माजर से ये है ना?
0: है, हो रहा है ना.
1: लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि कैमराज लगे हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई बुरी चीज सामने आती है, तो अच्छी चीज भी लोगों को पता होगा कि कैमरा में ये हेल्प ही कर रहा था.
0: बिल्कुल सही है.
1: जिस तरह मैं और मेरी वालदा ना कल एक जगह से वापस आ रहे हैं, तो मैंने देखा दो बच्चे ना जा रहे हैं. अच्छा वो क्योंकि दिमाग में इस तरह से अजीब चीज़ें चल रही होती हैं, मैंने तो ऑन द स्पॉट उनको रोक लिया. मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? वो बच्चे डर गए, कहीं पता नहीं उठा के ना ले जाए. सो कह रही है मैं चीज़ लेने जा रही हूँ. मैंने कहा किसके साथ हो? तो पीछे देखा उसकी अम्मी बेचारी सब्जी ले रही है. सॉरी मुझे इनको देख के परेशानी हुई थी.
0: अगर अम्मी सब्जी भी ले रही तो अम्मी क्यों नहीं लेके गई ये चीज़?
1: और वो आगे बच्चे चले गए ना. वो मुझे साहिल बड़ी परेशानी हुई, तो उनकी वालदा भी देख कर मुस्कुराई, क्योंकि सबको पता है, वो कहती है नहीं नहीं मैं इनके साथ हूं.
0: अच्छा पता है लोग अब इस चीज से इतने अवेयर हो चुके हैं कि उनको पता है कि इस तरह के मामलात हैं, अगर कोई थोड़ा हेल्प भी करना चाह रहे हैं इस तरह है ना, तो लोग थोड़ा सा फिर इस चीज को अच्छे में ले रहे हैं,
1: अप्रिशिएट कर रहे हैं. चाहिए.
0: अच्छा मैं आपको अपना वाक्य बताऊं. कल रात को मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया एक चीज से. अब ये होगी कि अब रोज आना की ड्यूटी ना मैं और मेरी बेगम दे रहे होते हैं, और हम इतने चीज से अब हम थक भी गए क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही. हम कहीं भी जाएंगे, रावलपिंडी मरी रोड से, इस्लामाबाद से कहीं भी, तो लोग मोटरसाइकिल्स पे होते हैं, उनकी बेगम पीछे बैठी होती है. भाई आप अबाए पहन रही है, आप बुरके पहन रही है, ठीक है, आपने दुपट्टा लिया है, ऑब्वियसली हम इस्लामिक कंट्री है, हम ये करते हैं चीज़ें. आपने बच्चा भी गोद में लिया हुआ पीछे, आपको पता है कि आपका बुरका, आपका दुपट्टा टायर में जा रहा है, और हम चीखे मार रहे होते हैं, हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, और आगे से फिर वो पता है कितने वो भी करके ना, उनको लगता है कि जैसे हमने बड़ी बदतमीजी की उनके
1: हाँ
0: साथ, आगे से वो ये भी हमें नहीं फर्क पड़ता. मैं कहता यार गाली भी दे दो हमें, तुम आप
1: सेफ हो जाओ,
0: आप सेफ हो जाओ. क्योंकि देखिए मेरी अपनी सगी भाभी जो थी, एक मेरी कजन की बीवी, उनके साथ ये लाइव वाकया हमने देखा कि हुआ. उनकी चेन गले में थी, वो शहर अट पे फिर गई और इस तरह डेथ हो गई उनकी. मेरा कजन था जी, मेरी मेरे मामू का बेटा, उनकी वाइफ के साथ ये हुआ. मेरी कजन भी बीच में सब गिरे बाइक से, लेकिन वो नहीं बच सकी. तो ये उस दिन से मुझे याद है, और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ यार, जब मैं आई थिंक मैं 19 ईयर्स का था, ये तब की बात है, और अब तक ये एक तरह से मैं अपनी जिंदगी की ड्यूटी दे रहा हूँ। कसम से जब मैं और मेरी बेगम मोटरसाइकिल पे बाहर होते हैं, हम सिर्फ लोगों के यही देख रहे होते हैं कि दुपट्टे उठा ले भाई, दुपट्टा उठा ले, स्टैंड उठा ले, दुपट्टा उठा ले, ये कर रहे होते हैं।
1: इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी आपको बात को।
0: अच्छा, ये इसको लोग थोड़ा सा ना एक फन में भी ले रहे हैं, चीजें भी हैं, लेकिन ये देखें, आप जरा सोचें कि आपको, आपने बुर्का पहनना है, ठीक है, आप देखें उसको पहन के बैठने के जो उसको कैरी किस तरह करना, उसको बैठना कैसे आपके साथ, बिल्कुल आपने दुपट्टा जो है वो आपका टायर में जा रहा है, क्यों जा रहा है, आपको क्यों नहीं नजर आता, या बैठते हुए आपकी सोच में क्यों नहीं आता कि मैं बाइक पे बैठ रही हूँ, दुपट्टा मेरा टायर में चला जाएगा, मैं उसको एहतियात से रखूँ, तरीके से आप देखें वो करें, वरना आप उस तरह के कपड़े कैरी करें जो कि बिल्कुल एहतियात के साथ आप बैठ सकें और मसला ना हो। फिर बच्चे भी बिठाए हुए, गोद में भी बच्चा, आगे भी दो बैठे, अरे खुदा ना खास तौर पर मियाँ साहब पता नहीं किस तकलीफ का, वो जिंदगी से तंग पड़े हुए 120 की स्पीड पर भगा भी रहे हैं, वो रोक भी रहे कि एक आध गिर जाए मेरे सर तो लह जाए, ये भी बड़े मसले ना भाई, ये बिल्कुल हकीकत है कि इसी तरह ही हो रहा होता
1: है। बाइक राइडर्स पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में तो मैं कह ही नहीं सकती, पाकिस्तान में अब किसी भी शहर में चले गए, माजरत के साथ जी जितने भी हमारे जो हजरात बाइक चलाते हैं, मेरे अपने भिनो भी चलाते हैं और मेरे अबू एक ही बार उनके साथ कहीं, जैसे मेरी गाड़ी खरीदने जाना था तो गाड़ी कोई भी नहीं थी, तो दो नौजवान एक मेरे वालिद सर और मेरे भनोई गए हैं जी बाइक पे कि भाई वापसी में एक बंदा ड्राइव करते हैं गाड़ी लेकर। सो पहली बार मेरे भिनो के साथ गाड़ी तो अच्छी, थोड़ा बाइक पे ना पैर हल्का रखा, मैंने कहा मैं अपने वाले साहब को सर कहती हूँ, मैंने कहा सर मैंने आपको कितनी बार इसकी शिकायत लगाई ना अपने भिनोई, हमारे घर में बड़ा
0: आज बैठे तो पता चला है,
1: मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा था, तो अच्छा जब तक बैठे नहीं थे तो पंजाबी में कहते तू एवं अपने भिनोई पीछे पे ही रहनी है, ना तो चंगा है,
0: मेरी आदत जब मैं बैठता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मैं उनसे पूछ सकते यार पता नहीं कोई इनको जरूरत है, कोई हेल्प, कोई जॉब, कोई इस तरह की चीज है तो हम उनको गाइड कर दें या उनको हेल्प कर सकते हैं, तो वो बच्चा मुझे बता क्या आगे से कहता है, मैंने उसे बोला, मैंने कहा तो इतने सारा वो है और मतलब हालात इस तरह के तो बाइकें भी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं बाइक चलाता हूँ ना मैं थोड़ी सी हल्की चला, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर मैं बहुत तेज चलाता हूँ तो मेरे घर वाले फिर मुझे देते नहीं है, अरे यार मतलब ये मेंटालिटी बन चुकी है कि मेरे दोस्त मजाक बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वही वाली बात, लोग क्या कहेंगे,
1: तो उस चक्कर में
0: हाँ इसकी तो कोई वैल्यू इज्जत है ही नहीं है कि इसको कम स्पीड में चलाता है, तो वो उस चक्कर में बाइक नहीं चलाएगा, चलाएगा तो वो उतनी ही स्पीड में चलाएगा जिसमें मरने के 90% चांस है, बचने के 10%, तो मतलब ये मेंटालिटी लोगों की बन चुकी है।
1: अरे पूरी सोसाइटी हमारे यहाँ पर, हम किस चीज पे चल रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं सब बुरी चीज नहीं आती, ये भी तो होता है ना कि लोग कहेंगे ओहो ये तो पीछे रह गई, वो जो बाइक तेज चला रही है आहिस्ता चला रही है,
0: एक दूसरे की टांग खींचने लगेंगे यार, किसी ना किसी को जिद्दी कर
1: देगा। तारीफ आपने कभी सुनी है किसी से, मैं देख के कहूं अरे साहिल आपको ब्लू शर्ट ना बड़ी अच्छी, ये तो हम कहते नहीं है, अरे साहिल आप अजीब रंग काला काला लग रहा, क्या हो गया साहिल,
0: हाँ।
1: दिन क्या,
0: अरे ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये तो होता है,
1: बट एक्चुअली मैं आपको ऑनियर बताऊं साहिल, हमारी मुलाकात तकरीबन 10 दिन बाद हुई है, 11-12 दिन बाद, आई वांट टू यू लुक फ्रेश,
0: हाँ मैं बताऊंगा कल मैंने एक रेमेडी की थी उसकी वजह से मैं फ्रेश लग
1: प्लीज मुझे
0: मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कल, अब मेरे हाथ देख थोड़े बेहतर नहीं लग रहे, कितने काले हो गए थे, घर किधर चले गए,
1: मैं तो के निकली नहीं, इसलिए हाथ पैर साफ लग रहे
0: हैं, साफ लग रहे हैं,
1: वी हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर, मतलब बुरी साइड तो होगी,
0: बिल्कुल कोई चीज ले लेना, हम कुछ भी कर लें तो हमारी बर्दाश्त नहीं है, कोई कुछ ले ले तो मतलब अच्छा पैसे कहाँ से किस तरह, मतलब लोगों को ये नहीं होता कि उससे इसका अप्रिशिएट, यार वाओ जबरदस्त है यार, अल्लाह तुम्हारे नसीब करे,
1: ये एफर्ट ना वो नहीं है, मैं आपको मैंने भी जब
0: बातें करेंगे रिबेका सॉरी बातें करेंगे, मतलब एक आपस में बैठे हुए डिस्कस किसी तीसरे को कर रहे हैं जिसने को कामयाबी हासिल कर ली है तो इंज कीता होगा, इस तरह मिलता है कुछ यही हुआ होगा, हर गलीज घटिया गंदी चीज पे पहुंच जाए, हमारे माशरे में ये चीजें बहुत
1: कॉमन
0: हो चुकी है, मैं तो फिर वही कहूंगा जब मैं हर बार बैठता मैं तो मैं सीएम साहिबा को जो है वो मैं यहाँ से बैठ के पुकारता हूँ, मैम प्लीज इन चीजों को भी पकड़ लें, प्लीज आके अब आप कर लें ये काम भी, इन लोगों को भी पकड़ लें, क्योंकि देखिए इतने मामला ठीक हो रहे हैं,
1: कैसे काम कर रहे हैं, कैसे of course there is a vision, जब आपके पास कोई विजन होता है और आप डेफिनेटली,
0: अभी पिछले दिनों आपको पता चला कि वो बहुत कम सोती हैं,
1: जितना उनके पास
0: काम है वो लेती हैं, वो कहती हैं मैं सो ही नहीं पा रही, मेरी 2 घंटे की भी नींद पूरी नहीं होती है, मतलब यार किसके लिए इतना कुछ, मैं तो
1: नहीं,
0: बड़ा,
1: लेकिन आप सोचिए पंजाब में फिर जो चीजें हो रही हैं नजर आ रही हैं।
0: देखिए इसका जवाब जो है वो सिंध वाले देते हैं, इसका जवाब जो है वो फिर सारी दुनिया देती है। कैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे, बड़े बड़े नाम है, वो सब यही कहते हैं कि भाई जो पंजाब जाओ तो लगता है, पता चलता है कि भाई हम कहीं आ गए हैं।
1: साहिल मैं ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। अच्छा ये अभी की नहीं बात, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, दिसंबर, अरे सॉरी 2025, लास्ट ईयर दिसंबर में हम लोग जैसे ही मैं वापस आई तो हम लोगों को कुछ एक मखसूस जगह पर विजिट करना था। सो हम लोग अपने मतलब घर से, हम लोग मरियम आबाद एक जगह है, ये मोटरवे पे आती है लाहौर मोटरवे पे, मरियाबाद से मरियमाबाद हम लोग जा रहे थे, मोटरवे से उतरे हैं। अब मुझे नहीं पता गुजरा वाला आता है गुजरात इस तरह कुछ जगह रास्ते में, मैं देखती हूँ वहाँ पर भी ग्रीन बस चल रही है। ये सिर्फ पिंटी लाहौर में नहीं शुरू हुई थी, मेरी मम्मी कहती क्यों मैं पंजाब से नहीं आता। ओ यस, मेरे ना एक प्रोसेस नहीं ना माइंड आपका करता, वहाँ पर भी रोड्स बन रहे हैं, साफ सुथरा,
0: लोगों को कर्जे मिल रहे हैं, घर बनाओ, अपना घर बनाओ, अपने प्लॉट पे बनाओ, अपना प्लॉट खरीदो,
1: व्हाटएवर
0: बना बनाया ले लो, मतलब और चाहिए क्या आपको? यही तो सब चाह रहे थे ना हम अपने मुल्क में, अपने लिए यही सब चाह रहे थे,
1: वही बात सब है ना, हम अच्छी चीज। अच्छा ये सब अच्छा जो हो रहा है ना, अभी भी गुंजाइश तो बेतहाशा काम करने की
0: है।
1: अच्छा वो तो हम सबको पता है। अच्छा अब जो 10 में से, फॉर एग्जांपल आप 10 नंबर्स दें, 10 में से जी आप सोचे जी चार हिस्से जो है ना, 4% काम हो रहा है, 6% अभी भी गुंजाइश है बेहतर होने, हम उस 4% को ना अप्रिशिएट ही नहीं करते,
0: नहीं कर
1: उसको देख ही नहीं रहे। लेकिन उस 4% को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम ज़हनी तौर पर जो ऑक्यूपाइड हैं, ज़हनी तौर पर हम जो बिल्कुल एक दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है ना हमारी सोच, वो आई थिंक थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। तो खुदा रहा थोड़ा सा चीज़ों को अप्रिशिएट करें, और मैं और साहिल को जैसे ही जनाब अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथिर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक जिम्मेदार और अमन पसंद मुल्क की हैसियत से सामने आया है। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तामीरी रवाबित के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। फ़लस्तीन और लबनान में इसराइली फोर्सेज ने मज़ीद 3 अफराद को शहीद कर दिया है। और ख़वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ब्रिस्टल में नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

AE Power, the ultimate power solution. सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मजेदार किस्म के आड़ू शाड़ू खा लिए हमने जी। पीच लेकर आई थी रिबाका, कटिंग करके साफ सुथरा छिलका उतरा हुआ, काला नमक ऊपर डाला कि काली मिर्च डाली थी, वही मैं बोलूं काली मिर्च तो इतनी तुम्हारी अम्मा कभी भी ना दे लाने के लिए इतनी महंगी है यार, बहुत मजे वाला नमक है। कहाँ से लिया तुम लोगों ने? इतना साफ सुथरा तो नमक नहीं होता
1: वो,
0: लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। और अब हम वापस आ चुके हैं अपनी दुनिया में और हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स को। 111 111 इज नॉट द नंबर या 9202540 9202540051 का इजाफी कोड अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवाह में आप नहीं रहते तो फिर आपने 9202540 9204 5050। हेलो 9202540 फिर चेंज हो गया? झूठ, गलत नंबर बता रही है आप लोगों को। ये अभी कहीं किसी और महकमे में लग जाएगा। देखिए कॉल्स आना शुरू हो गई है। 9202540 इज द नंबर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी मजेदार बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी पोस्ट जो है वो मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि संडेज में मैम आराम से उठती हैं जी। बिल्कुल हमारी पोस्ट नहीं लगी और मैम ने देखा भी नहीं है, लेकिन चोके नो प्रॉब्लम, मैम को नहीं उठाते, सोने देते हैं।
1: साहिल ये क्या, मैं अपनी अम्मी नहीं, मैं अपनी मैम को बताऊंगी, अम्मी वाला तो काम ही नहीं है।
0: मुझे याद ही नहीं रहा कि हम कंबाइन शो कर रहे हैं, दैट्स तुम्हारा माइक नहीं खुला हुआ था, इसके लिए मुझे माफ कर दे रिबेका, मैं कान पकड़ के तुमसे
1: नहीं आती टोपी उतार के आपको ज्यादा हर्ट करेगा।
0: अच्छा आज सुबह सुबह मेरी बहस हो गई बंदे से, मैं आया था पेट्रोल भरवाने के लिए, तो पेट्रोल भरवा के मैं आ रहा था बाइक पे, जब मैंने सोचा ना पेट्रोल डालो तो वो उससे ना पेट्रोल की नोजल जो है ना वो बिल्कुल बाइक की टंकी के अंदर डाल दी, मैंने कैसे बाहर करूँ ना, मुझे नजर आए नहीं इसमें आ रहा
1: होगा,
0: तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा नोजल बाहर रखे, मुझे नजर आए ना कि पेट्रोल जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा भाई हालात इस तरह के आप रखें मुझे नजर आए तो कहीं और से डलवा लेते ना, ये वो करके बहस शुरू कर दी उस बंदे ने और उस दौरान से डाल भी दिया पेट्रोल,
1: और वो सुबह सुबह सोचे कितनी उसमें एनर्जी थी कि उसने
0: और फिर मुझे कहता है कल से बोतल ले आना, मुझे उसने तो बड़ी बातें सुनाई रिबेका,
1: मुझे लेकर जाए बदलाव उतार के आऊंगी
0: फिर उसके, हाँ बदलाव उतारना पड़ेगा दोस्त, तो मेरा बदलाव लेना पड़ेगा
1: तो पिटाई लगा दूंगी, हाथों आप हाथों भाई हो जाएगी। अच्छा
0: हम तो इस तरह के दोस्त है, अगर कोई एक को छेड़ दे ना तंग कर दे कोई भी तो दूसरा जबरदस्ती का पंगा ले ले
1: भाई, क्यों नहीं भाई, गलत बात है, मेरे दोस्त को बात कर रहे हैं आपको पता नहीं
0: तो
1: मेरा?
0: अब वो इतना कॉन्फिडेंटली मुझसे लड़ रहा था, अब उसको ये नहीं पता था कि वो जो पंप वाला मैनेजर बैठे वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। मैंने भी दूसरे से पूछा, मैंने कहा किधर है, तो कहते आने वाले, तो उसके बाद उसकी शक्ल थोड़ी सी वो होगी कि यार ये किसका पूछ रहा है और क्या हो गया अचानक, मैं वहां से निकल आया। बहरहाल मैंने क्या कर, मैं क्या ही कर लूंगा किसी, मैं गरीब किसी का
1: मत, नहीं क्यों आप क्या, लेकिन वो हम मतलब अल्लाह वाह करे खौफ खुदा आ जाता है क्या सुबह सुबह किसी को। अच्छा मैं तो लिटरली समझा, पता क्या करती हूँ, मुझे मैं ये कह देती हूँ छोड़ो क्या मुंह लगना, मेरे घर वाले कहते ये क्या, मैंने कहा अम्मी आप लोग को क्या लगता है कि खामोश हो जाने वाला जो शख्स है क्या वो कमजोर
0: है, डर गया? नहीं ऐसा नहीं है, आप अपनी भी इज्जत बचाएं और अपना वक्त बचाएं झगड़ों से लड़ाइयों से आगे बढ़ें,
1: एनर्जी बचाएं ऐसे लोगों से तो मतलब बात करके आपकी एनर्जी जाती है। खैर 0519202540 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमसे शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।
2: ओ मां सजा बाड़ी बच्ची वहां परदेसी तेरे आगे वेलकम बिस्मिल्लाह और कादे मोहतरम साहिल खान और बेटी रा बैकअप वेलकम बिस्मिल्लाह दिया है अपनों।
0: बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं
2: जी। बस तुम्हारी जुदाई ना एक एक साल ना गुजरा है बादशाह,
1: एक एक साल का जुदाई का दिहाड़ा गुजरा
0: भाई, आपने क्यों
2: आपकी जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बेटा, तो आप पर देती है तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी खूबसूरत आवाज की मालिक दोनों मेरे उस्ताद मोहतरम साहिल खान और बेटी का बाइका।
0: आपको पता है मैं पूरे इन 10 छुट्टियों में ना कितनी दफा घर में ना रबाई खां बेटी जो है ना वो बुलाता रहा अपनी बेटी को।
2: अच्छा अच्छा तो हाँ। मैं सोच रहा था तो आपने बोला नहीं आज।
0: हाँ मैं तो बोलता रहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, बड़े अच्छे स्टाइल में बोलते हैं रबाई का बेटी
1: उस्ताद है
2: हमारे बेटे, तो गुड शो कमाल शो मालूम
0: शुक्रिया
2: और जबरदस्त कंपनी का आपको मुबारक हो दोनों को,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: और बेटा मैं ये कहना चाहता उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम भी अब हमारे तो मैं जो है कि जो मोहर्रम और हम के प्रोग्राम पेश किए गए, मैं अपनी जो हमारी बेटी है, मैं उन्हें कहता हूँ ना, जब उन्हें कहता हूँ कि आप हमारी बेटी है तो मेरा उस्ताद कोई नहीं है, तो वो कहने लगे कि मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपकी उस्तानी भी हूँ, कौन है सदा पुरानी हमारी। तो उन्होंने मोहर्रम आराम के बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किए हैं और मैं खसूसी तौर पर आपको पूरी टीम को और बेटी सदा पुरानी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: गहराइयों से पेश करता हूँ कि मोहर्रम आराम के इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ जो है
0: ठीक
1: है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी।
2: मैं बेटा मैं एक शेर और दोनों की नजरें करना चाहता, लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि दूसरों को भी टाइम देना चाहिए।
0: जी जी, ये आपने ठीक कहा।
2: देना चाहता हूँ एक तो तेरे आवाज साहब है हमारे सिंगर उस्ताद है उन्हें सलाम, और अर्शद रक्षा साहब को सलाम पेश करता हूँ, और इजाज मुगल साहब को, और हमारी एक बेटी पता नहीं आज आई या नहीं आई, पलाका बे
0: मलाय का बेटी। जी जी,
2: उन्हें भी हमारी तरफ से सलाम अर्ज करते हैं। शेर एक नजर करना चाहता हूँ आप दोनों की।
0: जी जी,
2: नजर करना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत शेर है कि मेरे आंसू का हर कतरा तेरी निशानी है साहिल खान राबाई का, मेरे आंसू का हर कतरा तेरी निशानी है साहिल खान राबाई का, जो तू देखे तो मोती है, जो तू देखे तो मोती है, जो ना देखे तो पानी है साहिल
0: और रबाए का।
1: बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा साहिल।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे कसम से शुगली है ना रबाए का,
1: यही तो मिस किया
0: 10 दिन वाकई कसम से। और मैं कसम से घर में कितनी दफा मनहा को जो है वो इस नाम से मैं बुलाता रहा, रबाए का बेटी। वो भी कहते पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं,
1: पापा कुछ नहीं
0: उसको नहीं, उसको बेचारी को अभी तक समझ ही नहीं आई कि बात क्या है, ये मसला हाँ, क्या है,
1: उसको क्या पता
0: क्यों बोले मेरा नाम मन्हा है पापा।
1: बाइक का बेटी कहने का मजा है ना बेटा।
0: हाँ जी, आप एक और कॉल की जाने बढ़ेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अच्छे से कॉल है यहाँ पे, नो चांस। जी एक और कॉल, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आओ ना उठा लो भाई कॉल अब। ये देखिए आ रही है पर मेरे ख्याल से ज्यादा कॉल होने की सूरत में, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है और फिर भी कॉल जो है वो ड्रॉप होती जा रही हैं।
1: 0519202540 इज द नंबर, आप कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमसे शेयर करते, क्या कहना चाहते हैं जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, हमारा मसला नहीं है, हम कॉल ले रहे हैं,
0: हम तो कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करें, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं
1: अच्छा,
0: वो
1: बैक टू बैक काफी कॉल्स ना ड्रॉप हो गए हैं, तो मुझे तो बस यही डर रहता है ऐसा ना हो कोई मसला आ जाए।
0: हाँ जी, मुझे भी यही इशू लग रहा है कि बहुत सारी कॉल्स, अब आई एक और कॉल। जी
1: जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है सर, कहाँ से?
3: नूर पंजाब से।
0: कौन सी नूर पंजाब से?
3: सन्ना नूर।
0: सलमा नूर,
1: सलमा या सना?
3: सलमा नहीं, सन्ना।
0: सन्ना,
1: मुझे लगा कहेगी साहिबा नूर।
0: सना नूर होता है, सन्ना कौन सा नाम होता है, सना नहीं
1: सना, सना क्या
3: है? हाँ जी, मैंने आपसे बात करनी नहीं है, मैंने रुबैका जी से बात करनी है।
1: हाय मेरी शहजादी, मेरी रानो, इधर आ माँ सबके, क्या हाल है?
0: जी बोले
1: सना, क्या हाल है?
3: मैंने आपसे बात नहीं करनी
0: है, तो उनसे कर लो, करो तो सही ना, रुबैका फोन वहाँ रखने से बात नहीं हो जाएगी।
1: नहीं सना, क्या हाल है?
0: रिसीवर उठा लो,
1: पर्सनल पे बात करो।
0: भाई
1: सना आवाज आ रही है? सना को मेरी आवाज नहीं आ रही साहिब।
3: आप आवाज आ रही
1: है? हाँ सना, क्या हाल है?
0: सना बोलो, मैं रिबाइका बेटी बोल रही हूँ।
3: आप क्यों इनका नाम बिगड़ाते हैं?
0: बिगड़ाते हैं
1: क्यों? बिगड़ाते हैं,
0: बहुत अजीब टर्म, बिगड़ाते हैं।
1: सना जरा इनकी क्लास लो, डांटो इनको, आने
3: डांटो, हटो, बात करने दो भी आने।
0: ओहो घर में झगड़ा हो गया, तो बात ही पहले भी अपने मसले हल करो फिर हमसे बात करें।
1: सना
0: जी, और कॉल हमारे पास कॉल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है लिस्टर, आप मेरे को गलत फहमी मत रखिएगा, कॉल्स बहुत हैं। प्रॉब्लम ही हो गया यार, क्लैश वो हो रहा है, क्लैश कह रहा हूँ, क्रैश क्लैश हो गया हमारे।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: अरे कुछ उठाई नहीं है अभी वहाँ पे, वो ब्लिंक करती गिर रही है कॉल्स। तो बहरहाल जी एक गाना शामिल कर लेते हैं, उसके बाद लौट के वापस आएंगे।
1: सना दोबारा कॉल करना, अभी तो तुम डांट रही थी साहिल को, दोबारा मेरी बहन कॉल करना प्लीज। तुम्हारी कॉल तो मैं रिसीवर उठा के ले लूंगी।
0: ऑनियर नासी तो मुझे सुना देना इसको क्या बोल रहे हैं यार, बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल जी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं आपके लिए ये ट्रैक, एंजॉय कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा।

0: वेलकम बैक वंस अगेन लिसनर्स, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के से। अच्छा, हम ऑफिस जा रहे हैं, ढेरों कॉल्स आ रही हैं, लेकिन आपने ऑन एयर बात करनी है। 0519202540 इज द नंबर, आप कॉल कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी नंबर दोहरा रही होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है, मेरे लिसनर्स सब कहते हैं आप लोग नंबर बहुत तेज बोलते हैं। सो आई वाज लाइक, नहीं, नंबर तेज नहीं बोलते, शायद तेज ही बोलते हैं। 920254 नंबर है जिस पे आपने कॉल किया। मैंने कहा मैं अक्सर नंबर दोहराती हूँ तो मुझे याद आता है लिसनर्स।
1: अच्छा, मैं उर्दू में बोलता हूँ ना, मेरे से नंबर गलत हो जाता है, मैं फिर इंग्लिश में ही बोल देता हूँ। इंग्लिश मीडियम, उर्दू तो है नहीं,
0: उर्दू मीडियम
1: तुम तो रोशनी पब्लिक, यू नो रोशनी पब्लिक। बहुत सारी कॉल आ रही थी, मैं से टेलीफोन लाइन पे कौन मौजूद? हेलो,
0: मैं अपनी एकेडमी का नाम ये रखूंगी, आई लाइक इट।
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हेलो, आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे।
1: मैंने बोल दी।
0: मिले जी मेरे यार।
1: जी, और कॉल्स हमें आ रही हैं, कसम से आ रही हैं, लेकिन फिर वही मामलात हो गए हमारे, लेकिन नो प्रॉब्लम। मुझे वाकई लग रहा है हमारे टेलीफोन सेट का इशू बन गया। देखिए, लाइट ब्लिंक होती है, वो होती रहती है ना, वो ये हो नहीं रही है, दो दफा ब्लिंक होकर रुक जाती है, फिर कॉल ड्रॉप हो जाती है, फिर हो जाती है, तो ये चीज हो जाती है, लेकिन नो प्रॉब्लम।
0: यू फूक मारिंग?
1: नो, आई एम नॉट मारिंग द फूक, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद
0: पाकिस्तान मौसम आती तब्दीलियों से मुतासर
1: तरीन ममालिक में शामिल। आपको पता है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है वो बारिशें और सैलाब का खतरा भी बताया जा रहा है। अल्लाह ताला रहमत की बारिशें करे जी, और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं तमाम लोगों के लिए कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से बारिशों से हम लुत्फ अंदोज हो चुके हैं, हो सके, कोई मसला ना हो। वाओ, यू माय ट्रू फ्रेंड। वाओ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मोहम्मद नवाज बात कर रहे
1: हैं। मोहम्मद नवाज साहब कहाँ से कॉल की?
2: पिंडी से।
1: पिंडी से? पिंडी से किस जगह?
0: पिंडी बॉय कॉल कर रहे हैं। पिंडी बॉय
2: रवाज।
1: रवाज से कैसे हैं आप? ठीक हैं
2: जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे?
2: ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम आपका अच्छा है, तो थोड़ा सा प्लीज आप सीरियस प्रोग्राम किया करें, ठीक है ना?
1: अच्छा,
2: ठीक है। आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, ये असली मजाक जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। प्रोग्राम के दौरान आप प्राइवेट प्राइवेट जिस जगह पे भी हो, असली मजाक चलता रहता है, ठीक है ना? तो लोग सुनने वाले और आपकी जबान से कोई अच्छी बात सुनना चाहते हैं,
0: आपकी
2: से वो कुछ सबक हासिल करना चाहते हैं कि हमारा माशरा जो है, हमें क्या, जैसे आप बता रहे थे मोटरसाइकिल पर मैं ड्यूटी करता हूँ, कोशिश होती है लोगों को बचाने की कि यार ये दुपट्टा नीचे आ रहा है, इस बात पे लोग गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन आपकी जो कोशिश है ना वो सही है, ऑफिसर यही कोशिश होनी चाहिए ताकि आपकी जबान से अच्छा मैसेज जाए, दुनिया सुन रही है, ताकि उससे कुछ न कुछ जो बच्चे या बच्चियां वो सबक हासिल कर सके उस गुफ्तगू से, ताकि वो आपके लिए दुनिया और आखिरत में भी उसका अजर और सवाब मिले। हमारी नीयत ये होनी चाहिए ताकि दूसरा क्या बुरा कहे, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू होगी ना, वो एक बुजुर्ग कहते हैं ना कि मैं दरिया के किनारे पर बैठता ना, तो इधर बिच्छू था, उससे जब मैंने निकालने लगता था ना, वो डंग मारता था ऊपर से, उसने देख पा रहा, उसने कहा यार ये आपको बार बार डंग मार रहा है, तो आप इसे निकाल रहे हो। उसने बोला कि यार इस फितरत है डंग मारना, मोमन की फितरत है उसको भला करना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, अगर आपको किस बात से आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं, तो
2: मैं ये चाहता हूँ कि देखे ना, ये जो आपका प्रोग्राम है बहुत अच्छा से मैं सुनता हूँ, लेकिन ये जो आपका तरीका का है ना, प्लीज मुझे नहीं अच्छा लगता।
1: अच्छा,
2: इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आपके पास माइक है, आपकी आवाज दुनिया भी सुन रही है,
1: ठीक है।
2: जब आप जितनी अच्छी गुफ्तगू करेंगे, आपके नीचे जी हम जो मोमन है ना, मुसलमान है, कलमा पड़ा हुआ है
1: जी जी,
2: तो हमारे जो ईमान है कि अकीदे का हिस्सा है,
1: अच्छा अब आप हमारी भी बात सुन लें, अब आप हमारी भी बात सुन लें, ठीक है, अब आप मेरी बात सुनेंगे
2: जी।
1: मैम मेरी बात सुने, आप कब से प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: मैं तकरीबन एक साल हो गया।
1: नहीं नहीं, आज आज की बात कर रहा हूँ मैं, कितने बजे से सुन रहे हैं आप?
0: करते हुआ
1: आप मुझे ये बताएं कि कितने बजे से आज सुनना शुरू किया आपने?
0: एक साल तो मुझे वापस
2: आज मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया सुन रहा।
1: हाँ, तो फिर इसका मतलब ये कि आपने हमारा प्रोग्राम सुना ही नहीं है। ठीक है, पहले तो आप अपना पूरा टाइम निकालें, होमवर्क करा करें प्रोग्राम पे, उसके बाद आके अपना फीडबैक दें। मैं कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हमने प्रोग्राम का आगाज किया उन मासूम बच्चों से जिनके साथ इस मुल्क में परेशानियों का बाइस बने, उनके पेरेंट्स के लिए मुसीबत बनी, छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादतियां हुई, हमने उसको टॉपिक को पहले अपने कवर किया। हमने उन माँ बाप की तकलीफों को, चीखों को कवर किया। हमने इन बातों पर पहले टॉपिक अपना डिस्कस किया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी खातून का बुरका या दुपट्टा टायर में फंस जाए और उसकी जान चली जाए, उससे बेहतर यह कि मैं चीख चीख के इस पैगाम को ऑन एयर दूं कि खुदारा आप अपने दुपट्टों को, बुरकों को बैठते हुए संभालें, क्योंकि आपने गोद में बच्चे लिए होते हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसमें जान भी जा सकती है। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, तो पब्लिक सर्विस मैसेज है और बहुत खूबसूरत मैसेज है। ठीक है, तो फिर आप किस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं?
0: बिल्कुल
1: ऐसी है।
0: चले, इसके अलावा कुछ और
2: सदका जारी है, आपके नियत में ये है कि यार मैंने आधा घंटा ड्राइव कर दिया है, एक घंटा ड्राइव कर ले, आपके नियत में ये है कि मैंने ये नेकी वाला काम करना, वो तो आपका सदका जारी है।
1: भाई अगर मैं ऑन एयर बताऊंगा किसी को कि आप ऐसे एहतियात करें तो ये तो अच्छा ना। अगर मैं अकेला रोड पे ये काम कर रहा हूँ और एक माइक्रोफोन से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज दूंगा तो वो तो ज्यादा अच्छी बात होगी।
2: आपका मुझे बहुत है, ये मैंने कब कहा कि आपने गलत बोला है।
1: अच्छा, दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रोग्राम है ना वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। हमने हंसी मजाक ही करनी है, लोगों से बातें करना, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है। अगर
2: जी
0: जी
1: जी जी हमारा फॉर्मेट,
0: थैंक यू सो मच,
1: कॉल भी ड्रॉप हो गई है, लेकिन बहरहाल चले इनकी अपनी
0: एक अच्छी बात ये साहिल के हम हर तरह का हमारा जो लिसनर है हाँ। जो सुन रहा है वो अपनी राय का इजहार कर
1: और मैं इनकी राय की बड़ी कदर कर रहा हूँ। वो नहीं, ये तो अच्छी बात है, इन्होंने आके चले बताया, इनको शायद आइडिया नहीं था हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का।
0: उन्होंने कहा एक साल से आप लोग को सुनो, मैं
1: साल तो हुआ ही नहीं है,
0: पाकिस्तान वापस आए नहीं,
1: हुआ
0: चार महीनों में इकट्ठे शो
1: हो सकता है। मे भी मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ हमें नहीं किसी और को भी इस तरह की चीजें करते हुए सुना हो, या थोड़ा सा कोई ऐसी चीज किसी प्रोग्राम में हो गई हो जिनको थोड़ी सी मायूब लगी हो या इस तरह की चीज हो, तो हो जाती है चीजें।
0: चॉइसेस हैं, जैसे मैं कभी कभी बहुत फनी चीजें ही देखना पसंद करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेसफुल चीजें नहीं देखती।
1: देखिए
0: स्ट्रेसफुल कॉन्टेंट कर रहा है, मैं उसको बुरा तो नहीं कह रही,
1: नहीं कह सकते
0: स्ट्रेसफुल लोगों।
1: दूसरी चीज हमारा तो हमें तो बिठाया इसीलिए गया कि लोगों को हंसाएं भी, इंटरटेन करें, इतनी तकलीफ में बंदा बैठा है, हम तो है ही मस्करे जी, मतलब सीधी सी बात है, इतनी तकलीफ में लोग हैं, परेशानियों में हैं, उनको हंसाना अगर हमारी वैसे किसी के लबों पे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाए तो ये सबका जा रही है।
0: अब देखिए वैसे भी आपके साथ बैठना साहिल 3 घंटे वो मेरे लिए कितना मुश्किल
1: और मेरे लिए कितना मुश्किल है कि एक ही चेहरा मैं रोज आना देखता रहा, मतलब देखो जरा सोचो रेबेका,
0: देखिए हमारा दुख तो समझ ही नहीं रहे हमारा दुख भी तो कुछ सुने, मतलब
1: मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे यहाँ बात करने से पहले होमवर्क नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए।
0: That's why I say sometimes let go. मैंने भी
1: हाँ जी बिल्कुल let go ही करने वाली बात है हाँ। क्योंकि अगर यहाँ पे भी हमारी मैनेजमेंट होती कोई होता ना तो वो पकड़ लेता आकर यहाँ पे बैठ जाते, हाँ जी दसो जी की मसला है बताए, क्योंकि देखिये आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ, हम पिछले 8 बजे से बैठ के जो कर रहे हैं आपने वो नहीं सुना, आपको पता ही नहीं हम क्या कर रहे
0: हैं। हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हमने हंसी मजाक को जो है वो इंटरटेनमेंट रखना है और बाकी दिन मुख्तलिफ 101 पर ही मुख्तलिफ शोज हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ औकात में
1: लेकर आते हैं शोज
0: कंटेंट के साथ शो लेकर आते हैं, कोई हंसी मजाक करता है तो कोई नॉलेज, कोई कंटेंट से भरा हुआ, तब हर किसी का अपना एक तरीका।
1: मुझे बड़ी अच्छी बात इनकी लगी कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमारे यंगस्टर्स, हमारे आजकल के बच्चे बच्चियों के बारे में हो, अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के बारे में
0: हमारा
1: के बारे में
0: इंफोटेनमेंट है, नॉट इवन इंटरटेनमेंट, इट्स इंफोटेनमेंट शो है। साहिल और रिबेका हफ्ता और इतवार आके जो है वो इंफोटेनमेंट पे शो करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन भी है और इंटरटेनमेंट भी है। वो अब आप पे है कि आपको कौन सा शो का हिस्सा अच्छा लगता है
1: और कौन सा नहीं अच्छा लगता। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो ने इसमें एक ही है कि आपका दिल
0: इंटरटेनमेंट शो है। साहिल और रिबेका हफ्ता और इतवार आके जो है वो इंफोटेनमेंट पे शो करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन भी है और इंटरटेनमेंट भी है। वो अब आप पे है कि आपको कौन सा शो का हिस्सा अच्छा।

0: तैमूर भाई चकवाल से रेबेका के दोस्त।
1: तैमूर है एक चकवाल वाला,
2: ये मेरे वाले तैमूर है ना। तैमूर
1: किधर तुम्हारे
0: वाले? चकवाल वाले तो सबसे पहले तो बात ये है कि बड़े दिनों के बाद आपको सुना कि मारम के प्रोग्राम हो रहे थे।
2: जी जी।
0: तो उसके बाद आप आए, बहुत अच्छा लगा।
2: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत अच्छा लगा। हम आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, बच्चे भी मिस कर रहे थे, जो छोटे बच्चे होते हैं सुनने वाले,
1: छोटे छोटे।
0: शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको टाइम मिला।
2: बहुत शुक्रिया। ये देखे मोहब्बत, देखे मोहब्बत, देखे इन लोगों की।
0: मारम के जो प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे हुए। वन वन पर
2: यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुहर्रम के प्रोग्राम कब हुए वन वन पे? हमें क्यों निकाला है इन्होंने बाहर? हमें नहीं बुलाया इन्होंने।
1: सीरियस कौन?
0: नहीं, वो मतलब बैक टू बैक होते रहे ना।
2: अच्छा, बैक टू बैक होते
0: थे। जी जी, टाइम लगे मतलब रिकॉर्डिंग होते थे ना।
2: जी जी जी, मेरी नींद आप ही करती थी।
0: अच्छे हुए हमने सुने वो सब। फिर अच्छी जो बात है वो मेम साहब की, वो ये है कि मैं जो पूरी दुनिया सब सुन रही है कि उन्होंने मुहर्रम में जब न्यूज की जो न्यूज आती है ना, उससे पहले एक प्रोमो जो चलाया जाता है जिसमें म्यूजिक होता है, वो म्यूजिक भी मेम साहबा ने ऑफ कर दिया था। अपनी आवाज वो मतलब प्रोमो चला रहे थे। वो सबसे ज्यादा मुझे ये खुशी हुई कितना एहतराम किया आप लोगों ने।
2: जी बिल्कुल।
0: तो आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
2: बहुत शुक्रिया दोस्त तैमूर। यकीन करें बड़ा दिल खुश होता है जब आप लोग आकर हमारी कोशिशों को सहराते हैं कि हमने इतना अच्छे से काम किया, हमारी काविशों को।
1: टीम बहुत मेहनत कर रही होती
0: है, क्योंकि मैं मतलब वक्तों ये सुनता रहा वन वन पे, और बहुत अच्छे तरीके से रात का भी पूरा मैंने सुना, दिन का भी सुना, जो जो भी आते रहे अच्छा बोलते रहे। बेशक रिकॉर्डिंग था लेकिन अच्छा था, मैंने इसको सराहा है और सबने सराहा होगा। तो वैसे भी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो रहा है तो एक दो नज़म सुना दूं लेने।
2: जी जी जी, शोर शोर जरूर, क्यों नहीं।
0: सितारे बांटता है वो ज़िया तकसीम करता है, सुना है हब से मौसम में हवा तकसीम करता है। तुम्हारी याद कुछ ऐसे मेरे दिल पे उतरती है जैसे जोशी के लिए दिया तकसीम करता है, उसी की अपनी बेटी की हथेली खुशक रहती है, जो बूढ़ा धूप में दिल पर हिना तकसीम करता है। उसे रोको के बाज आए सरासर ये है पागलपन, जो बैरों के महल्लों में सदा तकसीम करता है, और लास्ट सब के लिए उसी से मांगे तू इरफान, उसी से मांगे तू इरफान, सादक छोड़ दे सबको, जो पत्थर में वकीरों को गजा तकसीम करता है, सुना है अब से मौसम में हवा तकसीम करता
1: है। बात है तैमूर, वेरी गुड।
0: सब इतने बहुत अच्छे प्रोग्राम थे आप, बाकी सब जो है जितने भी घरों में बैठ के सुन रहे थे सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान पाकिस्तान
2: जिंदाबाद,
0: हमेशा जिंदाबाद।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया, अभी बड़ी मजेदार कॉल थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु।
2: जी
3: महफूज बात कर रहा हूँ।
2: जी महफूज साहब, कैसे?
3: तो आपको पता ही है।
2: जी जी
1: है महफूज साहब, मैं तो बूढ़ी होगी, दोबारा बता दो
3: नाम है।
2: जी जी जी जी
3: जी, साहिल भाई क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है
3: जी। रेबेका साहब आप बताएं।
2: शुक्र करे साहिबा बोल रहे, बेटी नहीं बोल रहे, भाई का बेटी।
1: महफूज साहब मैं बिल्कुल खैरियत से।
3: माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगु है, बड़ी अच्छी बात है। आपके फर्स्ट 10 दिन जो है मुहर्रम के कैसे गुजरे?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, और जाहिर ऑब्वियसली गमे हुसैन तो सभी को है, तो हम भी घर में थे और इन चीजों को।
3: शाह राजा को प्रोग्राम था, उसमें मैंने बात की थी कि ये मुहर्रम के जो पहले 10 दिन होते हैं इनमें अच्छे से अच्छा खाओ नहीं लगता है कि अच्छा खाया, अच्छे से अच्छा पहनो नहीं लगता है, एक उदासी की कैफियत ही रहती है।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
3: तो आपने माशाल्लाह जो अभी उस पर काफी देर अभी मैं सुन रहा था, एक कॉलर आपसे बात कर रहे थे, तो ऐसी आगाही बार बार होनी चाहिए। मेरी आंखों के सामने 3-4 वाकई
2: बिल्कुल ऐसे ही है
3: कि मेरे पड़ोस में एक बच्ची नई नई शादी हुई, तो आई हुई थी माँ बाप के घर में, तो फिर भाई के साथ वापस अपने घर जा रही थी, बाइक पे थी, तो इसी तरह बुरका नीचे लटका हुआ था और चैन में आ गया।
2: बिल्कुल ऐसी
3: चैन में फंसते फंसते चैन में फंसते फंसते फिर एकदम मोटरसाइकिल जो है ना जाम हुआ और गिर गया नीचे जाके लगा।
2: बिल्कुल।
3: तो वो बच्ची शदीद जख्मी हुई, उसकी हालत देखने के काबू नहीं, इतनी खूबसूरत बच्ची थी और फिर आज उसकी हालत तो देखने के काबिल नहीं है। और फिर दूसरा वाक्य, यहाँ पे मजदूर लोग जाते हैं मजदूरी करते हैं, तो एक लड़का था जवान द्रांती, द्रांती आपने देखी है कभी?
2: जी जी।
1: क्या
2: द्रांती?
3: द्रांती जिससे ये फसल काटते हैं।
2: जी जी जी जी जी, वो कटिंग वाली जो होती है। जी जी,
3: ये कांधे पे द्रांती रखी हुई थी, ऊपर चादर थी, हम लोगों की आदत है ना कि चादर लाजमी पास

0: जी
1: तो बाइक पे बैठा हुआ था, चादर का एक सिरा उसमें चैन में नीचे फंस गया, उसको पता नहीं चला, और फिर वो इतना जबरदस्त दबाव में आया कि दरांती से उसका एक बाल कंडे से बाजू में तोड़ गया।
2: देखें कितनी गफलत है ना।
1: अस्पताल भी करीब था, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते खून इतना बह गया कि उसकी डेथ हो गई वहीं पे।
2: बस ऐसे ही होता है, पता है, बस हम भी एहतियात बताते हैं
0: महफूज, हम भी वही आज बात कर रहे हैं सारे।
1: क्या बताता हूँ, शुरू में जब कराची में था तो मेरी दुकान के सामने एक मियां बीवी जा रहे थे बाइक पे, तो उसकी भी ऐसे साड़ी होती है मारसी साड़ी,
2: जिसे
1: फंस गई चैन में, तो जैसे ही हमारी दुकान के सामने आई तो बस उसका, मैं आने यार नहीं बता सकता हूँ कि क्या हाल हुआ उसका।
2: बस ऐसे ही है, मैं हम परेशान ही होते हैं बातें सुन के, लेकिन ये कि बस इसीलिए कहा जाता है कि एहतियात बहुत जरूरी है
0: और एक दूसरे को हेल्प
1: करना है जरूरी। बिल्कुल, जो बाइक पे बंदे बैठे होते हैं चाहे मर्द हो खातिन हो,
2: बिल्कुल
1: वो पीछे अपने कपड़े संभाल के बैठे।
2: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महफूज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत बात इन्होंने की, इन्होंने सारा तफसीली बताया कि देखें लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए इस तरह के, और मैं तो वो बंदा हूं कि जी 120 की स्पीड में भगाना शुरू कर देता हूं अपनी बाइक को कि मैं किस तरह पहुंच जाऊं और मैं उन्हें बता दूं कि भाई ये उठा लो, इस तरह से भी होता है। लेकिन हर दफा नहीं हो सकेगा, हर दफा आप नहीं कर सकते, तो एहतियात यही है घरों से निकलते हुए खवातीन स्पेशली, देखें उन्हें बच्चे भी उठाए होते हैं छोटे, एहतियात करें, बुरका दुपट्टा संभालें, क्योंकि अगर खुदा ना खासा टायर में आ जाएगा तो उससे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जी एक और कॉल, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: वालेकुम शुक्र आप दोनों की कम्बाइन शॉप सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको स्टेटस जो भी मैंने कमेंट किया।
2: अच्छा स्टेटस लग गया, सानू तो दसी नहीं मैम ने।
3: बिल्कुल लग गया।
0: हम क्या हाल है, कैसे हैं, किधर गायब है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त साहब, हम कोयटा में, और गर्मी भी दो दिनों से गर्मी ज्यादा हो गया, अभी कोयटा में भी गर्मी ज्यादा है।
0: कोयटा में गर्मी, आप लाहौर से लेकर गए होंगे ना अपने साथ?
2: आपकी सहेलियां कैसे, पहले मुझे ये बताएं, हकीमत और सारे
3: माशाल्लाह, वो दो लाहौर में दो यहाँ पे है।
2: अच्छा दो लाहौर में दो यहाँ पे, चले हमारा सलाम कहिएगा आज, आज हमारा सलाम कहिएगा
3: इंशाल्लाह, जरूर बस आप दोनों को जुड़िया हमेशा इसी तरह खुश रखे।
2: बहुत शुक्रिया
0: आपको,
3: आप दोनों ने कम्बाइन प्रोग्रामिंग किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हम मेरी बात सुने
3: जी,
0: हम मैं आपको बताऊं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन आपने, क्योंकि हम बड़े पुराने लिसनर है ना, अगर मुझे 12 साल हो गए तो शायद मैं ये कहूंगी 12 सालों से ये भी सुन रहे हैं हम। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ ना, मैं लाहौर एंटर होती हूँ, मैं जब भी लाहौर में काम के लिए जाती हूँ ना, मैं लाहौर जाती हूँ ना,
2: तो मुझे
0: नहीं पता क्यों, मुझे याद है कि सर्दी में ना हम कोयटा से लाहौर आते हैं काम के लिए, ऐसे ही है हम,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और फिर ये जब गर्मी आती तो ये कोयटा में वापस आ जाते हैं, और ये सालों से जिक्र करते हैं बताते हैं हम। मैं जब भी लाहौर जाती हूँ मुझे आप याद आ जाते हैं,
3: तो साहब जब मैं याद आऊँ तब लाहौर की तरफ सर्दियों में चक्कर लगाया
2: कर, अरे ऐसी मार रही है, ऐसी बोल रही है, आपको नहीं पता लिस्टर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
0: एक मिनट, हम आप मेरे पुराने लिस्टर है या नहीं, मैं झूठ बोलूंगी ऐसा करूंगी क्या?
3: बिल्कुल,
2: बहुत शुक्रिया हम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, अपना ख्याल रखें,
0: जीते रहिए,
2: अल्लाह हाफिज। हम ऐसे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह मलखील, और नाम भी इतने मजे का ना कि टंग ट्विस्टर करना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मलखील करें ना जरा,
0: साहिल टंग ट्विस्टर रखें,
2: यस, लेकिन अभी आके किसी ने ट्विस्टर मचा देना हमारे साथ,
0: नहीं नहीं नेक्स्ट शो में,
2: हां नेक्स्ट शो में हम टंग ट्विस्टर रखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: बात कर रहे हैं?
2: बात नहीं कर रहे,
0: वो कह रहे हैं आपसे बात नहीं करनी, क्यों उठाए थे आपने कॉल, वो कह रहे हैं आपसे बात नहीं करनी, मुझसे बात।
2: एक और कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कौन है ये?
4: फजल काकर बात कर रहा हूँ, कोयटा से। आप तमाम को सलाम पेश करता हूँ, सुबह खैर, सुबह नूर।
2: क्या हाल है फजल काकर के?
0: अल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह फजल दोनों
2: अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। कैसी गुजारी जिंदगी?
4: जबरदस्त, अल्लाह पाक, अल्लाह अल्लाह शुक्र, हाथ सलामत, पांव सलामत,
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
4: सलामत जबान सलामत, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु वलकल शुक्र,
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, और सबके लिए यही दुआएं। क्या कहना चाहेंगे?
4: मैं ये कहना चाहता हूँ, शो हमेशा की तरह जबरदस्त माशाल्लाह, जितनी तारीफ करो कम है, क्योंकि आपके अंदाज, आपकी गुफ्तगू माशाल्लाह माशाल्लाह, सच में मजदूर।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू।
4: बस आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, और आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अपने बड़ों का इज्जत करें, क्योंकि बड़े जो दुनिया में है सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन बड़ों का मिलना नामुमकिन है मेरे नजर।
2: सही बात है, बेसिकली पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कि आपके पेरेंट्स का मिलना दुनिया में नामुमकिन है। बड़े तो सारी मैम सदब भी बड़ी हैं, कोई और मैडम भी मिल जाएंगी। मैम सदब को बहुत तंग किया मैंने पिछले दिनों भी। जी हमें कॉल कर रहे हैं आप 111-111 पे कर रहे हैं, तो फिर मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, आपकी मर्जी। यार निकल जाता है, मुझे यूटर्न लेना पड़ता
0: है। कॉन्फिडेंस से बोलते हैं आप कॉल कर रहे हैं 111-111 पे,
2: लेकिन आप ये देखें मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बोलूं टिप। वहाँ तो आंत मची हुई आजकल, आप लोगों ने देखा नहीं शायद, लेकिन वहाँ भाई भाई ने कोई वीलॉग किया है उधर बैठ के, और जो वीलॉग थे बहुत मजा आया ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तब तो बड़ा मजा आ गया।
0: मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, मैं गर्मी में कंट्रोल रखने के लिए नहीं देख रही।
2: अच्छा आपको पता हो ना कि आप अपने काम में कितनी महारत रखते हैं, और फिर आपको उसी तरह के और काम करते हुए लोगों में बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती हैं जो ठीक होने वाली होती हैं, और जो कि नजर आ रहा होता है, लेकिन जब पब्लिक उनको पसंद कर रही होती है ना, फिर आपको हॉल उठ रहे होते क्यों वजह
0: बंदा कहता है मेरे में भी कोई टैलेंट नहीं।
2: जी हां नेक्स्ट कॉल 9202540। हेलो अस्सलाम
5: वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
5: जी शाहिद अर्ज कर रहा हूं सोने ये इस्लामाबाद से।
2: जी कैसे हैं शाहिद साहब? ठीक हैं
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद साहब बड़े सीरियस लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
5: नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा। जो मुहर्रम के गुजरे हैं
2: जी जी,
5: के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं।
2: मुश्किल होते हैं बिल्कुल सही।
5: और टॉपिक के हवाले से तो यही कहूंगा, जो किसी की इज्जत और चादर का ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसकी इज्जत और चादर का ख्याल रखते हैं।
2: कितनी खूबसूरत बात की है यार। ये देखें मतलब मैं ये चाहता हूँ कि लोग आकर ना मोटिवेट कर जाएं, मतलब एक बात के ऊपर एक अच्छी बात करके चले जाएं। कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की,
0: अल्लाह पर्दे रखने वाला,
2: अल्लाह पर्दे रखने वाला।
5: पॉइंट और अर्ज करना चाहता हूँ अगर
0: सर। सर
2: जी जी,
5: कोई भी कॉलर आता है थोड़े बहुत दफा सख्त तबीयत के भी आते हैं
2: जी जी,
5: वो भी हमसे मोहब्बत करते हैं
2: जी जी बिल्कुल
5: होती है
2: जी जी ऐसे ही है।
5: सर आपने अपने प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम करना होता है, जो एक शेड्यूल तय होता है उसके मुताबिक
2: जी जी,
5: लेकिन सारे हमसे मोहब्बत करते हैं
2: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है।
5: बहुत
2: शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है। असल में इन्होंने ना एक बड़ी ऐसी खूबसूरत बात की है कि जो कि दोनों तरफ ना, अगर कोई किसी का दिल आजारी हो रही है या दिल दुखा है तो कोई फील ना करे।
0: पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कवर करने की
2: बिल्कुल ऐसी
0: है,
2: अच्छी बात है। देखिए हम आपको यहाँ कर दें, हमें किसी से कोई इशू नहीं है। हमारे जो बहुत ही प्यारे कॉलर हैं रबैका बेटी वाले, इनका नाम मुझे भूल जाता है, इश्तियाक साहब है, मुश्ताक साहब है, कुछ मुझे नाम भूल जाता है उनका, लेकिन बहुत ही क्यूट है। शुरू में भी जब वो आए ना, अच्छा शुरू में जब वो आए थे ना, तो थोड़ा सा शायद उनको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनकी हमारे फॉर्मेट के साथ, तो थोड़े से वो हो गया। अब आज देखें, वो हमारे बेस्ट कॉलर्स में से एक कॉलर हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं और इतनी अपनाइयत करते हैं कि मतलब हमें खुद कभी कभी शर्मिंदगी हो रही थी कि शायद हम उस तरह से उनसे डील नहीं कर पा रहे जितनी मोहब्बत वो कर रहे हैं। तो आप जब किसी को बकायदा सुनते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, तभी आपको पता चलता है। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि दोनों तरफ कवर करें जी, अच्छा अगर कोई बात इस तरह की होती कि दिल ना दुखे, मुहर्रम का तकद्दुस जो है वो देखते हुए वो इसके तरीके से लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं होती अगर कोई कॉलर हमें कुछ बोल भी जाता है। देखें हमारा काम है ये शो करना और हमारा फॉर्मेट हमें पता है। अगर आप हमें आके कुछ भी कह देंगे, कोई भी कहें, हमारी मैनेजमेंट ने हमें जो करने के लिए कहा हम तो वही कर रहे हैं, ठीक है, हम अप्रूव्ड हैं तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे ना। तो आपको अगर हम यही कह सकते हैं कि आप सुने, लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप हमें सुनने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है चीज, तो आप डेफिनेटली चेंज कर लें चैनल, कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं माइक्रोफोन से वो फॉर्मेट के मुताबिक कर रहे हैं, तो ये चीजें होती हैं। बहरहाल एक और कॉलर,
0: अस्सलाम वालेकुम,
2: दिस इज लास्ट कॉलर एंड वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमने वो
6: न्यूज़ पे जाना। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग।
2: हाय हाय मेरे अल्लाह जी, चक्कर आ गए मुझे,
0: प्लीज मुझे बहुत ठंडी हवा, मुझे ठंडी हवा वाली चक्कर आ रही है। राहत क्या हाल है?
6: चक्कर जी आ रहे हैं, गर्मी लग गई।
2: नहीं
0: कॉल आ गई,
2: डर लग गया, डर
0: डर गए, राहत को डर गए।
2: घर वापस आ गई, पहले ये बताएं केले आई हो, चावल लेके आई, फिर आए फड़े गए,
6: कितने पक्के दो चावल
0: जीती रहे। क्या हाल है राहत, खैरियत से है
6: जी?
0: मैंने कहा ठीक है, सब खैरियत है। गर्मी कैसी थी वहाँ पर यार? इधर तो बहुत गर्मी है,
6: काफी गर्मी
0: थी, टोर गए सोना, ठंडा आ जानी है।
6: काफी गर्मी है, कल तो बहुत ज्यादा गर्मी।
0: ओफ, कल परसों, मुझे तो आज इतना लग रहा है कि गर्मी रहेगी। कल कहाँ गायब थे साहिल?
2: कल देखिए हमें एक्चुअली फोन आया था कि ट्रांसमिशन जो है वो 10 बजे के बाद स्टार्ट होगी और इसके बाद नॉर्मल होते होते 12 1 बजेंगे। तो जाहिर है हमारा प्रोग्राम तो सुबह 8 से 11 था, तो हम फिर नहीं कंटिन्यू कर सके सुबह के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दे देंगे जाके बताओ। और तो हुक्म साढ़े लिए खिदमत,
0: इनसे कुछ सालन रोटी वाले काम कहीं भी मंगवाओ ना।
2: हैं क्या कर दें
6: आप? नाश्ता
2: अच्छा,
6: तो
2: मैं तो नाश्ता बना दूं, तुम मेरी ट्रांसमिशन में रायता ना फेरो। अब देखिए मतलब इनसे अंदाजा लगा ले कितना हमसे लड़ भी लेती है, बोल भी तो हम भी बोल लेते, लेकिन मोहब्बत नहीं खत्म हुई कभी भी यार। हमें पता, हमारे अपने जो भी कहेंगे वो हमें बर्दाश्त करेंगे। और हम
0: राहत, आपको पता है ना, आप जब सलाम करती है हमें पता चल जाता आप है, ये बात आपको पता है ना?
2: झूठ बोल रही है, मुझसे इशारे कर रही थी, रात है ना, रात है ना।
6: सूरज जी सर के अलावा मुझे कोई नहीं पहचानता, ये मैं जानती। ये मैं जरूर कहूँ,
2: ये
0: राहत,
2: ये बात
0: राहत,
2: ये बात भाई जान, बाजी पलट गई है। जो सरगोटा से वापस आकर ना समझ आ गई सारा के क्या हुआ है। अच्छा चले, मुझे न्यूज ब्रेक की जानिब जाना है, कुछ हो रहा था क्या लो? ठीक है, हाँ जी न्यूज ब्रेक पे जाना है, टाइम हो गया।
6: ठीक है, आप
0: जाए
6: तो
0: बैकअप में
6: बात तो करा
0: दे। ठीक है,
2: ये ले आप बात करें,
0: मैं बिल्कुल नाराज। अच्छा मजे की बात पता है,

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती है एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: All right, जी, welcome back once again. और हम behind the mic बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि salaries जो है वो on time होनी चाहिए
1: और जो workplace है तो आपके लिए जो है वो peaceful place
0: होना चाहिए.
1: यहाँ के psychologically मैंने literally सारे लोगों को ना office या जो भी उनका workplace है वहाँ पर जाने से पहले ना मतलब एक stress में देखा है. वही stress उनका घर में आके निकलता है. ये नहीं कि वो गुस्से में आ जाते हैं लेकिन वो खुश नहीं होते. वो अपनी खुशियों में ना हैप्पीली अपने वक्त को सेलिब्रेट नहीं कर सकते. अभी जब मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चीज़ों को पढ़ने की और देखने की कोशिश करती हूँ तो फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हम लोग एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम प्रोग्राम की ओपनिंग में बात कर रहे थे ना, एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं.
0: बिल्कुल.
1: एक तो हम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, ऊपर से हम मुश्किलात का शिकार हैं. तीसरा, पे जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं ना, हर इवन जो आपके अंडर काम कर रहा है ना वो भी आपको मुश्किल देगा. मतलब इवन मैंने ये देखा है जिसने आपको चाय पिलानी है या आपका ऑफिस बॉय जो है वो भी आपको जो टफ टाइम दे सकता है वो देगा.
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: क्योंकि वो ये सोच रहा है कि इस चीज पे तो सर मेरे अंडर आ रहे हैं ना, मैं आप सर को बताऊंगा.
0: अच्छा चलिए इसी की मिसाल में देता हूँ कि हमारी एक टी बॉय ने, मैंने नया नया ज्वाइन किया आज से 16 साल पहले कंपनी को, तो मैं वहाँ गया था. वो सुबह ना सारे चाय पी रहे थे तो मैं भी एकदम वो हुआ कि चाय किधर है, मैं भी ले लूँ जाके. तो मैंने जाके उससे पूछा, तो यू नो उसने मुझे क्या जवाब दिया. मैंने कहा यार चाय, मुझे ये पता था कि ये टी बॉय है और ये कर रहा है, तो मुझे कहता है कि वो इस तरह इशारा करके उंगली का कि वो ट्रे पड़ी चाय ले लें, एक चाय शाम को मिलेगी, इसके अलावा अगर लेनी तो नीचे जाके पीनी है, दोबारा नहीं मांगनी आपने. मतलब वो अपनी जो एक इम्पोर्टेंस थी वो इस तरह शो कर रहा था. अच्छा ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के जो करता धरता हैं उनको इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए. हमारे आजकल मैंने ये भी देखा है कि जो सी लेवल्स पे लोग बैठे हैं वो लोग शायद नीचे के तबके को उतना सीरियस ले नहीं रहे. उनको पता है हमने नीचे मैनेजर्स रखे हैं, वो देख रहे हैं, वो भी सीरियस नहीं ले रहे होते. मैनेजर सिर्फ वही कर रहा होता है जो अपने सीईओ को खुश करने के लिए कर रहा है, ठीक है. उसको ये नहीं तकलीफ कि उसके नीचे जो लड़का काम सारा दिन सारी रात लगा के कर रहा है, जो टीम बैठी है वो किस पेन से गुजर रही है, उसकी फैमिली किस तरह चल रही है. क्या मुझे आज भी याद है कि आज से तकरीबन 20-21 साल पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की थी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और वहाँ पे मैं न्यूज़ पढ़ता था और उन्होंने मुझे वहाँ का पहला मैनेजर बना दिया ना. और जब मैं मैनेजर बना तो अब हम नए नए बने थे, हमें तो आइडिया नहीं था ना मैनेजर क्या होती है, कोई मैनेजर स्किल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था. आपको पता है क्या, उन्होंने मुझे, जो मेरे बॉस थे ना, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के, ये जो बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री इसमें भी इनका बड़ा नाम था, और ये जो फ़ोन उन्होंने नाम रखा था एक्चुअली, तो मतलब एक बड़ा नाम था उनका. तो उन्होंने ना मुझे दो चार बातें सिखाई बताई कि देखो जब आप किसी को हायर करते हो, अब आप मैनेजर हो, अब हायरिंग करोगे ये वो, तो इस तरह होगा. तो जब मैंने बहुत कुछ सीखा कि जब मैं किसी को हायर करता था ना तो फिर मैं ये देखता था कि उसकी, मैं पूछता था कि फैमिली में कितने लोग हो, कितने कमा रहे हो, क्या यार कैसे होगा. फिर वो अपने मुँह से बेचारे इतने कम पैसे मांगते थे कि बस जॉब हो जाए, मतलब ये हालात थे. फिर मैं ना अपनी तरफ से 5-5, 7-7 हज़ार रुपये ऊपर करके बताते, वो इतने खुश होते थे, मतलब यार यही बचेगा तुम्हारे पास और तुम ये भी छोड़ रहे थे, तो वो इतने खुश होते थे मेरे मैनेजर. वो कहते थे कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो कि अगले बंदे को ये खुशी हो कि यार ये तो पैसे मेरे यहाँ लग गए, ये मेरा किराया लग गया, ये मेरा रेंट चला गया, ये मेरे घर चले गए, मेरे पास एट दी एंड मेरी जेब में क्या आया, मेरे बच्चे कुछ मांग ले तो क्या करूँगा.
1: खुदारा लोगों के लिए
0: आसानियाँ पैदा करें.
1: वो इवन मैं अपने आप को भी यही कहती हूँ, मैं क्योंकि आप क्योंकि स्पोर्ट्स से माशाल्लाह गुजरे हैं, मैं अगर किसी मैनेजिंग लेवल पर नहीं भी हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ, हो सकता है रात चलते हुए मैं किसी को रुक कर रास्ता दे सकती हूँ, मैं यही कर सकती हूँ.
0: कितनी खूबसूरत बात है.
1: मतलब आसानी पैदा करनी है ना, गाड़ी है हमारे तो मतलब ओवरटेक करना है, हॉर्न बजाना है, हॉर्न इज लाइक अब्यूज करना पूरे दिन, असि हॉर्न तो हाथ ही नहीं चुकते, गड्डी बैठे हॉर्न तो
0: अच्छा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि आपके पास से देखिए ना, यही एक बात ने बात की, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है. और पता है मुझे बड़ा दुख भी होता है, हर बार हम बैठते माइक के ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे अंदर ये नहीं, हमारी प्रॉब्लम, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं ही, हमें ठीक नहीं कर रहे हैं, हमको
1: ठीक करें ना,
0: ठीक करना चाहिए. और मैं ये चाहता हूँ कि ये ठीक होने का सिलसिला जो है ना इसके ऊपर सख्ती से, हमने देखिए अपनी मदद आपके तहत तो हमने अपने आप को बेहतर करना ही करना है, ठीक है. लेकिन मैं कहता हूँ कोई ऐसे लॉज बन जाने चाहिए हमारे यहाँ जिस पे लोग जो हैं वो डट के फिर उसको फॉलो करें.
1: कितने कितने लॉज हैं हमारे यहाँ है ना, ठीक नहीं होते, हमने एज अ सोसाइटी ठीक होना.
0: बिल्कुल सही है.
1: मैं कहती हूँ जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना, मैं ये नहीं सोचूंगी ना कि ये गलत काम है, गाड़ी के अंदर से कूड़ा सड़क पर बाहर फेंकना गलत काम है, अनलेस मुझे ये खुद रियलाइज नहीं होगा ना. नहीं
0: लेकिन ये भी देखिए ना, अब हमारे यहाँ अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली पिंडी में स्पेशली, चूंकि हम दोनों का ताल्लुक वहाँ से, यू सिग्नल तोड़ते हैं, लोग निकल जाते हैं मजे से, निकल जाते हैं।
1: हमारी गलती
0: है, गलती है। अब बाहर आप देखें, उनके लॉ के मुताबिक आप करके दिखाएं काम, आपके घर आएगा दावतनामा आपको कि चलो भाई आ जाओ। मतलब हमारे अगर ये वाला काम पक्का हो जाए ना, ठीक है। अब जैसे बाहर फेंक रहे चीजें उठा के गाड़ी से, बच्चों को भी दाएं खाए जा रहे, फेंके जा रहे, माल्टे खाते सर्दियों में तो बाहर में गंडेरियां चूस चूस के बाहर फेंक रहे, यार आप क्या कर रहे हैं?
1: Now I come with this society again. हाँ। आपने कहा लॉज अगर ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होगी। जब यहाँ पर हेलमेट पे, हेलमेट ना पहनने पे जुर्माने हुए, सीट बेल्ट ना बांधने पे जुर्माने अभी हो रहे हैं ना,
0: बिल्कुल। अब देखिए आप,
1: लेकिन आप देखिए हम कितना बुरा भला कह रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि हम एज अ सोसाइटी चेंज होना ही
0: नहीं चाह रहे हैं।
1: हम पर सख्तियाँ की गई, हमसे इतने इतने पैसे ले लिए गए, पैसे हमने दे देने हैं, ऐसा ठीक नहीं होना।
0: बिल्कुल सही है, प्यारी की है। आपको पता है कितनी सख्ती हो गई है, हेलमेट उतारो भाई, तुम देखो तुम्हें मोटरसाइकिल से कैसे उतारते हैं।
1: और ये हम अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते
0: हैं, बिल्कुल।
1: हम ऑन एयर बैठ के सवाल करते हैं, आपका
0: बहुत शुक्रिया। मैं वही तो कहता हूँ कि देखो कितने अरसे बाद जाकर इस मुल्क के अंदर थोड़ा बेहतरी देखने को मिली है, माशाल्लाह। कि हम पूरे पाकिस्तान की बात ही करेंगे, अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में पंजाब वाले हालात हो, कि यहाँ से जो सिलसिले हो रहे हैं हेलमेट के ऊपर, आपके लाइसेंस के ऊपर, और कितना इजी कर दिया लोगों के लिए कि भाई लाइसेंस बनवाने जाओ, कोई धक्के नहीं। तो मैं गाड़ी चलाने आती तो किसका डर है?
1: अरे लर्निंग जाएं आप। सिस्टर ने परसों घर बैठ के वेंसडे को
0: देखें, ऐसी है ना। अब आप ये देख ले कि हम जो है वो मैं अपने बेटे के साथ और मेरी बेगम अपनी बाइक में बेटी के साथ बैठी हुई थी, अब स्कूटी पे, तो हम निकल रहे थे। मैंने ना बाइक पे हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब हेलमेट मैंने नहीं लगाया हुआ था, हेलमेट मेरी बाइक पे लगा हुआ था लेकिन मैंने पहना नहीं था, ठीक है। अब उससे मुझे रोक लिया, रोका ना, मैंने रुहान को ये बोला पीछे बैठा, मैंने कहा रुहान ये इसने मुझे इशारा कर दिया, रोक लिया, अब ये हमारा चलान करेगा बेटा, इसे छोड़ना नहीं है। मैंने जस्ट एक इतनी सी बात उससे बंदे से कि मैंने कहा यार मेरे जहन में ही नहीं रहा कि पड़ा हुआ मैंने लगाना है। उस बंदे ने पता मुझे क्या बोला, कहते कोई मसला नहीं आप इसे लगा। यार मैं हैरान हो गया खुदा की कसम कि क्यों इतना बुरा भला बोल रहे हैं। आप तमीज से सच बोल के प्यार से बात तो करें ना, उन्हें बताएं। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, उसको नहीं पता था मेरी बेगम आगे निकल चुकी थी। मैंने कहा यार मेरे पास पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, मैं भूल गया, मेरे जेब में नहीं था, मैंने लगाया नहीं। उसने कहा कोई मसला नहीं आप इसे पहन ले, आपके लिए अच्छा है ना, पहन ले इसे, बस दैट्स इट।
1: ये देखिए कितनी प्यारी बात, हम हंसते हम घर से बाहर निकले, हम सेफ्टी महसूस करें, जो हमारे सिक्योरिटी अहलकार हैं, जो हमारे लिए सर्विसेज दे रहे हैं, जो धूप में खड़े हैं, और किसी को भी कोई शौक नहीं है चिड़ने चढ़ाने का। हाँ कभी कहीं मिसहैप, उनसे गलती हो सकती है, एज अ ड्राइवर अगर हम रोड पे हैं हमसे गलती हो सकती है, तो इसको ना थोड़ा सा।
0: और कभी ऐसा भी हो जाए ना रिबेका, कोई अगर ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आप पे थोड़ा हार्श भी हो जाए, देखें अगर पानी की बोतल है तो उसको दे दें, अगर प्यार से बात करें। पता नहीं यार किस ऑफिसर की कौन सी बात पे कौन सा प्रेशर लिया हुआ,
1: कौन गुजरने वाली गाड़ी ने उसको किया।
0: देखें हमारी तो जबाने हैं ना, हमारी भी जबाने धमकाते भी हैं, किस कदर अपनी जात की नफी करके कब कुछ सुनना पड़ता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें मुझे कोई बात करके देखे मैं तो खा जाऊं से, हमारे अंदर तो यही वाले मसले ना, हम लोग नहीं माफ करते किसी को, लेकिन वो सारा दिन डील करते हैं। यही हॉस्पिटल्स में नर्सों के ऊपर आप लोग चीखते रहेंगे फलानी ने इंजेक्शन लगाया टाइम पे नहीं आई है। अरे आप देखें एक टाइम पे 5,000 लोगों को डील करना को आसान काम तो नहीं होता
1: ना, तो फिर वही बात आ जाती है, हमने सोशल मीडिया, अच्छी बात है सोशल मीडिया के सामने बहुत सी चीजें एक्सपोज होकर सामने भी आती है, वही बात है जहाँ पर किसी भी चीज के फायदे हैं नुकसान भी हैं। सो कभी कभी लोग अगर मुझसे फॉर एग्जाम्पल किसी नर्स ने, आपने एग्जाम्पल दी है, उसने मेरी बात नहीं सुनी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं कहूंगी तेरी मैं वीडियो बना के डाल दूंगी।
0: हाँ देखें जरा ये कोई है तरीका,
1: लोग करते हैं ऐसे।
0: देखिए कितनी गलत चीज है ये, छोटी सी बात के ऊपर आप उसको, उसकी इज्जत को, उसके इदारे को, उसकी नौकरी को खतरे में डाल देते हैं, कितनी बुरी बात है।
1: साहिल मेरी सिस्टर जो मेरी नीस है, जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुई, तो वो पूरा जो उनका टेन्योर था उनका सारा, मेरी सिस्टर एक ही हॉस्पिटल में जाती रही, हम उनको वहीं पर लेकर जाते रहे और वो सारा सिस्टम हुआ। द डे मेरी नीस जो है वो पैदा हुई, एंड दैट डे आई रियलाइज कि वहाँ पर जो सारे जो है स्टाफ है सैनिटरी, जो सारा साफ सुथराई करता है, उनके जो मेडिकल वाला स्टाफ था हॉस्पिटल का, उनका जो नर्सिंग स्टाफ था, उनके जो ड्यूटी पे मौजूद थे, और जो उनके सारे हेड डॉक्टर्स थे, लास्ट में मैं डॉक्टर्स पे, ईच एंड एवरी वन नो मी एंड माई सिस्टर। द डे हमारी नीस पैदा हुई, हमने वहाँ पर मिठाई दी, जो भी सारा एक होता है, वो लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। हमने कहा नहीं क्यों,
0: देखो
1: कहते हैं वो आप मिठाइयाँ बांट रहे थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ना सेहतमंद औलाद भी है।
0: देखिए लोगों में ना ये चीजें क्यों उनको हुआ, क्योंकि मेजॉरिटी पब्लिक ऐसा करती है
1: कि बेटा।
0: मैं रुहान के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर से पूछता रहा बेटा के बेटी के फिफ्थ मंथ के बाद पता चल जाता है, और ये है टेक्नोलॉजी होगी आप पूछ सकते हैं। कहते हैं लोग नहीं पूछना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी है, इंसान को होता है, लोग तैयारियां करते हैं,
1: खरीदारी
0: होती है। तो हमने पूछा, वो नहीं बता रही थी, वो कहती है हाँ मुझे है बच्चा आपका जो है वो अभी सही पोजिशन पे नहीं है तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन ये कि हमें है कि शायद बेटा भी है, ये बेटा हो सकता है, लेकिन मैं अभी कन्फर्म नहीं आपको कह सकती ना। अब फिर भी हम थोड़े वो डाउट में आ गए कि भाई कन्फर्म नहीं कह सकती। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, कहती है आप इतने ज्यादा जज्बाती हो रहे थे, पूछ रहे थे, मुझे डर लग गया क्योंकि मेजॉरिटी पब्लिक आके यहाँ पे बेटियों को सुनने के बाद हमें ये कहते हैं कि इसको खराब कर देंगे, इसको यूं कर दें, हमें नहीं चाहिए। कहती है हम इतने, हालांकि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना नामवर हॉस्पिटल, मतलब मैं क्या बोलूं कि ऐसी जगहों पर पब्लिक ऐसी जाती है, और कहती है कि यकीन करें इतने इतने पढ़े लिखे लोग आके हमसे इस तरह की बातें कर जाते हैं। कहती है हम सिर्फ इस डर से कहते हैं कि किसी नन्हे बच्चे की जान हमसे ना ऐसा कोई गफलत हो जाए जिसकी वजह से को हमें बदुआ लगे, तो हम नहीं चाहते फिर बताना। कहती है हमें तो डे वन से पता होता है कि बेटा है कि बेटी है, हम नहीं बता रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा होता है कि इसके ऊपर कोई पब्लिक जो हमारे सामने लोग खड़े हैं उनका कोई रिएक्शन बुरा ना।
1: अच्छा देखें वही जो आप बात, मेरे भिनोई ने क्योंकि फिर मुबारक दी जो वहाँ पर सारे काम करने वाले थे, और मेरा भिनोई हम लोग बैठ के बड़ा इस बात पे ना हंसते हैं, वो कहते हैं सबके अच्छा मुबारक हो आपका बेटा हुआ है बेटा, कहते हैं मैं सोच रहा है क्यों लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि अगर मैंने पैसे अपनी जेब से निकाल दें तो मैं बेटे की खुशी पे ही पैसे निकालूंगा। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, साहिल आपने तो नराया हमारी बेटी देखी हुई है माशाल्लाह, वो वाकई ही किसी ब्लेसिंग से, जिसे हम अपनी जबान में मौजजा कहते हैं, माशा वो मौजजे से कम नहीं है मेरे अल्लाह। वाकई ही मैंने हमारे यहाँ जब बेटी हुई तो मैंने ये बात जानी कि वाकई जिस घर में अल्लाह बेतहाशा खुश होता है
0: उस घर में
1: अल्लाह उस घर में बेटी देता है। और मैं से क्योंकि मेरी बहन को अल्लाह ने पलोठी जो पहली औलाद होती है वो बेटी से नवाजा है और उस पर हम इतने खुश हैं। मैं कहती हूँ या अल्लाह हर घर में जिससे तू राजी है ना हमारी तरह, उस घर में बेटी दे। अगर बेटी आने के बाद इतना सुख मिलता है ना मेरे अल्लाह, तो वो सुख तू दे। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, इससे बड़ी खुशी तो है ही नहीं। वो घर में चलती फिरती शरारते करती है।
0: आपको पता है मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, कल सुबह मैं अब चूंकि तीन चार छुट्टियां थी, जरा लेट उठ रहे थे हम लोग, तो मैं सुबह उठाऊ तो मैंने उठकर सबसे पहले घर में ये बोला, मैंने कहा मनहा को उठा दे। बेगम मेरी मुझसे ना एकदम बहस शुरू होगी कि भाई उसको मत उठाएगा, वो रात को लेट सोई है, वो नहीं नींद आ रही थी उसे, वो नहीं सोई समझ। मैंने कहा यार मेरे घर की रौनक खत्म हो जाती है, मैं सुबह उठूँ ना ये मेरे पास सामने चलती फिरती उछलती कूदती नजर ना है, मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, और घर की रौनक तो बेटियों से ही होती है। और आजकल तो आप देख लें यार, मतलब मेरी जिंदगी में जितनी मैं लड़कियों को जानता हूँ, जो मतलब आपके सामने एक बड़ा मिसाल मेरे सामने बैठी हुई रिबेका की सूरत, मैंने तो माशाल्लाह इनको तरक्की करते भी देखा है, आगे बढ़ते भी देखा है, चाहे वो मेरी बेगम की सूरत में हो, रिबेका की सूरत में हो, या फिर मैम सदफ की सूरत में हो, या मेरे ऑफिस की कुछ कुलीग्स हैं उनकी सूरत में हो, मैंने उनको तरक्की करते ही देखा है। अभी मेरी एक कुलीग है जो मैं आपको बताता भी हूँ,
1: क्योंकि साहिल इसमें मीनवाल आप वो उनके बारे में जिक्र करें, मैं आपको बताऊँ क्योंकि हम खुद दो बहनें हैं ना, सिबलिंग्स हैं। So my mother used to face a lot of time. हम ये नहीं कह रहे कि बेटे बुरे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस घर में जिसमें बेटों जैसी रहमत नेमतें मौजूद है, बेटियों और बेटे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये सोचते हैं कि बेटियों का होना शायद कोई बुरी चीज़ है, या ये पता नहीं ये तो अगले घर चली गई। कोई भी औलाद चाहे वो बेटा है या बेटी, वो आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है,
0: नहीं है। बिल्कुल
1: बेटे को भी आप ये सोच के बड़ा करेंगे कि उसने अपना बाद में एक अपनी उसकी फैमिली होगी और बेटी अपनी फैमिली की हो जाएगी, वो अपने हस्बैंड के साथ चल, तो दोनों सूरतों में ये आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। हमारे यहाँ पर ना हमने बिजनेस इन्वेस्टमेंट समझी हुई है,
0: बिल्कुल
1: बेटा है इस पे ज्यादा इन्वेस्ट करो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, बेटी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो अच्छा किसी और को प्रॉफिट ना मिल जाए।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: सो समटाइम्स इट्स वेरी हर्टिंग। मतलब मेरी मदर यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अभी नहीं उनकी अर्ली एज में, बट शी इज वेरी प्राउड राइट नाउ।
0: बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं थोड़ा सा चीज को लेके होता है, मैं आपको बताया ना कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे होता है मेरी बेटी जो है वो हंसे खेले मुस्कुराए घर में हलचल। इसी तरीके से मेरी एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी दोस्त है, मेरी ही टीम में, हमारी ही टीम में है, हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, वो लड़की जो है जब वो आई थी पतली दुबली सी छोटी सी बच्ची सी, आज भी वो इसी तरह की है, वो इसी तरह ही छेड़खानी, साहिल भाई उसको गुस्सा भी आएगा, मेरे साथ कर देगी बातें भी प्यार से मेरे साथ करेगी, ज़्यादातर वो खामोशी रहती है यार। वो अचानक से भी कुछ दिन पहले मुझे पता चला उसके नाम के साथ डॉक्टर लग गया है, उसने PhD कम्प्लीट कर लिया, अक्सा जाहिद की बात कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बच्ची है। मतलब अब वो देखें, वो सब भाइयों में वो अपनी सबसे ज़्यादा लाडली भी है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली भी है, और अल्लाह ने उसे इतना मकाम भी देता। मतलब कहने का मकसद बेटियां कहां से कहां चली गई हैं, आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि मतलब बेटा कामयाब ही होगा खाली, मतलब
1: क्योंकि बेटे की कामयाबी को हमने लिंक किया हुआ है ना कि वो हमारे पास रहेगा तो वो मिलता रहेगा।
0: Exactly ऐसे।
1: लेकिन सलाम उन पेरेंट्स को है जिनकी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। ये अक्सा की जो आप बात करें अपनी कॉलीग की, तो एक क्रेडिट ऑफकोर्स उस बच्ची की तालीम के साथ तो जाता है, उनके वालिदैन
0: को भी जाता
1: है, उन्होंने कहा जाओ बेटा हम तुम्हारे पीछे हैं, करो
0: ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो आज एक अच्छे लेवल पे बैठी है, लिंक्डइन पे उसको हर कोई अप्रिशिएट कर रहा होता है, और मतलब हर जगह देखें अब जो एक चीज़ हासिल की है उसको फिर लोग अप्रिशिएट तो करेंगे, ठीक है, जिन्होंने अप्रिशिएट करना है वो करेंगे, जिन्होंने नहीं करना है ऑब्वियसली हासिलीन तो होती हैं, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अपनी बेगम को देखता हूँ आगे बढ़ते हुए, तो मैं देखता हूँ इस लड़की को, देखता हूँ अक्सा को, देखता हूँ मैं मैम सदफ़ को, देखता हूँ, मतलब मुझे खुशी होती है लोग हैं जो लड़कियां हैं जो खवातीन हैं उनको मैं आगे बढ़ते देखता हूँ, तो मेरे जहन में आता है कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसे करनी है, उसको मैंने ऐसे लेके चलना है ताकि जिंदगी में वो भी एक मकाम पे हो,
1: स्ट्रॉन्ग हेडेड हो। जैसे हमारे गेस्ट आए हुए परसों मेरे मामू मामानी, तो उनकी बेटी है मैट्रिक, एमएन का भी क्या करिए ये आर्ट्स है साइंस कहती है, ऑफ कोर्स साइंस, व्हेन शी पुट लाइक ऑफ कोर्स साइंस, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा, अनोइंग लगा कि मतलब साइंस ही रखनी है क्यों। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी नराया जो है वो आर्ट्स या साइंस में फंसती रहे, उसने ए लेवल्स करना वो लेवल्स करना है वो करे, उसको साइंस करनी है उसको आर्ट्स करना है उसने। हम जब छोटे थे ना साल, मुझे बड़ा दुख होता, शायद मैं मैट्रिक बहुत अच्छे नंबर्स में कर लेती, साइंस में करा दी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं थे उस तरह से तालीम याफ्ता, उनको कहा गया साइंस नहीं है तो ज़िंदगी रुक जाएगी। मैं जब छोटी थी तो मुझे तो लगता था आर्ट्स, अगर मैं मैट्रिक आर्ट्स में करूँगी तो इसका मतलब है मुझे ड्राइंग करनी होगी, सॉरी थिंक अबाउट इट, मुझे ये लगता था बहुत छोटे थे जब।
0: अच्छा मतलब आपको तो ये लगता था कि आपको मतलब साइंस के बाद,
1: नहीं नहीं मुझे लगता था अगर मैं मैट्रिक आर्ट्स में करूंगी तो इसका मतलब है मेरा आर्ट का मतलब था कि मैं शायद ड्राइंग करूंगी, पेंटिंग करूंगी या शायद स्टिचिंग, ये आर्ट वर्क में चीजें आती,
0: तो उधर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था ना।
1: तो मैंने कहा अच्छा नहीं इसका मतलब है ये अगर मैं साइंस रखूंगी तो फिर मैं डॉक्टर बन सकती हूँ या इंजीनियर बन सकती हूँ,
0: तो उसके लिए तो बहुत नंबर चाहिए और बड़ी मेहनत होगी और बड़ा वो होगा।
1: और जब मैंने मैट्रिक कर ली मर मुक के, उसके बाद मैंने आईकॉम कर लिया, बीकॉम कर लिया, बड़ा दुख होता मुझे, मैं साइंस आर्ट्स में कर लेती मैट्रिक, उसके बाद मैं आईकॉम बीकॉम, बिजनेस है ना, ICCA होता पता नहीं क्या होता है, बड़ा मेरी तालीम की तरफ था, लेकिन वो बस एक रुझान समझाने वाला नहीं था ना कोई। सो खुदारा बच्चों को ना इस चीज़ से, अगर तो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो जरूर उनको वो चीज़ करना है, फोर्सफुली ना करवाएं।
0: अच्छा हाँ, ये हम इसी हक में हैं कि आपके बच्चे जिस तरह की चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पढ़ाई को, एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, उस तरफ उनको लेके जाएं।
1: बिजनेस पढ़ सकते हैं आप सारे, वो फलक कितना कितना मैंने जो आईकॉम और बीकॉम किया इट्स ऑल बिजनेस और बैंकिंग, लेकिन हमें को बताने वाला नहीं था ना कि मैट्रिक अच्छे नंबर आर्ट्स में लेके कर लेना बेटा, आगे तुम्हारे पास सिर्फ तुम। अच्छा आपको पता है अगर मैं मैट्रिक आर्ट्स में भी करती हूँ ना, मेरे पास आगे भी है, मैं FSC कर सकती हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन वो हमें नहीं बताया गया था, खैर मैंने तो FSC करनी भी नहीं थी।
0: अच्छा
1: बच्ची,
0: अच्छा बताओ आपको तो फिर भी चले साइंस में कराती है, मुझे तो कंप्यूटर साइंस में डाला, मुझे यही था घर वालों को कि ये कर ले मैट्रिक, बड़ी मुश्किल से मैंने डी ग्रेड के साथ की, आपको पता है
1: आर्ट्स करा देते ना वो ना एजुकेशन,
0: अब वो डी ग्रेड की सनद के लिए मैं आज तक रो रहा हूं, मुझे कराची से कोई मंगवा दे, कोई कराची में सुन रहा है मुझे तो प्लीज हेल्प मी आउट, मेरी डिग्री निकलवा दें, एक बेचारी गरीब कराची सेकेंडरी बोर्ड में पढ़ी हुई है, मुझे वहां से डुप्लीकेट चाहिए क्योंकि मेरी डिग्री मुझसे मिस हो गई थी, तो अगर कोई सुन रहा है मुझे हेल्प कर सकता है तो प्लीज उसे बताइएगा मुझे ये चीज। और दूसरी ये कि क्या नाम है, देखिए पढ़ाई तो जितनी हासिल की जाए, एजुकेशन जितनी भी आप चाहें, मेरी एक जानने वाले हैं उनकी बेटी को मैंने देखा, उस लड़की को ना पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन उसको मेकअप का बड़ा शौक था यार, उसको मेकअप का इतना शौक था। आपको पता है उसने मेकअप में डिग्री कर ली, वो अमेरिका बैठी हुई है और डॉलर्स कमा रही है और वो डिग्री लेके बैठी है मेकअप में,
1: मेकअप आर्टिस्ट है
0: जी, पूरा एक
1: स्टडी
0: है जो उसने वहां जाके फिर की, यहीं से उसने स्टार्ट किया और वहां जाके जब किया उसने, तो फिर वो अब कमाल की बंदी है, वो करोड़ों कमा रही है बैठ के महीने का।
1: लेकिन वही बात है ना कि आपको कोई गाइड करने वाला तो हो, समझाने वाला तो हो, हम लोग तो उसी चीज में रह जाते हैं। बट खैर एनीहाउ आप लोग के कॉल से
0: अक्सा का मैसेज आया है, हम बातें कर रहे थे वो सुन रही थी और अक्सा ने कहा है कि जी मेरा रब आपसे राजी रहे। ये बड़ी प्यारी, तो हमेशा मुझे यही कहती है कोई भी बात होती है ना जरा भी कुछ बोलूंगा मुझे डांट भी बड़ी खाई हुई है इससे। मतलब बच्ची ने छोटी हम डांट देते हैं उसको बोलता है, लेकिन यकीन करें कि मेरे और मेरे जैसे और दो चार हम और लोग हैं ऑफिस के अंदर, हम सबको बिठा के ऐसा ये जब बातें करती है, मैं समझाती बोलती है तो ऐसे बड़ों की तरह जैसे अम्मी जान नहीं बताती होती इस तरह से करती है। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है और सुन लेती है, अच्छी बात है, डांट भी खा लेती है और मैं इसका टिफिन खा जाता हूँ, कुछ भी लेकर आती है ना मैं
1: बस खाने में तो आपने किसी को भी नहीं छोड़ा
0: यार। मैं
1: आलू खा गया आप सब आलू लाइक
0: तो भी मैं यही कहता हूँ और यकीन करें नहीं यकीन करें ये है। और एक अब्बास है मेरा दोस्त वहां पे, दो मतलब इन लोगों के साथ मेरा ज्यादा वो है कि मतलब बहुत बेतकल्लुफी है अब्बास के, तो मैं ही इज द ओनली वन जिसके मैं और अब्बास झूठा एक दूसरे का खा लेते, हम नहीं खा रहे होते तो मतलब हम दोनों का बहुत ज्यादा हम खा लेते हैं। और एक ये इसकी तो कोई चीज भी ना मेरे अब्बास खा जाते हैं, हम नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते, पूछते सब खाए जिसे तुम्हारे साथ मैं करता हूँ कुछ भी, मतलब तुम तो खुद ही दे देती हो कि मांगेगा छीन ले दे ही दो कि पर्स में हाथ ना डाल, तो मतलब ये इस तरह से। तो अल्लाह जो है वो अक्सा को भी बहुत खुशियां दे, अल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छे करे और अब इतनी पढ़ाई कर ली मैं चाहता हूँ अल्लाह इसकी जिंदगी भी आगे बहुत आसान करे और बेहतरीन
1: लड़का है,
0: अच्छा सा प्यारा सा लड़का मिलेगा उसे।
1: साहिल देखो कितना
0: अरे इतनी लाइनें लगी हुई इसके पीछे
1: भाई ये है ना,
0: देख रहे आप तो डॉक्टर बन गई है अब तो। हम तो ये कहते हैं अच्छा हम उसको बहुत तंग करते हैं, हम हमारी कली के शिजा भी है तो वो उससे कहती है कि मैं उससे कहता हूँ कि आप नर्स है मैं कंपाउंडर हूँ
1: क्योंकि वो डॉक्टर है।
0: हां और वो डॉक्टर है तो हम उसको यूं भी तंग करते होते हैं, लेकिन ये कि अच्छा चल रहा है, मजाक मस्ती में गुजर जाते हैं, चल नमात होते हैं ऑफिस में गुजारने के अच्छे गुजारते हैं। जी,
1: Calls,
0: हाँ जी, 9202540 ही नंबर है।
1: हाँ, क्योंकि वो 111 111 वाला
0: तो है ही नहीं।
1: हाँ जी,
0: जी
1: कॉलर
0: आ रही है, जी आ रही है कॉल जाएंगे। जी
2: अस्सलाम वालेकुम। जी
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन हमारे साथ कहाँ से?
2: रुबेका जी, मैं आपकी रेगुलर लिसनर, पुरानी लिसनर मारिया शहजादी लाहौर से, आपको एक और चैनल पे सुना करती थी मैं।
1: मारिया क्या हाल है, खैरियत से है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, साहिब भाई आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप मुझे नहीं सुनती थी?
2: नहीं आपको नहीं सुना, लेकिन रुबेका जी को मैंने सही रुबेका नहीं रुबेका
0: आ गया सबके मुंह पे रुबाई का बेटी, अब तो वायरल हो जाएगा ये
1: वायरल
0: रुबाई का बेटी जी
2: रुबाई का
1: मारिया लाहौर में मौसम कैसा है?
2: कार्तिक को मैं सुना करती थी, बहुत प्यारी है हमारी आरजे है, आप भी बड़े प्यारे आरजे, आपको सुना बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत
2: और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और हमारी मुस्कुराहटों का बायस बने रहे, अल्लाह ताला आपको सलामत
1: रखे। मारिया लाहौर में मौसम कैसा है?
2: लाहौर में बहुत गर्मी है जी, बस दुआ है कि अपने रहमत बरस जाए तो बड़ी हम पे रहमत होगी, बहुत गर्मी है यहाँ।
1: मैं सोचती हूँ इस्लामाबाद में ये हाल है हमारे यहाँ, तो लाहौर में वाकई बहुत गर्मी है।
2: बिल्कुल लाहौर में बहुत गर्मी है। और रुबेका जी आपको मैंने सुना तो मुझे पुरानी याद आ गई।
1: अरे मारिया कॉल आई तो मुझे बड़ा ही
0: 30 साल पहले 30 साल पहले
2: 30 नहीं 1 साल पहले
0: अच्छा 1 साल पहले 30 साल पहले
2: इनको मैंने एक और चैनल
0: बैठा क्या होता
2: है।
1: अच्छा ता ता ता मैं जब पैदा हुई थी मैं तब से शो कर रही
2: हूँ। बुशरा साहिबा के साथ आप शो करती थी मुझे।
0: बुशरा बुशरा इकबाल की बात कर रहे हैं आप?
1: जी
0: बुशरा इकबाल की।
2: बुशरा इकबाल के साथ एक और चैनल पे कभी कभार ये शो किया करती थी, इस्लामाबाद से ही वो शो होता था और बहुत अच्छी, यानी कि दोनों के लिए ना कंबाइन प्रोग्राम बहुत अच्छे होते थे और आपके साथ भी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम इन्होंने किया है और यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि आपका प्रोग्राम चलता रहे और मैं सुनती रहूं।
1: मारिया जी
0: क्या बात है, लेकिन पता है इसके लिए ना थोड़े चार्जेस बढ़ जाएंगे,
1: पैसे देने पड़ेंगे।
2: नहीं आप टेंशन ना लें, एक एक आपको ना दोनों को एक एक कोक का गिलास पिला दिया जाएगा, ये ठीक है?
0: जी जी
1: बस डन हो गया। मारिया अब हफ्ता और इतवार तुम हमारी रेगुलर लिसनर हो जाओ, ठीक है? हफ्ता इतवार मैं और साहिल इकट्ठा शो करते हैं
2: इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम गला ठीक करके आऊंगी, बहुत कराऊंगी।
0: कोई बात नहीं,
1: खट्टी चीजें नहीं खानी, ठीक है? ख्याल रखना।
2: جی آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ، بہت شکریہ. ایک اور کالر، ہلو جی، السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی وعلیکم السلام. الحمد للہ، کون بات کر رہے ہیں؟
3: محمد فیاض بات کر رہا ہوں.
0: محمد فیاض، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں
3: جی الحمد للہ. میں نے
0: اچھا میری آواز سنی سنائی لگ رہی ہے؟
3: ہاں، ایک جگہ پہ کوئی سروس تھی، کوئی آئی وی آر سروس تھی،
0: وہاں جی جی جی جی جی وہ موبائل میوزک اسٹیشن تھا، وہ میرے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھا اور میں وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، وہ میں ہی دیکھ رہا تھا.
3: وہاں پر پہلے 3 سے 4
0: جس کے بعد ایک
3: بین شو کر دی تھی، تو وہاں پر میں نے آپ کو سنا ہوا ہے. جی جی جی جی بالکل. مزے کی بات بتاؤ آپ سے، میں نے کیسے لوٹے تھے.
0: جی جی
3: میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہاں پر ایک بات تھی، مجھے اردو نہیں آتی تھی.
0: اچھا،
3: تو ایک آپ نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا یہ بات صحیح ہے یا غلط. میں نے تکے پر بتایا کہ یہ بات صحیح ہے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا آپ کیا کہہ رہے، لیکن اس نے
0: کہا مبارک زبردست، صحیح ہے، گڈ ہو گیا. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہم اب شو کرتے ہیں یہاں پہ صبح 8 سے لے کے 11 بجے تک، سیٹرڈے سنڈے میں سنتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو.
4: ہمارے
0: کتنے پرانے لوگ لسنرز جو ہے نا، اور پتہ ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز ہمیشہ سے ویسی ہے ساحل.
4: اب عمر کے ساتھ نہیں آواز چینج.
0: دیکھیں میری بات سنیں، مجھے ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں 18-19 سال کا وائس اوور میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میں 25 کا ہوں تو ڈزنٹ میٹر. ہلو جی، السلام علیکم. ہلو،
4: السلام علیکم. ہلو ہلو،
0: جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں جی. ریبیکا آپ کی کال ہے.
4: اجاز صاحب کیسے آپ؟ خیریت سے؟
3: کیا حال ہے
4: آپ کی؟ اللہ کا شکر میں بالکل خیریت. آپ بتائیں.
3: میں
0: بہت دور ہو کے بولی، اگر آپ مائک لے کے آگے ہو جائیں گی.
4: ارے ایسے
0: مائک پہ ہی بولے،
4: اب آ رہی ہے آواز.
3: کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ ٹھیک ہیں
0: جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اعجاز کیسے ہیں آپ؟ کیا چل رہا ہے لائف میں؟
3: پہلے آپ کو دعائیں دیوں نا، خدا آپ خوش رہیں، سلامت رہیں.
0: بہت شکریہ.
3: تو نمبر ون شو اور زبردست کمپیئرنگ،
0: بہت شکریہ.
3: میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کو یوٹیوب سے اور ٹک ٹاک سے بڑا سرچ کیا ہے، آپ کا نام نہیں آ رہا ہے، کس نام سے آپ نے سہیل بھائی لکھا ہے؟
0: میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے مجھے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لکھیں گے ڈی جے ساحل خان، لکھیں ایف ایم 101 تو میری ویڈیوز آ جائیں گی سامنے، ٹھیک ہے؟
3: اور ہاں
0: ڈی جے ساحل خان کہیں بھی لکھیں گے ڈی جے ساحل خان، اور اگر انسٹا پہ ڈھونڈیں گے تب بھی آپ ڈی جے ساحل خان لکھ لیجئے گا، کہیں پہ بھی ڈی جے ساحل خان سے میں مل جاؤں گا آپ کو کہیں نہ کہیں. ان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سمپل ایٹ دا ریٹ کر کے ریبیکا عبدل لکھیں، آپ کو سارے جہان میں ملیں گی، ہر پلیٹ فارم میں یہی نکلے گی.
4: میرے نام کی اسپیلنگ ٹھیک لکھیے گا اعجاز؟ ریبیکا آر ای بی ای ڈبل سی اے عبدل اے بی بی ایل عبدل.
0: ایک دم کسی کو
4: پتا نہیں کون سی ریبیکا ٹیک کر دی، کیونکہ میرا پورا نام ہے ریبیکا عبدل.
3: یہ ریبیکا عبدل آپ نے لکھا ہوا ہے آگے؟
4: جی میرا پورا نام ریبیکا عبدل ہے، بس ریبیکا عبدل ایک ہی ہے بس.
3: میں ریبیکا آگے ریبیکا نام پہ سرچ کر رہا تھا، میں نے کہا عبدل تو نام نہیں ہے ان کا، پھر وہ ریبیکا آ رہی ہیں تو.
4: نہیں نہیں میرا نام ریبیکا عبدل ہے، میں تو ہمیشہ اپنا پورا نام لیتی ہوں میں.
3: ریبیکا عبدل آگے لازمی میں نے لکھنا ہے، پھر آپ آ جائیں گے.
0: بس آپ ہمیں سرچ کریں گے اور پھر ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا، پھر ہم دیکھیں گے آپ نے ہمیں جوائن کیا کہ نہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. جی جی
3: جی سعید ملک اور اشتیاق ملک اور پیک اپ کا جو کہہ رہے ہیں ان کو سلام کروں گا،
4: تھینک یو.
3: اور آپ کو اور ساری ٹیم کے لیے بہت کیئر جو ہیں، خدا آپ سب کو خدا خوش اور سلامت رہے.
4: آمین. اور کیا کھا رہے ہیں آپ؟
0: کتنے مزے کی، کہاں سے لائی
4: ہے؟ مجھے نا شوگر کم ہو جاتی ہے نا، صبح میں نے کچھ نہیں لیا.
0: ہلو جی السلام علیکم، شکریہ آپ نے فرمان ٹیون کیا. تم ہی بولو، میں سے تو بولنے نہیں ہو رہا.
4: میں نے بھی کینڈی لے لی، اسٹوڈیو میں کھانا منع ہے. टॉफी खाना भी मना।
0: बहुत मजे की कैंडी है ये।
4: चाहिए?
0: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
5: राम सर क्या हाल है
0: जी? कौन बात कर रहे हैं
5: जी? मैं साजिद अली अब्बासी बोल
0: रहा हूँ। साजिद कैसे हैं आप?
5: बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? मजाज ठीक है
4: अल्लाह का शुक्र। मैंने एक्चुअली साहिल को टॉफी देके ना उनका मुंह बंद कर दिया। मैंने कहा वो खाते जाए टॉफी, वो बोले ना। मैंने साहिल को ना कैंडी दी एक टॉफी, तो साहिल वो खा रहे हैं, इनका मुंह जुड़ गया। कुछ बोल ही नहीं पा रहे।
5: ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
0: ऐसी मेरी दांतों में चिपकी है जाके।
5: थोड़ा सा होना चाहिए ऐसे। माशाल्लाह आप लोग ने मुझे आपके ऊपर तो आप लोगों के ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतनी अच्छी गुफ्तगु लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इतना लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है बाकी के होते हुए?
4: क्या बात है बासी साहब, छा गए। मैंने कहा बासी साहब आप छा गए,
0: आप छा गए।
5: अब वो तो आपको पता है, छाना तो फिर है कि पहचान तो आप इंसान की हो जाती है, फिर आपको पता तो चल गया होगा सारी चीजों का, क्योंकि हमने अपनी पहचान तो खुद करा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया पहचानती है, क्योंकि कहते ना कि इंसान की पहचान अपने किरदार और इन चीजों में होती है, और इंसान जो है ना अपने किरदार से पहचाना जाता है।
0: जी बिल्कुल।
5: इंसान इंसान का करेक्टर अच्छा हो ना, अपनी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव, तो फिर इंशाल्लाह इंसान की पहचान बहुत बड़ी हो जाती है।
0: जबरदस्त जबरदस्त,
5: फ्लाइटों से नवाजता है।
0: जी बिल्कुल।
5: तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी सलामत रखे, अच्छे से प्रोग्राम करते रहे।
0: बहुत शुक्रिया।
5: आप लोगों के ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि ऑब्जेक्शन कर सके।
0: बहुत शुक्रिया।
5: आप लोगों का इंशाल्लाह पूरा साथ दे रहा हूँ हमेशा से, और तमाम लोग
4: इंशाल्लाह
5: आप लोग माशाल्लाह तो बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम सब लोगों के होते हैं। मेरी तरफ से तमाम वन वन टीम को, पूरी तमाम जो मेरे फैंस हैं उनको मेरी तरफ से सलाम, क्योंकि काफी दिनों से मेरी आने और गुफ्तगू नहीं हुई, तो बस मैं कुछ मसूलियात और मरहम भी था तो इस वजह से, तो बाकी मैं फेसबुक के जरिए इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ते में हूँ।
4: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू
4: सो मच।
0: अल्लाह हाफिज़।
4: शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: जी नेक्स्ट कॉलर, एक और कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम। शुक्र है आप लोगों को टाइम मिल गया मेरी कॉल अटेंड कर ली।
4: हाय हाय, तो कामिला आप कौन से सुबह से कॉल कर रहे थे? बस कर रहे
0: हैं। कैसी कि मीछड़ी आंटियों की तरह आके वालेकुम सलाम। वो नहीं आपने देखा था वो मुराद मन्नत वाली आंटी जो थी, मुराद मन्नत ड्रामा देखा? मुराद मन्नत उसमें जब आंटी नहीं होती वालेकुम सलाम, वो वाले लाते हैं आपके।
4: अच्छा एक सेकंड, मैं दे चुकी हूँ।
0: एक और मेरे हाथ में,
4: मैंने एक खिलाई है, एक और
0: अच्छी वाली है।

0: जी
1: ये सब बता रहे थे ना कि रबेका एक ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, रबेका अब्दुल जैना है, आप एक ही है।
2: अरे कामिल इतने शहजादे हैं आप, क्या बात है।
0: हर बार आके इस तरह की बातें की कोशिश करते हैं, मैं पक्का लिस्टनर पर वो भूल जाती है।
2: अरे नहीं कामिल एक
1: बता रहे थे ना कि रबेका एक ही है, तो इसमें कोई शक नहीं है, रबेका अब्दुल जैना है, आप एक ही है।
2: अरे कामिल इतने शहजादे हैं आप, क्या बात है।
0: हर बार आके इस तरह की बातें की कोशिश करते हैं, मैं

0: नहीं नहीं मैं नहीं बताया।
1: तो कह रहा है ये आपका नाम भूल गया, आप बताएं लड़ाई करवा रहे हैं बहन भाइयों में।
0: साहिल भाई दुआ के भूलते हैं ये तो, हमें लिस्नर बनाना नहीं चाहता, ये कहते हैं बस मैं इतनी मेहनत से आपकी कॉल काटता
2: हूँ। भाई और तुम इतने कोई तेज बंदे हो, आते हो लिस्नर बनने के लिए, थोड़ी देर बाद तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है, तुम्हारा इरादा बदल जाता है। मैं कहता भाई इसको जाने ही दो
1: क्योंकि वो रिबेका का लिस्नर है।
0: चलिए भाई बहुत मेहरबानी, जजाक अल्लाह, सबको सलाम और दुआ, बहुत अच्छा शो है,
2: बहुत शुक्रिया।
0: आप लोग हैं तो हमें भी जो है ना बहुत बड़ी खुशी होती है, और हमें जो है ना इस प्लेटफॉर्म से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अभी एक जैसे घर में बंदा बैठा होता है ना, तो मतलब सामने आमने सामने बातें हो रही होती हैं, ये नोक झोंक और ये चीजें इतने, ये सब अपने मतलब अपनों की अपनाई अच्छी महसूस होती है।
2: वेरी गुड। अभी शॉप पे है आपके घर पे?
0: जी शॉप पे।
2: वेरी गुड। तो जूते वूते बिक रहे हैं? सही
0: जूते मार रहे, जूते दे रहे हैं
2: सर। कह रहे जूते मार रहे।
0: एक रिक्वेस्ट भी करी थी, जब से मेरी इनके साथ बात होती है तो उसके बाद जो है ना वो गाहकों की लाइनें लग जाती है, पता नहीं अल्लाह पाक के जो है ना इनके नसीब से, इनके तवस्सुत से जो है ना वो मेरे नसीब में कोई रिज़्क लिखा हुआ है क्या। मैं जब से बात कर रहा हूं तो उसके बीच में जो है ना वो गाहक आना शुरू हो जाते हैं।
2: क्या बात है, तो एक खुशाई भेज दो उसको, गरीब को, फटी हुई चप्पलों में फिर रही है वो।
0: बहुत मेहरबानी,
2: काम दिखा।
0: एक तो जब रात की कार लगी है तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा बस अभी दोनों बहन भाई ने उधर ही जो है ना वो सारा कॉन्टेक्ट जोड़ लेने, और मेरी कार तो फिर गई और पूरा घंटा हो गया, मैं यकीन माने कार मिला
2: जैसा
0: की कार लगी है तो मैंने कहा बस अभी मेरी कार लगेगी।
2: ओहो बेचारे की कॉल ड्रॉप होगी, लेकिन राहत जो है उनको देख लें कि जब कॉल आई हमने कहा न्यूज है, कोई बात नहीं आप जाके न्यूज करें, मतलब इतनी अच्छी है वो, उनको यार फिट है अपनी, वो दोस्त है बड़ी अच्छी जी। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, मेरे ख्याल से
1: करना
2: चले कर ही लेते क्योंकि सुबह के बैठे में
1: दिल नहीं चाह रहा,
2: नहीं चाह रहा,
1: घर चलते हैं जी। लिसनर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना फीडबैक हमसे शेयर किया, आप कॉल करते हैं, इतनी मोहब्बत जो है वो आप मुझे और साहिल को हमारे शो के प्लेटफॉर्म के थ्रू देते हैं, हमें इतनी सारी दुआएं देते हैं,
2: एक्सेप्ट वन पर्सन,
1: वो तो सुबह सेकंड कॉलर थे हमारे।
2: बच्ची की वीडियो देखी आपने, वो जो छोटी सी बच्ची को स्टेज पे बोलते कि अपनी स्कूल क्लास के बारे में, तो कहती है आई लव माय क्लास, एवरीवन इज वेरी नाइस एक्सेप्ट वन लिटिल बॉय। ये इतने मजे की वीडियो थी,
1: वो बाहर वाली वीडियो तो हाँ जी, जी वॉक आउट,
2: हाँ फिर वो, हाँ ये बड़े मजे की वो था।
1: यस, यस, यस, यस, यस,
2: तो वो इसी तरीके से
1: सिलसिला चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जुम्मे को सुबह 9 से 11 बजे मेरा शो होगा और 7 से 9 बजे जुम्मे को साहिल का शो होता है, मुझसे पहले साहिल का शो होता है, उसके बाद मेरा शो होगा। हफ्ता और इतवार सुबह 8 से 11 बजे तक मेरा और साहिल का खैर से कंबाइन शो होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके गर्मी के दिनों को, सर्दी के दिनों को अच्छा मजेदार गपशप करके लाइटर मोड में लेकर आए, ताकि हमारी जिंदगी में वो परेशानी एक साइड पर रखकर हंसना मुस्कुराना सीखना और सिखाना, यही हमारा काम है। मेरी तरफ से साइन आउट, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे को, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ओवर टू यू।
2: जी बहुत शुक्रिया रिबेका, और ये बड़ी प्यारी बात रिबेका ने की कि हमारी भी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हम एक तरफ रख कर आपके साथ शामिल हो जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो इससे अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि एक इंसान जब आपके लिए कोई शो लेकर आता है तो वो आपसे फिर अप्रिसिएशन का ही मुतालबा करता है कि हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमें जो फीडबैक आप दें वो अच्छा और सच्चा फीडबैक दें, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें प्यार करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बढ़ती चली जा रही है। ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, लेकिन कभी कभार के बीच में कोई आकर इस तरह की बात कर देता है जिसका होमवर्क नहीं होता, जिसने सुना नहीं होता, तो फिर दिल थोड़ा सा हो जाता है कि यार ऐसी बात होने से खामखाई प्रोग्राम का टेम्पो चेंज हो जाता है। बहरहाल जी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। दिस इज डीजे साहिल साइनिंग आउट, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने की बानना।

आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी के शोबे में ताउन टायर बनाने वाली मुश्तरका कंपनी की लिस्टिंग के साथ एक अहम संगे मील उबूर कर चुका है। बलोचिस्तान में डिजिटल महारत के फरोग और ई कॉमर्स के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का अमल तेजी से जारी है। आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप मैचेस का मरहला खत्म हो गया है।
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

tune in to the Wannabar 101 FM. Mix FM, yeah. Mix FM.

This is FM 101. This is FM 101.

और शायर कहता है कि तेरे सिवा कौन है इस दिल का सहारा, वरना तो खसारा ही मुकद्दर है हमारा। हर गम की दवा तेरे सिवा कौन है मौला, कर दे तू मेरे गम की बला दूर खुदारा। मुझको मेरे अबा को मुसलमान बनाकर, मेरा मेरे अबा को मुकद्दर है सवारा। कर दे अता मुझको अपने कुर्ब की खुलवत, दुनिया तो समंदर है तू खामोश किनारा। बख्शिश का तलबगार हूँ ऐ मालिक ओ मुख्तार, एक अरसा हयात है गफलत में गुजारा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान को हिना लोधी का एहतराम भरा सलाम। पीपल आई होप यू ऑल आर फाइन साउंड सेफ और अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारे होंगे, ये मेरी दुआ भी है, मेरी उम्मीद भी और मेरी ख्वाहिश भी। यू आर लिसनिंग टू प्रोग्राम स्माइल एंड डायल विद योर ओन आरजे हिना लोधी और मेरा आपका साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक दिन के 3 बजे तक। घड़ी हमें ये बता रही है कि इस वक्त 1:35 हो चुके हैं। सो ये साथ जो तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट का है, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बेहतरीन गुजरे।

जून की 28 तारीख है, सन है 2026, दिन है इतवार का और दिस इज़ अ वीक इन पाकिस्तान। और इस बार ये जो 3-4 छुट्टियां इकट्ठे यौम आशूर की वजह से आ गई हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑब्वियसली कुछ लोग रोज़ा रख रहे होते हैं, इबादतें कर रहे होते हैं इस टाइम में, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट 10 दिन हैं ये भी मुसलमानों के लिए। सो आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे और इस वक्त को आपने जो इसकी अहमियत है, जिस तरीके से उसे गुजारना चाहिए उस तरीके से गुजारा होगा। पाकिस्तान वेलकम बैक वंस अगेन, एक ब्रेक के बाद आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज शो, बिकॉज जब आपसे कुछ ऐसा बात नहीं होती और यहाँ पे आके इस माइक के थ्रू आपसे हम जिसे कहते हैं कि हम कलाम नहीं होते, तो हम बहुत मिस कर रहे होते हैं आप सबको। एंड डेफिनेटली आई होप कि आप सब भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे होंगे। पाकिस्तान वंस अगेन टू टेल यू, यू आर लिसनिंग टू स्माइल एंड डायल विद योर आरजे हिना लोधी और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक सुपहर के 3 बजे तक। प्रोग्राम के स्टार्ट पे कौन सा सॉन्ग प्ले करूं जी, आई वाज थिंकिंग ऑफ चलें ये गाना प्ले करते हैं जी। ये गाना वैसे मुझे लगता है कि इट विल बी अ बिट स्लो स्टार्ट के लिहाज से, तो फिर हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, या फिर हम इसको भी सोच सकते हैं या इसको भी सोच सकते हैं। सो लेट्स फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हमने क्या प्ले करना है। दिस इज पार्टी सॉन्ग नैन कचरा रे, दिस द टाइटल। पाकिस्तान गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है और बस एक्सेलरेटर पे पांव रखना है। लेट्स सी हम कहां पे जाते हैं। मेरे साथ रहेंगे, बहुत सी गपशप बातचीत, आपकी कॉल्स यकीनन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। किस हवाले से बात करेंगे आज ये भी आपको बताती हूँ, बट इस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

इसके अलावा जी आपके जो फेसबुक के मैसेजेस अभी तक हमें रिसीव हुए हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जी। पीरज़ादा गुलाम मुश्तबा साहब बाराकबू इस्लामाबाद से आप हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहूँगी आपको। आप कहते हैं कि दिलचस्प वाक़िया है मेरे एक हम सफ़र का, अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। मुश्तबा मैं बात बात पे कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिर में मुझे ही बेजान कर गया। ओ बहुत खूब लिखा है आपने मुश्तबा साहब। कामिल अवान आप हमारे साथ हैं, आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आपकी जान सलाम और ढेरों दुआएं आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा आपने सब जिन भूत परियों को सलाम कहा है, राबिया वाकेंट इजाज कहूटा से, मिसेस राहत, मिसेस सईद, ज़ारा तलंगंग, वकास साहब मुल्तान से, बख्तावर कियानी, शरारती परी, अरीबा गुड़िया सबाहत, अरशद रक्षा अख्तर अटक, जैनब चक चकवाल से, ज़ारा शाह सबको सलाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल आपका। एंड विद दैट यू हैव सेड अस सम पोएट्री एज़ वेल। आप कहते हैं कि दुनिया है कितनी ज़ालिम, हस्ती है दिल दुखा के, फिर भी नहीं बुझाए हमने दिए वफा के। हमने सलू के यारा देखा जो दुश्मनों सा, फिर आया दिल हमारा रोए हैं मुँह छुपा के। क्यों कर ना हम बिठाएं पलकों पे इन गमों को, शामों सहर यही तो मिलते हैं मुस्कुरा के। ताउम्र इस हुनर से अपनी न जान छूटी, खाते रहे हैं पत्थर हम आईना दिखा के। कामिल आप कह रहे हैं कि हिना की खुशबू महक रही है, सो मुझे इस बात को सुन के खुशी है कि अगर आप तक ये खुशबू पहुंच रही है सो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा तारिक तरुआ तारिक महमूद साहब आपने में ज्वाइन किया, आप कह रहे हैं क्या हाल है आपका। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कामिल पिशनाथ से आप हमारे साथ हैं, अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप पिशनाथ से हमारे साथ हैं। एंड प्रोग्राम में भी ट्रैक शामिल करते हैं जी, और गाना कौन सा मैंने शामिल करना है, दिस इज़ अ पश्तो नंबर अगेन। मैं कुछ टाइम से मैं सुन रही हूँ और आप सबको सुना रही हूँ, बट आज भी इसे इन्जॉय करते हैं, देखते हैं कि आपको ये सॉन्ग पसंद आता है या नहीं। यू आर लिसनिंग टू 101 पाकिस्तान, दिस इज स्माइल एंड डायल। इस गाने के उस तरफ 051 111 0101 पर आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी।

जी बिल्कुल, पाकिस्तान वारकला की ये हसीन पहाड़ियाँ और इनके साथ मौजूद इस्लामाबाद का ये खूबसूरत सा शहर, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग और एफएम 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको कहते हैं खुश आमदीद। यस जी एन यू एंड पखर रगले एवरीवन, वेलकम टू द शो पाकिस्तान। और एज पर व्हाट आई सेड बिफोर, 051-111-000-101 पर आपकी कॉल स्ट्रीटली प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और आपने मुझे बताना यह है कि जिंदगी ने अभी तक जो कुछ आपको सिखाया है इसमें सबसे बेहतरीन क्या सिखाया है। सो लेट्स सी हु इज विद अस।

जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। एंड येस, यू आर लिसनिंग टू योर ओन शो विच इज़ द स्माइल एंड डायल विद योर आरजे हिना लोधी, और मेरा आपका साथ रहेगा ठीक दिन के 3 बजे तक।

0: आपकी कुछ फेसबुक के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शफिया शरीफ, आप हमारे साथ हैं। हम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे हिना, आई एम फ्रॉम सिंगापुर। एवरी डे फ्रॉम 7 AM टू 10 PM सिंगापुर टाइम आई हेयर FM 101. This station give a lot of information, also share good topics for knowledge. MashaAllah, the songs all are very nice to hear. Thank you so much, ji. Iske alawa, Tariq Mahmood sahab, aap keh rahe hain ki meri sister bhi aapko sun rahi hai, Maimuna. So, Maimuna, assalamu alaikum, and I hope ki aap theek thaak hongi. Sanim Subhan, aap hamare saath hain. Aap keh rahe hain, assalamu alaikum, aap bhi kaisi ho? Ishtiaq Malik, alhamdulillah, madakhil, Mrs. Saeed Malik, aur tamam listeners ko puro bhara salam. After 10 days, ji, bilkul after 10 days. Akbar Khan, aap hamare saath hain. तमाम खूबसूरत समातों को सलाम दे रहे हैं। आपने हमें दिन बखैर कहा है, कराची से आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। एंड यू आर सेइंग दैट नंबर वन, अब आप चैनल को कह रहे हैं या आरजे को कह रहे हैं, बट हम दोनों को ले लेते हैं, ठीक है? ओके, इसके अलावा जी, किसने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान, अगर आप हमें सुन रहे हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन फेसबुक। आपने करना क्या है जी, अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करना है, टाइप करना है FM 101 चैनल पाकिस्तान, और भेज दीजिए अपना मैसेज हमें, जो भी आप कहना चाहते हैं टॉपिक के हवाले से, ये जनरल कुछ मैसेज आपने देना है। सो वी आर हेयर टू रीड दोज मैसेजेस। इजाज़ बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम, इश्तियाक मलिक को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। और वाकेंट को ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आप, कामल राबिया वाकेंट को। चलिए, नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो हमारी रबिया के लिए हो जाएगा। सो पाकिस्तान, यू कैन कॉल मी एट 0501111001001, और मैंने आपको ये फीफा 2026 की भी अपडेट देनी है, जो उसका पहला मरहला है वो ख़त्म हो गया है। कौन कौन सी टीम्स ऐसी हैं जो कि आगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किए हैं उन्होंने, उसके हवाले से भी हमारी आपकी डिस्कशन होगी, बट पहले थोड़ी सी बातचीत अब आपसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। राबिया, कैसी है आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
1: अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है। राबिया, मुझे ये बताएं कि सेहत तबीयत सब ठीक ठाक है?
1: राबिया, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही फोन पे।
0: बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं आ रही है?
1: आ रही है
0: यार, ये क्या मसला है? आज कुछ तो मसला है ऐसा, आई डोंट नो कि कौन इसको सॉर्ट आउट कर सकता है कि मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है।
1: हेलो
0: जी, जी आपको, अब कुछ आ रही है आवाज़?
1: जी जी,
0: आप
1: थोड़ी बता रही है।
0: चलें, दैट इज बेटर। राबिया, मुझे ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, जिंदगी ने जो कुछ सिखाया उसमें सब इससे बेहतरीन आपको क्या सिखाया?
1: जिंदगी ने बहुत कुछ सीखा, आपका जितनी जिंदगी गुजरी है उसमें तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे आई है, बहुत कुछ सीख लिया है जिंदगी से, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मैंने सीखा है वो मैंने ये सीखा है कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत आए, तो आपने सब्र करना है और अल्लाह ताला पे छोड़ देना है, तो अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से भी निकालते हैं। और कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है, कोई आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई तकलीफ पहुंचाता है, तो उसमें भी आप सब्र करें, आप दूसरे से बदला ना दें, आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें और कुछ सब्र कर लें, तो अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन बदला लेने वाले हैं और अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से निकाल देते हैं। ये जो दो बातें मैंने सीखी है कि आप सब्र करें और अल्लाह ताला पे छोड़ दें, ये दो चीजें मैंने सीखी हैं।
0: बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप, ये जो जिंदगी है वो ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा जिंदगी में अभी तक, आपको ये लगता है कि अभी भी कौन कोई ऐसी यू नो लाइक जैसे आप कहते हैं ना कि एरिया जहाँ पे अभी तक आपको अपनी जात में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है?
1: मुझे नहीं समझ आ रही आपकी आवाज़, बहुत कम आ रही है।
0: चले, ठीक हो गया राबिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, और इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते
1: हैं। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, तमाम सुनने वालों को सलाम, कामल भाई सुनने होंगे उन्हें भी सलाम, और वो याद करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन भूख कह के क्यों याद करते हैं ये उनसे गिला है मुझे,
0: बस वो मैं अब क्या मैं कहना नहीं चाहती। चले ठीक है राबिया, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल,
1: टेक केयर, बहुत अच्छा लगा आपके लिए, बहुत सी दुआएं, बहुत सारा प्यार,
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। दिस वाज राबिया विद अस, एंड आई डोंट नो कि इन लाइंस में क्या प्रॉब्लम है या हमारे साथ, हम तो देखें वैसे ही नॉर्मल बोल रहे हैं जैसे हम बोलते थे, बट ये कि अभी जो है वो कुछ ना कुछ तो मसले मसाइल ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज़ अभी भी आ रही है या नहीं आ रही? पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइएगा अपना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, नाम बताइएगा।
2: जी, मैं असल में इस बार कर रहा हूँ, फरुखाबाद ट्रेन और मेरा गांव चांदर, ठंडा से आज लाहौर नहीं चल रहा पाया, तो चलो मैं इस्लामाबाद चलन दिया, भैन आ रही है, रिक्शा भी आ रही, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸਭ ਚੈਨਲ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ।
2: ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਵਨ ਮੰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਨ ਮੰਨ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਨ ਮੰਨ ਤੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਆਈ ਰਿਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਸਮਝ ਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ
0: ਜੀ ਜੀ,
2: ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਆਲ ਰਹੇ,
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
2: ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ ਔਰ 101 ਕੋ ਸੁਣ। پاکستان ایک ٹریک پروگرام میں شامل کرتی ہوں اینڈ آلا بالی از دا ٹائٹل سانگ، نمرا روئے کی آواز میں یہ گانا آپ سنیں گے پاکستان۔ آئی ہوپ کہ جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جو آواز کا مسئلے مسائل آپ تک فون پہ نہیں آ رہے، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا ٹیکنیکلی ہم اس چیز کو کس طریقے سے ریزولو کر سکتے ہیں۔ سو فی الحال آپ انجوائے کیجیے اس ٹریک کو پاکستان، اس کے بعد لوٹ کے آؤں گی تو آپ کی کالز ڈیفینیٹلی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں پھر 101 چینل پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پہ، آپ کے میسجز کا مجھے انتظار ہے۔ آئی ول بی بیک آفٹر دس ٹریک۔

0: जी बिल्कुल पाकिस्तान, वेलकम बैक एवरीवन एंड विल स्ट्रेटली मूव टुवर्ड्स योर कॉल. अस्सलाम वालेकुम कॉलर.
1: वालेकुम सलाम, आपकी जी क्या है, ठीक हो?
0: जी बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ. भाई अपना नाम बताइएगा और शहर का नाम.
1: लाहौर से बात कर रहा हूँ आपकी जी, बोधी जट.
0: अच्छा जी, लाहौर से आप हमारे साथ हैं, खुश आमदीद आपसे कहते हैं. मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी ने आपको सबसे बेहतरीन क्या सिखाया?
1: जिंदगी आपकी जी बेहतरीन तो बड़ा कुछ सीखा है, तो लेकिन जो अगर आपकी साड़ी रक्षा कर रही थी ना, तो किसी को इतबार नहीं करना चाहिए आपकी जी.
0: बिल्कुल ठीक हो गया. और कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
1: हाँ जी, सब सुन रहे सलाम अमीत भाई साढ़े चौधरी साहब भी सुन रहे हैं,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी दुआओं का. आप भी खुश रहें और सलामत रहें. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद तैमूर, आप हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहूँगी आपको. तैमूर क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
2: सबसे पहले तो आपको लॉन्ग टाइम के बाद वेलकम.
0: बहुत शुक्रिया.
2: तो शायद बात कॉल ना मिलती या कहीं जाना था मैंने, तो लेकिन सब कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही, तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं.
0: अच्छा, आपको तैमूर आवाज आ रही है मेरी?
2: बिल्कुल यस, राइट, ऐसी आ रही है. जैसे नंबर वन कॉलर, नंबर वन नंबर वन आवाज.
0: थैंक यू सो मच तैमूर. जिंदगी ने क्या सिखाया आपको, कुछ बताना चाहेंगे सुनने वालों को?
2: सबसे पहले तो बात यह है कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है. अगर आप वक्त की तमली नहीं करेंगे तो आप कीमती चीज खो देंगे. जो कुछ सीखा वक्त सीखा. आज का काल काम काल पर मत करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा. और लास्ट में कुछ बोल दूं?
0: जी जी प्लीज.
2: कमाल का हौसला था, कमाल का हौसला था करबला में शहीदों और गाजियों का.
0: अच्छा,
2: वहाँ पर सबर किया जहाँ सबर मुश्किल.
0: क्या बात है, क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अल्लाह हाफिज. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अस्सलाम वालेकुम कॉलर. ओके जी, सो लाइन ड्रॉप हो गई, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं. पाकिस्तान, अगर आप सुन रहे हैं और आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो डायल कीजिए 051-111-0000-101 पे. 2:30 तक आपकी कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ आपसे जनरल गपशप करेंगे. हो सकता है कि कुछ एक आध कॉल ले लूँ 2:30 के बाद भी, लेकिन मोस्टली जो कॉल्स हैं वो आपकी दोस्ती 2:30 तक लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. एंड यस, यू कैन कॉल अस पाकिस्तान 051-111-0001 आपके हमारे दरमियान रबते का नंबर है. और तैमूर ने हमें बताया कि आवाज़ हमारी ठीक आ रही है, जिसकी हमें खुशी हुई है. सो इससे पहले जो है वो कॉलर्स हमें बता रहे थे कि शायद आवाज़ जो है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है. अस्सलाम वालेकुम कॉलर.
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से मौजूद है? जी जी जी बताइए.
3: आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं?
3: जी
0: आप ठीक हैं?
3: शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए, मुहर्रम के दिन खैर से गुजरे हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर से गुजरा है.
3: अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अमन था हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद के, बड़ा अमन था इशावा से लेकर शायद कराची तक.
0: बिल्कुल ऐसा.
3: बाकी न्यूज की तो पता नहीं है, बाकी आपका प्रोग्राम तो मैं रात को स्पेशली सुनती हूँ. जितना ज्यादा उन्होंने ये लगाए मट्टी वगैरह तो बड़ा मजा आया ना, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता
0: है ना. सही,
3: इन्होंने अभी तक इन्होंने मतलब पंख वगैरह नहीं लगाए.
0: चलें हाँ. क्या बात है. अच्छा मुझे बताइएगा कि जिंदगी ने, जिंदगी से हम सब बहुत सीखते हैं, आपने जिंदगी से ऐसी क्या चीज सीखी जो आप हमारे सुनने वालों को?
3: सवाल रखा है कि मैंने कहा जिंदगी में सबर और हालात का मुकाबला.
0: सबर और हालात का मुकाबला. सही,
3: छोड़ी हुई है ना, पानी कर रही हूँ माशाल्लाह से.
0: अच्छा चले माशाल्लाह माशाल्लाह.
3: तो जरूर याद रखना. और सॉन्ग तो आपके लाहौर वाले, आपने सॉन्ग शुरू किए?
0: जी जी हम प्ले कर रहे हैं.
3: अच्छा, तो लाहौर वाले
0: अच्छा चलें ठीक है बिल्कुल सही हो गया बिल्कुल सही हो गया थैंक यू सो मच जी जी
3: बड़ी प्यारी आवाज बड़ी प्यारी आवाज में लगाते हैं आपके चैनल पे लगता है बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं
0: चले अगर मिल जाता है तो जरूर प्ले कर देती हूँ अदरवाइज नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में ठीक है थैंक यू सो मच
3: न्यूज चैनल पर अच्छा
0: चले आप कोई बात नहीं आप सर्च करके मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं मैं वहां से देख लेती हूँ ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा है ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम
4: जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं मैम
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अपना नाम बताइएगा लाहौर से मारिया शहजादी आप हमारे साथ हैं खुश आमदीद कहूँगी और लाहौर क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के ऊपर
4: मैं टॉपिक पे ये कहना चाहूँगी कि सबर समर को अल्लाह ताला ने पहले मेरे अंदर में बहुत ज्यादा रखा हुआ है ना वक्त के जो बाकी मुजाहरा होते हैं ना वो कभी मुश्किल बना देते हैं तो हालात का मुकाबला करना सीख रही हूँ अभी
0: चलें क्या बात है जिंदगी जो है वो एक सीखने का लगातार अमल है और हर एक नए सेकंड में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और कुछ कहना चाहेंगे आप
4: जी मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि मैडम सदर पानी है ना जो उनको मेरी तरफ से स्पेशली सलाम कहेगा और उनसे मुलाकात होगा
0: चले बिल्कुल ठीक है आपका सलाम मैडम तक पहुंचा देंगे ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़ दिस वाज अनदर कॉलर विद अस फ्रॉम लाहौर और आज लाहौर वाले जी जाग रहे हैं मेरे इस्लामाबाद पिंडी चकवाल अटक वाले ये सारे के सारे हरिपुर तक की आवाम मेरी सोई हुई है तो कहाँ पे हैं सारे के सारे जाग जाइए पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम कॉलर ओके जी थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल एक गाना सॉरी शामिल कर लेते हैं और दिस टाइम आई विल बी एडिंग ज़ीशान रोकरी इन द शो और वो कहते हैं जी बड़े अफसोस की गल है तो पाकिस्तान फिर बड़े अफसोस की गल है तो सुनने तो फिर वापस आने तुम सुन रहे हो जी एफ एम 101 इस्लामाबाद मुझे हिना लोधी कहते हैं और इस रायकी जो है वो मुझे बहुत पसंद है बड़ी मीठी आवाज़ है बड़ी मीठी ज़बान है पाकिस्तान की और इसमें जब भी कोई कुछ भी गाता है चाहे वो अता उल्लाह से खेल हुई हों

हूँ। अल्फाज से हम कहते तो हैं कि हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पे, अल्लाह ही के पास हर छोटा सा छोटा बड़ा से बड़ा फैसला करने का हक है, सब कुछ है, लेकिन अपनी तरफ से हम

करना छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला को सुपुर्द करें अपने मसले को और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आपने किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई नौकरी करनी है तो उसके लिए आपने कोशिश नहीं करनी है, कोशिश आपकी जारी रहनी चाहिए, लेकिन वो जो एक आप अपने आप को टेंशन और परेशानी में हर वक्त रखते हैं ना, और फिर डिप्रेशन की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम निकल सकते हैं अगर हम अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, इन शॉर्ट। सो दैट इज़ बेसिकली द मैसेज फॉर टुडे। और जहाँ तक सीख की हमने बात की, तो ज़िंदगी में हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे हमारे लिसनर्स ने हमें आके बताया, बहुत सो ने कहा कि उन्होंने सब्र सीखा है। और अगर आप मेरे से भी पूछें तो यकीनन मेरी ज़िंदगी के जो अर्ली ईयर्स जब मैं शऊर में आई और मैंने अपने आप को समझना शुरू किया, और अगर आज मैं अपने आप को देखती हूँ, तो यस मेरी अंदर मेरी पर्सनालिटी में बहुत पेशेंस आया है, बहुत सब्र आया है। पहले क्या होता है कि हम बहुत रिएक्टिव होते हैं, हम फौरन से जवाब देने की कोशिश करते हैं, हम फौरन से रिएक्शन देते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन अब क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और उम्र के साथ साथ आपके अंदर पेशेंस, सब्र बर्दाश्त शुरू आ जाती है, होनी आनी शुरू हो जाती है। और फिर आप क्या कर रहे होते हैं कि अगला कोई बात अगर कर भी रहा है जो आपको अच्छी नहीं भी लगी, तो आप, मैं क्या करती हूँ नॉर्मली, मैं मुस्कुरा के ना उस बात को कहीं इधर उधर करने की कोशिश कर देती हूँ। ऑल्दो वो बात मुझे बुरी लग रही होती है, ऐसा नहीं है कि बात आपको असरअंदाज नहीं हो रही होती आपकी ज़ात के ऊपर, लेकिन आप उस पर रिएक्शन देना छोड़ देते हैं। और जब आप रिएक्शन नहीं देते ना, तो आप यकीन करें कि अगला भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझता है कि शायद उससे गलती हो गई, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और ज़िंदगी ने क्या सिखाया, आप सब ने हमें बताया। सो अभी भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, तो 0511111001 पर आप हमें कॉल तो शायद अब नहीं कर सकते, बट FM 101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपके मैसेजेस जो मेरे पास आएंगे 2:55 तक, वो मैं ज़रूर शामिल करूँगी। ये गाना तो हमने थोड़ी देर बाद प्ले करना है, अभी तो हमने आपको क्या बताना है, अभी हमने आपको ये बताना है पाकिस्तान के फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो मेन राउंड था, जो फर्स्ट राउंड था, वो कंप्लीट हो गया है। 32 टीमों ने क्वालिफाई किया है नॉकआउट राउंड के लिए, और अब डेली जो है वो मैचेस होंगे, और इन मैचेस में से जो टीम जीतती जाएगी वो आगे बढ़ेगी बेस्ट 16 के लिए। ठीक है, ये राउंड ऑफ 32 है, इसके बाद राउंड ऑफ 16 होगा, देन क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल की तरफ हम बढ़ेंगे। सो कल जो पहला मैच होना है राउंड ऑफ 32 का, ये मैच होगा साउथ अफ्रीका और कैनेडा के दरमियान। इसके अलावा मंगल को नीदरलैंड और मोरक्को की टीम्स शामिल हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाई करने वाली टीम्स हैं, अगर मैं उनका जिक्र आपसे करूं, तो जर्मनी, पैराग्वे, फ्रांस, स्वीडन, ये वो टीम्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट राउंड के लिए। और इसके बाद और कौन कौन सी टीम है, बिकॉज 32 टीम्स हैं जो हमारे पास, फ्रांस की टीम है, स्वीडन की टीम है, बेल्जियम, सेनेगल, यूएसए, बोस्निया की टीम है, इसके अलावा जी स्पेन की टीम है हमारे पास, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, क्रोशिया, ब्राज़ील, जापान, इसके अलावा नॉर्वे की टीम है, मैक्सिको, इक्वाडोर, इंग्लैंड, कॉन्गो की टीम है, स्विट्ज़रलैंड, अल्जीरिया, कोलंबिया, घाना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना एंड कैबो वर्डे, ये वो टीम्स हैं जो कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। और मैचेस जो है वो कल से शुरू हो रहे हैं राउंड ऑफ 32 के। कल मैंने आपको बताया कि पहला मैच साउथ अफ्रीका और कैनेडा के दरमियान खेला जाएगा। सो एवरीबडी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड ऑफ फीफा 2026। सो ये कुछ अपडेट आपके पास हमने आपको दी, किस हवाले से जी इस वक्त दुनिया फुटबॉल में, बल्कि कह सकते हैं कि दुनिया में फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट, और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है उसका सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बल्कि सॉरी होने जा नहीं रहा, हो रहा है। सो उसकी अपडेट तो देनी लाजमी है।

आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कामल आप कह रहे हैं आप ही जान मैसेजेस पढ़ के जाएं प्लीज। जी बिल्कुल, मैसेजेस तो लाजमी पढ़ने हैं कामल, हम आपको कहते हैं मैसेज का जब आप लोग करते हैं तो यकीनन पढ़ना उसे लाजमी होता है। आप कह रहे हैं अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। फजल महमूद साहब आप कहते हैं कि हल अल्लाह हर मुश्किल का हल है, देर इज़ नो डाउट इन इट कि अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात आपकी किसी मुश्किल किसी परेशानी किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती और आपकी मुश्किलात को ख़त्म नहीं कर सकती। फजल महमूद साहब आप हमारे साथ हैं सारिम सुबहान, आपने हमें कहा जीवे जीवे इश्तियाक, ओके जी बिल्कुल ठीक है इश्तियाक साहब की खैर हो। अहमद आप हमारे साथ हैं, आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह प्रोग्राम वेरी नाइस, मलेशिया से सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तलत जबीन आप कहती हैं ज़िंदगी ने लॉट्स ऑफ लव और खुलूस सिखाया है, माशाल्लाह ताला यू आर ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से

बल्कि मैं कहती हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा खुश रखे। वसीम बादामी, आप वसीम अब्बासी साहब आप हमारे साथ हैं। ओके जी। फजल महमूद आप हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, आपको कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। कामिल आपने कुछ शेर भेजा है जिसमें मुझे लगता है मैं गलती कर दूंगी इसलिए नहीं पढ़ूंगी। तलत जबीन सादिक आपने कहा है कि 2007 से दिन रात सुन रही हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यकीन करें कि मैं सिर्फ शुक्रिया कह नहीं रही, मैं दिल की गहराई से आपके शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं। और आप कह रही हैं कि आप हिनको स्पीकिंग है, जी बिल्कुल मैं हिनको स्पीकिंग हूँ। किंग फजल खान काकड़ आप हमारे साथ हैं फ्रॉम ईगल फ्रेंड्स क्वेटा पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है और आपने हमें पोइट्री भेजी है और इतनी बड़ी पोइट्री भेज दी है कि बस उसे देखे। चले एक दो शेर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि देखने उनसे मिलाता है खुदा कौन से दिन, कौन सी रात हो मकबूल दुआ कौन से दिन। और बिल्कुल ठीक हो गया कामिल, थैंक यू सो मच जी। खालिद मलिक साहब आप हमारे साथ हैं, सलाम हिना हमारे, पहली दफ़ा प्रोग्राम सुन रहा था, अच्छा लग रहा है मुझे। ज़िंदगी ने सबक दिया है कि बेलौस नेकी करें और बदले की उम्मीद किसी इंसान से ना रखें, ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। गुड शो, थैंक यू सो मच जी। बड़ी अच्छी सीख आपने हमसे शेयर की, या हमने भी सीखा ज़िंदगी से कि लोगों के साथ अच्छा ज़रूर करें लेकिन कभी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो वापसी पे आपके साथ अच्छा करेगा। तलत जबीन आप कह रही हैं कि आप हमारी रेगुलर लिसनर हैं पिंडी से, बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगी आपको, आपको हमारी आवाज़ पसंद आती है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा अकाला कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। इजाज़ बुखारी साहब आप ही मेरा दोस्त पाक आर्मी में इस वक्त आपका प्रोग्राम सुन रहा है, उसको सलाम। उमर खान टोला, ओके उमर खान साहब आई थिंक आपके दोस्त का नाम है, तो आपको हम सलाम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। कामिल अवान मेरे अंदर ही तो कहीं गुम है, किसी से पूछूं तेरा निशान जाना, ओके जी। तारिक महमूद आप कह रहे हैं कि आप ही मैं और मेरी सिस्टर आपको सुनते हैं लेकिन कमेंट फर्स्ट टाइम किया है, आपका शो बहुत अच्छा है। सो तारिक साहब अगर आपने पहली दफ़ा कमेंट किया तो आज ही कोई 50-60 मैसेज कर दें फिर आप। कामिल अवान आपने कहा मुत्साना दे ज़माने को परवरदिगार दिल, आशुफ्ता है दिल फरिख्ता है दिल बेकरार दिल, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दिया है। माशाल्लाह जी प्यारी पोस्ट फेसबुक की है कामिल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही बाबा की आईडी से कमेंट कर रही हूँ, ओके। सो अपना नाम बताइए कि आपका अपना नाम क्या है, ठीक है। गुलयासी नाज दिल नशीन रेडियो लिसनर्स क्लब मुल्तान की तरफ से आप गुलयासी नाज, एम हफीज़, ज़ुर्रहमान भक्कर, फौजी असलम का खलूस प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये ट्रैक था जी मैं आ लिखूं तो आ जाए, थोड़ा सा इसे सुनते हैं साथ साथ आपके मैसेजेस शामिल करते हैं, फिर मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में गाना रखा हुआ उससे प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। कामिल आप कह रहे हैं राबिया कहती है ना आप ही अच्छी हैं लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखा है ना आप ही चांद जैसी, ओके जी ठीक ओके। मोहम्मद वसीम साहब आपने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर पखैर अगले, ग्रेट टू हेयर यू अगेन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, वेरी वार्म वेलकम टू यू फ्रॉम माई साइड, होप यू हैड अ वंडरफुल टाइम विद लव वंस, सलाम टू ऑल वैल्यूएबल लिसनर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ एफएम 101, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। शफीक जान साहब आपने हमें ज्वाइन किया है।

शायर कहता है कि कभी दुख ने आंख भर दी, कभी सुख ने आरुलाया, कभी खामोशी में जागे, कभी शेर ने शोर ने सुलाया, कभी रह के दूर हम भी हुए आशना किसी से, कभी खुल सका ना हम पर जिसे दिल में था बिठाया, कभी दर्द में शिफा थी, कभी था शिफा में दर्द, कभी तबीबे जहाँ के दर पे, कभी कातिल को रहम आया, इस कश्मकश में गुजरी खाकी की जिंदगी भी, कभी कह ना पाए हम भी, कभी वो समझ ना पाया। पाकिस्तान, द टाइम इज वेरी नियर, सो दैट आई हैव टू क्लोज द शो। सादगी तो हमारी जरा देखिए। दिस इज द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

जिसे सुन के गम मेरा मिट सके, वही गीत गा के मैं उदास हूँ। मेरे हम नशी कोई दिल नशी कोई गजल सुना, मैं उदास हूँ तेरे बिन भी ये दिन गुजर गए, तेरे नक्शे दिल से उतर गए। कभी रू बरू मेरे ख्वाब में किसी रोज आ मैं उदास हूँ, मेरे प्यार का ये सिला दिया मुझे चार दिन में भुला दिया। कभी आके मेरे मिजार पर कोई जला दिया, मैं उदास हूँ। पाकिस्तान आज के लिए बस इतना ही, जाते हुए दुआ और उम्मीद यही कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो, और खुदा करे कि मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म जिंदगी वबाल ना हो। For now until next time, this is your RJ Hina Lodhi signing off. John Elia ने कहा था कि हदे अदब की बात है, हदे अदब में रह गई। हदे अदब की बात है, हदे अदब में रह गई। मैंने कहा कि मैं चला, उसने कहा कि जाइए। जिंदगी ने साथ दिया और मेरे रब ने मोहलत दी, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। Till then, फी अमान अल्लाह पाकिस्तान।

यस, वी आर बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक एंड आई रियली होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे. गर्मी को एंजॉय करोगे यार, इतनी गर्मी है लाइक लिटरली इट्स जस्ट लाइक यू नो यू आर कमिंग आउट ऑफ एन ओवन. ट्रस्ट मी, अगर इस वक्त आप रोड पे मौजूद हैं तो आई एम श्योर कि आप भी इस गर्मी का सामना कर रहे होंगे. और मतलब फिर मैंने कहा कि चलो जून है, जून में अब गर्मी नहीं होगी तो और क्या होगा, लेकिन इतनी गर्मी क्यों हुआ. अच्छा वो अलग बात है कि हम लोग देखें गर्मी को कितना हर दफ़ा कह रहे होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है. मतलब जिस बंदे से आप मिलेंगे वो कहेगा यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, मूड ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा, तो हम हर चीज़ का ब्लेम जो है वो गर्मी पे डाल देते हैं. लाइक इट्स वेरी ईजी, कुछ भी आप किसी को कह दें और अगला बंदा ऑफेंड हो जाए तो आपको यार बस गर्मी से आया हूँ ना, या गर्मी से आई हूँ, इतनी बस गर्मी है कि बस जो है ना मैंने ये कह दिया. पर जनाब हाल ही में यूके में गर्मी हुई है जनाब, बाहर के ममालिक में लोगों ने गर्मी देखी है तो वो बेचारे हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं. मतलब कोई ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे अगर आप यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया पे हर दूसरी वीडियो वो इसी बारे में है, जहाँ पे हमारे बाहर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं भाई बहुत गर्मी होगी, और जब टेम्परेचर पूछो तो टेम्परेचर कितने 34. मतलब हम तो हंस के 34 गुजार देते हैं ना, कभी हमारा 34 टेम्परेचर होता तो हम कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम गर्मी में मतलब इतना शुक्र कर रहे होते हैं. बट बाहर चूंकि यू नो क्लाइमेट चेंजेस आ गई हैं, हर जगह पे मौसम बदल रहा है, सो यहाँ पे हम तो गर्मी को रो ही रहे हैं, बल्कि बाहर के जो ममालिक हैं जो कंसिडर किया जाता है कि ठंडे इलाके हैं, ठंडे मुल्क हैं, लाइक यूके हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वहाँ पर भी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है. एंड पीपल आर जस्ट यू नो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हो रहा है. एंड नाउ वी आर गेटिंग टू नो कि वो इलाके, वो कंट्रीज़, वो शहर इनफैक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था कि ठंड होगी और गर्मियों में बहुत सारे लोग वेकेशंस पे चले जाते थे, अब वो जगह भी जो है वो गर्म होना शुरू हो गए, विच इज़ नॉट रियली कूल. लाइक हम लाइटर नोट पे बात तो करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीरियस एंड पे देखें तो ये चीज़ें हम बहुत एक बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. लेकिन मैं इतनी सारी वीडियोस देख रही थी, सो फनी एट द सेम टाइम के बेचारे उनको समझ नहीं आ रही, लाइक बसेस रुक रही हैं, बसेस से लोग बाहर आ रहे हैं, अपने सिरों पे पानी डाल रहे हैं और परेशान है कि भाई इतनी गर्मी हो गई है. तो मतलब मैं तो कह रही थी जरा वो कराची आ जाए एक दो दिन के लिए तो मज़ा ही आ जाए. नहीं, पर मसला ये है ना कि देर लॉट ऑफ पीपल हु आर कंप्लेनिंग कि वहाँ पे एयर कंडीशनर और उस तरह इतना सिस्टम भी नहीं है, तो देन डेफिनेटली आपको ज़्यादा वो चीज़ें जो फील भी होते हैं इवेंचुअली, जब आपकी इतनी आदत नहीं रहती तो भी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं. बिकॉज यू नो अगर आप इस्लामाबाद के रहायशी हैं और अगर आप कराची कुछ दिनों के लिए भी चले जाते हैं, इवन मैं इस पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो चूंकि इस्लामाबाद का जो लाइक टेम्परेचर है इट्स स्टिल बेरेबल, बट यू इफ़ यू मूव टू कराची तो वहाँ पर जाकर जो है आप सर्वाइव नहीं कर सक रहे होते हैं, बिकॉज आपको इतना हाई टेम्परेचर जो है उसमें रहने की आदत नहीं होती है, राइट. सो एनी वेज जनाब, दिस इज समथिंग दैट इज अबाउट वेदर. लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए एक खुशायन खबर ये है कि जुमे तक की प्रेडिक्शंस हैं कि जुमे को जो है वो हो सकता है कि बारिश हो और बादल जो है हमें दिखाई देंगे, यानी जुमे रात जुमे के दरमियान में जो है वो हमें बारिश देखने को मिलेगी. सो वी आर रियली होपफुल, वी आर प्रेइंग कि खुदा करे कि बारिश हो, जो गर्मी का जोर जो है वो कुछ टूट जाए, बिकॉज इस वक्त जो हालात हैं वो मतलब कि कोई ख़ास नहीं. अगर आप थोड़ी देर गर्मी में खड़े हो जाएँ तो आप अच्छे खासे कुकी बन के बाहर आ सकते हैं. तो बारिश का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी पोस्ट अपडेट हो जाए. मुझे नहीं पता कि पोस्ट अपडेट अभी हुई है या नहीं हुई है, और अगर पोस्ट अपडेट हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने कमेंट करना है, मुझे बताना है कि आप भी प्रोग्राम का इतना ही इंतज़ार कर रहे थे जितना मैं प्रोग्राम का आप लोगों के लिए प्रोग्राम को पेश करने के लिए इंतज़ार कर रही थी. सो फेसबुक पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर टाइप करेंगे www.facebook. क्या रानीन क्या होता है www.facebook.pk. तो FM 101 का नाम कौन बोलेगा बीच में. मतलब देखे पूछ भी मैं किससे रही हूँ. हाँ तो FM 101 का ऑफिशियल पेज है जनाब, वहाँ पर आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो जाएगी, उस पर कॉमेंट करेंगे. और इसके अलावा अगर आप अमीर हैं, आप उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके मोबाइल में क्रेडिट होता है, महंगे मोबाइल रखने के साथ साथ आप क्रेडिट भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 4471 पर जाएंगे, और जाएंगे नहीं बल्कि 4471 डायल करेंगे. सो आपने करना क्या है कि अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर जाकर टाइप करना है 101, स्पेस देनी है, अपने प्यारे से शहर का नाम लिखना है और आप उसको भेज देंगे 4471 पर, यानी कि 4471 पर हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे मैसेज शो होगा, मैसेज हम प्रोग्राम में करेंगे शामिल. बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस ट्रैक इन प्रोग्राम, कहते हैं कि बीबा जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तो सारा दिल मोड़ दे. मतलब आपके पास वैसे एक्सपायर हो जाएगा, वापस कर दे, हम कुछ यूज़ शूज़ कर लेंगे.

गाइस, मैंने टॉपिक तो अनाउंस ही नहीं किया, मुझे क्योंकि पता नहीं था कि आप लोग अभी तक आ गए नहीं, तो मैंने कहा कि टॉपिक भी अनाउंस कर देते हैं, बिकॉज आई गॉट टू नो कि यू गाइस आर हियर सिंस पोस्ट अपडेट हो चुकी है. वहाँ पे कुछ कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, सो जो बाकी रह गए वो भी जल्दी से जाएं एंड जस्ट लेट मी नो कि यू गाइस आर हियर. सो टॉपिक आज हम ये रखने वाले हैं जनाब के प्रोग्राम में, आपने मुझे एक वन लाइनर फिल करना है. वन लाइनर आपने ये फिल करना है कि आपने कहना ये है कि मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ या मैं कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ. आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं या कहना चाहते हैं ये आपने मुझे आज बताना है, बिकॉज बहुत दफ़ा होता है ना कि हम जिंदगी में बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हम कह नहीं पा रहे होते हैं. तो मैं आज आपको मौका दे रही हूँ कि आपने यूँ फील करना है कि मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ या मैं कुछ लोगों से कहना चाहती हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं वो आपने मुझे बताना है. और हमेशा की तरह हम कहते हैं कुछ ऐसा आपने भेजना है जो कि फ़नी हो, जो कि मज़े का हो, इंटरेस्टिंग हो, जिसको मैं पढ़ तो मैं कहूँ हाँ भाई ये तो मैं भी कहना चाहती हूँ, या मैं कहूँ कि वाह भाई क्या बात है मेरे लिसनर्स की. सो कुछ मज़े का आपने भेजना है. जैसे इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहा है, दैट इज समथिंग चाहती हूँ कि आप ये आखिर पूछना बंद क्यों नहीं कर देते कि आगे जिंदगी में क्या करना है. मतलब ये आखिर सवाल क्यों नहीं आप बंद कर देते कि आगे जिंदगी में आगे आपने जाके क्या करना है. मतलब कर लेंगे जो भी करना होगा, आपको हम क्यों बताएं. या अगर हम कुछ ना भी हमने जिंदगी में कभी किया ना, मतलब कुछ ना भी हम कर सके, हम बहुत मतलब जिंदगी खराब होगी, हालात खराब हो गए, हम कुछ ना भी कर सके तो एटलीस्ट ये काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि बताएं आपने आगे जाके जिंदगी में क्या करना है. तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आखिर आप ये क्यों नहीं पूछना बंद कर देते कि जिंदगी में जो है वो आपने आखिर जाकर क्या करना है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड दिस इज एग्जांपल फॉर यू गाइस. तो आपने भी कुछ ऐसा मजे का इंटरेस्टिंग सा लिखकर भेजना है, 4471 पर मैसेज कर सकते हैं. और इसके अलावा फेसबुक पर आप जाएं और वहां पर पोस्ट अपडेटेड है, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं. एंड दिस इज अ टॉपिक ऑफ टुडेज प्रोग्राम. एक और ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जब वापस आएंगे तो फिर मजीद कुछ आप लोगों के साथ अपडेट्स भी शेयर करेंगे, कुछ मजे मजे की बातें करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे. और इसी तरह 6 बज जाएंगे फिर हम घर चले जाएंगे.

बिल्कुल जनाब, आगे आप सबकी मर्जी, हमने तो आपको बता दिया जो बताना था। एनी हाउ जनाब, फेसबुक से कमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है और आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं।

अच्छा यू गाइस, आई जस्ट हैव दिस इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. पहले, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि अगर कोई खाना खा रहा हो और वो बहुत आवाज़ें निकाल के खाना खा रहा हो, यू नो दैट पचक पचक की आवाज़, वो जो एक यू नो पर्टिकुलर आवाज़ होती है जो अक्सर लोग जो है वो खाना खाते हैं ना, तो उनके खाना खाते हुए आवाज़ आती है और वो इतनी कोई अनोइंग आवाज़ होती है, इरिटेटिंग आवाज़ होती है कि आप एक जगह बैठकर साथ जो वो खाना भी नहीं खा सकते हैं. तो अगर इफ़ यू आस्क मी, तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत मसला होता है. और मतलब मैं बहुत बहुत, क्योंकि हर जगह तो ऑब्वियसली आप अपने टू सेंट्स नहीं दे सकते ना, कहीं जगह पर आपको कर्टसी का भी मुजाहरा करना पड़ता है. तो मैं बहुत बहुत ना कंट्रोल करके और मुश्किल से ऐसी जगह में बैठती हूँ जहाँ पे कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ जो कि बहुत यू नो इस तरह खा रहा होता है पचक पचक करके, एंड यू कांट रियली सिट विद देम, बट इवेंचुअली यू हैव टू. बट आपको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, कहते हैं यार क्या, मतलब सारा खाना आपका मजा करके रहा हो जाता है. या फिर कोई बहुत चाय पी रहा हो तो वो जो एक चाय पीने की खास मखसूस आवाज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं अगर ऐसे चाय ना पी जाए ना, इसमें सुप सुप की आवाज़ आ रही होती है, तो कहते हैं अगर ऐसे चाय ना पी जाए ना तो मज़ा नहीं आता चाय पीने का. और अगर आप किसी को बता देंगे ऐसे ना करें तो वो इरिटेट करने के लिए भी आपको वैसे चाय पीना शुरू कर देते हैं. तो ये दो जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं खाना खाने से रिलेटेड आवाजें हैं. तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या फिर नहीं होता. अगर ऐसा होता है तो आपने भी तभी बताना है, और नहीं होता तभी बताना. जल्दी से कॉमेंट्स करके मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि क्या ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है. कि अगर कोई खाना खा रहा है और मखसूस आवाज़ें अगर आपको आ रही हैं सांस लेने की, चबाने की, कुछ भी ऐसे, तो उससे आप लोग तंग होते हैं या तंग नहीं होते? दैट्स व्हाट यू गोइंग टू टेल मी.

इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि ये अगर आपके साथ होता है ना ऐसे, जैसे आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा भी आता है एंड स्टफ, तो दिस इज़ नॉट रियली लाइक यू नो कोइंसिडेंस, या ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है, बल्कि इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं और स्टडीज से हमें ये पता चला है कि वो लोग जो कि किसी के खाने की आवाज़ अगर सुनते हैं या फिर यू नो खाने के दौरान चबाने की, जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि उनको आवाज़ आती है या वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसको बाकायदा मीज़ोफोनिया का जो नाम है वो दिया गया है, एंड इट्स बेसिकली अ ब्रेन डिसऑर्डर। अच्छा, अब जो डिसऑर्डर वाली बात है ना, इसको सुन के हमने घबरा नहीं जाना कि हाय अल्लाह सानू कोई मसला हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी भी हैं, क्योंकि रिसर्च जब भी होती है ना उसको काउंटर किया जा सकता है ना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है, उसको आप क्रिटिक कर सकते हैं। तो इसके काउंटर में बहुत सारी ऐसी और भी स्टडीज़ आई हैं जो कि अभी इस चीज़ के ऊपर आमादा उन्होंने होना है कि वाकई क्या ये कोई डिसऑर्डर, हमें इसको प्रॉपरली कंसिडर कर लेना चाहिए है, या फिर ये सिर्फ ऐसा है कि किसी का जो दिमाग है वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज़ यू नो जो एकदम से आपको एक गुस्से की कैफियत आपको महसूस होती है, आप तज़बज़ब का शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत एक यू नो एक बड़ी बुरी सी फीलिंग आ रही होती है ना, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको लगता है कि कोइंसिडेंस है, बल्कि इसको कहा ही जाता है कि ये साइन है मीज़ोफोनिया होने का, और ये मीज़ोफोनिक ऐसी कंडीशन है जो कि हर रोज़ किसी भी साउंड से जो है वो ट्रिगर कर सकती है आपके अंदर, कोई भी एक इमोशनल रिस्पांस या फिर फिजिकल रिएक्शन जो है वो आपके अंदर ट्रिगर हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका दिमाग है वो बहुत डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, और मतलब आप जो है ना उन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं या उन साउंड्स को नोटिस कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग जो है वो नोटिस नहीं करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए उनका दिमाग जो है वो इतना इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता, लेकिन आपका जो दिमाग है वो इन चीज़ों की तरफ जाता है और आपके अंदर एक जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको फील हो रहा है कि आप अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, सो यू वुड नो कि दिस इज़ द साइन ऑफ मीज़ोफोनिया, मतलब इसका भी एक नाम जो है वो मखसूस है, इस फीलिंग को भी कुछ कहते हैं, आप ये चेक करें। तो आपने ये बस समझना है कि आप डिफरेंट हैं, ठीक है, मतलब आपका दिमाग जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहा है, और जो इवन मैं आपको ये भी बताऊँ कि इससे हट के भी, क्योंकि हर किसी का हमें लगता है दिमाग सबके एक तरह से काम कर रहे होते हैं, बट जो ब्रेन नेटवर्क्स होते हैं ना, जो कि जिस तरह से अलग अलग दिमाग बनाया हुआ होता है, जिस तरह के केमिकल्स आपके दिमाग में रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह के नेटवर्क्स दिमाग बना रहा होता है, वो तकरीबन हर इंडिविजुअल में ना मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हम सबको मिला ही देते हैं, बिकॉज यू नो हर किसी मुख्तलिफ होगा भी तो भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ वही सेम चीज़ हो रही होती है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हम इसीलिए कहते हैं कि आप कभी भी कुछ भी आपके साथ ज़िंदगी में हो जाए तो आपने ये नहीं समझना कि मैं अकेला ही ऐसा शख्स हूँ जिसके साथ ऐसा हो रहा है, कि हो सकता है आपके साथ मुख्तलिफ हो रहा हो, लेकिन यही मुख्तलिफ दुनिया के किसी कोने में किसी और शख्स के साथ भी हो रहा होता है। एंड इससे हमें पता चलता है कि मोर और लेस जो ह्यूमन साइकोलॉजी है या ह्यूमन साइंस है या ह्यूमन बिहेवियर है या फिर ह्यूमन जिस तरह काम करते हैं या नेचर है, वो सब के लिए जो है तकरीबन एक जैसी ही होती है। आज हमने क्या सीखा कि ये जो रिएक्शन होता है नॉर्मल नहीं होता, इसको मीज़ोफोनिया कहते हैं, और हम मुख्तलिफ लोग हैं इसलिए हमें ऐसे लोगों से मसला होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप ट्राई क्यों नहीं करते कि यू नो अच्छे तरीके से भी चीज़ें खाई जा सकती हैं, मतलब व्हाई डोंट यू ट्राई दैट, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ।

वाह भाई, मेरे तो बड़े अमीर लिसनर्स हैं। बहुत अमीर लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है। 4471 का मैंने पोर्टल खोला एंड मेनी ऑफ यू आर टेक्सटिंग मी देयर। गुड गुड गुड। ओके जनाब, सो हमारे साथ कौन मौजूद है? मोहम्मद जियाउल्लाह खान मियांवाली से हमारा साथ दे रहे हैं एंड यू आर सेइंग वेलकम टू द शो डियर आरजे आमना मलिक द ग्रेट एंड शो इज गुड, वॉइस इज सो नाइस। और आपने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, देखें कहने के मुझे लगता है कि मैं आपका अगला शो कब्र में जाके सुनूंगा। क्या हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कब्र तक भी जाते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम, कैसी बातें करते हैं आप लोग और मुझसे भी करवाते हैं। फैसलाबाद से फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और कहती है कि खाने को तो बहुत कुछ, कहने को तो बहुत कुछ है, पर बस यही कहूँगी कि किसी के बारे में कुछ गलत ना बोला करें। बिल्कुल जनाब, आप यूँ कह सकते हैं कि मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि दूसरों के बारे में गलत ना बोला करें, प्लीज़। ओके, देन वी हैव समबडी हु इज़ सेइंग आप ही प्लीज़ BTS का एक सॉन्ग भी शो में ऐड करें। BTS से मुझे याद है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि वाकई हमने BTS को जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया। एक टाइम था जब कोरियन म्यूज़िक का, बैंड्स का, BTS का एक बूम था, यू नो एवरी अदर यंगस्टर वॉज टॉकिंग अबाउट BTS। और उस वक्त मुझे याद है मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे कोरियन म्यूज़िक जो शामिल किया था। सो इसी की याद में पता नहीं अपना नाम क्यों ना लिखा आपने, लेट मी जस्ट ऐड वन BTS का सॉन्ग, पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करते हैं ना, वाई नॉट। सो ओके, हे यू गो यू गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ BTS and this one is chale I'm gonna dedicate it to all the youngsters right now listening me ranin ki rooh parwaz karte hue excitement mein so this is one of my favorite track from BTS and this is going out for all the BTS fans out there and all the youngsters who want to do something in life, jo zindagi mein kuch karna chahte hain, kuch badhna chahte hain, jinke bade khwab hain, jo khwab dekhte hain, jo dreamers hain, never ever give up on your dreams you guys, sky is the limit and you can do it.

0: ट्रस्ट मी, ऐसे लोग जब लोगों के पास आते हैं ना, और अगर आप उनके साथ शेयर करते हैं कि हम जिंदगी में जो है वो ये करना चाहते हैं, आगे से आपसे कहते हैं कि इदेज की रखे इन्नो तू करके की करना है, कोई डॉक्टर बन कोई इंजीनियर बन, मतलब इदेज की रखे है, तो आपने कहना कि इदेज सुकून रखे है, इदेज पैशन रखे है, इदेज सारा कुछ रखे जरा मैंने जिंदगी करना है। ऐसे लोगों की तो आपने बिल्कुल भी बातें नहीं सुननी, बिकॉज यू नो दीज आर द सेम पीपल जो कि जब आप किसी जिंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, कुछ जिंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, तो यही वो लोग होते हैं जो कि आपके पास आते हैं, आपको प्रेज भी करते हैं, फिर आप अगर वाकई जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर जाएं, किसी मुकाम पर पहुंच जाएं, तो यही वो लोग होते हैं जो कि फिर यू नो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बता रहे थे, वो साडा पुत्र सी ना, हाँ हाँ वो तो साड़ी फैमिली दे, हाँ जी साड़ी चाचे का पुत्र है, ओ हाँ जी साड़ी परा का पुत्र, हाँ जी साड़ी खाला दी बेटी है, फिर वो लोग आपके यू नो नाम से ही खुद को पहचानवा भी रहे होते हैं, आपको हर जगह लेके जाना भी चाह रहे होते हैं, आपकी तारीफें भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सफर का आगाज कर रहे होते हैं तो यही वो लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज बी वेरी मच पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, जो कुछ करना चाहते हैं जरूर करें, ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए, और बल्कि मैं पेरेंट्स से मुझे सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट किया करें, सिर्फ ये सोच करके जी लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने बच्चों के बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो पूरे किए जा सकते हैं, हम उनको पूरा नहीं होने देते हैं, एंड जब उन्हीं लोगों के अपने बच्चे उस मकाम पर पहुँचते हैं या उन लाइक उनके बच्चों का वो टाइम आता है, तो वो अपने बच्चों को हर उस चीज़ की इजाज़त भी देते हुए आपको दिखाई देंगे, हर वो काम भी करते हुए आप जो है देखेंगे उन बच्चों को जो कि वो आपके बच्चों को रोक रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं कि इसको ये काम नहीं करने देना, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्राउन फैमिलीज़ का एक क्या कहना चाहिए खासा है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं आना, और अपने ख्वाब जो पूरे करने हैं, BTS की मैंने रिक्वेस्ट आज चला दी है, क्योंकि मेरा भी दिल करा था कि जैसे ही मैंने BTS सुना तो मैंने कहा इट्स मी लॉन्ग टाइम कि वाकई हमने BTS को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, जहाँ पर हमने BTS को शामिल किया तो अब कॉलर्स को भी ज़रा शामिल कर लेते हैं, देख लेते हैं वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। सो 051-111-0101 and 051-920-2540 ये है आपका और मेरा रابطے का नंबर, कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सो उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेट्स सी हु डू वी हैव विद अस ऑन द कॉल। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। ओके हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो आई एम रियली सॉरी जी, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, एक और कॉलर ट्राई करते हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, अमना क्या हाल है, ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी, कौन है हमारे साथ, तारुफ करवाइएगा। फारूक साहब बात कर रहे हैं, क्या हाल है फारूक साहब, ठीक है आप?
1: जी जी ठीक है अल्लाह का शुक्र, खाला ठीक ना?
0: कौन सी खाला?
1: आपकी मम्मा।
0: हाँ जी, तो आप मुझसे ऐसे पूछे ना कि आपकी वालदा ठीक है, खाला जी क्या होता है, अम्मा बिल्कुल ठीक है, फारूक साहब मुझे
1: खाला जी क्या,
0: हाँ बहुत अच्छा,
1: खाला जी
0: ठीक हो गया। सो फारूक साहब मुझे ये बताइए कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ कहेंगे?
1: क्या
0: टॉपिक सुना है आपने? टॉपिक सुना है आपने?
1: मोबाइल खराब है, नहीं सुना
0: है? मोबाइल ठीक है आपका?
1: ये याद है भाई, आज अमना का ट्रेन पर गया है,
0: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह करम मदद के हमने मलक मड़ी थी, अरे वेलकम बिस्मिल्लाह जी, ब्रो बिस्मिल्लाह मदद के,
0: बहुत शुक्रिया, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप?
2: ओ बेटा मैं आपकी एक एक दिन जो है एक एक साल की तरह गुजरा है, मेरी बेटी हमना मलक नहीं आई है, हम बहुत ज्यादा आपको जो है ना मिस कर रहे थे बेटा।
0: थैंक यू वेरी मच सर, मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर
2: रही थी। मेरा नाम याद रखना ना, इश्तियाक
0: मेरा नाम है ना, साहब
2: तो आपको याद है ना?
0: जी जी बिल्कुल याद है, इश्तियाक साहब।
2: ओ बेटा बहुत प्यारा अंदाज से आए हैं आप, और मेरी बेटी आ गई है कमाल शो मन पाती जबरदस्त, मेरा ख्याल है कंपेरी को है, जो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेटा आप इतनी बातें करते ना कि मैं काज नजर आपने जरूर उतार दी है, क्योंकि नजर ना लग जाए आपको मेरी बेटी।
0: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, मैं भी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह के दिन नजर ना लगाए। है ना
2: जी बेटा, आप इतनी जाने बाते बहुत खूबसूरत करते हैं, तो नजर लग भी जाती है ना, तो नजर जो है ना वो पत्थर फाड़ती है बेटा।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे सर, इसीलिए तो मेरा गला खराब रहता है, पता नहीं किसकी मुझे नजर लग गई।
2: तो बेटा मैं जो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी थोड़ी बात सुन लेना।
0: सुनाए
2: तो आप जो कहते, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में मोहब्बतों के फूल छावर करे, आमना मलक हमारी बेटी की तरह।
0: सर ये कहाँ से मिलेंगे फूल?
2: फूल बहुत है, मैं भक्तों के फूल निछावर करें जिस तरह आप अभी निछावर कर रहे हैं।
0: चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
2: भक्तों के फूल निछावर करें लोगों में।
0: हाँ ठीक हो गया,
2: हमारी जो मासूम मैडम आमना मलक है।
0: ठीक है बहुत शुक्रिया,
2: मैंने आपको बता रहा, मैं किताब दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है।
2: मेरा मैं दो बंदों को सलाम देना चाहता हूँ, एक तो हमारे सिंगर उस्ताद है त्रेड अफान साहब, इजाज भगत साहब को सलाम देना है, इसके अलावा इजाज अपना इनका नाम है नजीर कियानी साहब को, और तमाम समाजों को सलाम। और आज जो हमारे जो प्रोग्राम आपने मरहम के हवाले में जो पेश किए गए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपने हुसैन की याद में प्रोग्राम किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखसूस मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को, और मैं अपनी बेटी सदफ रानी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ।
0: थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: बहुत जबरदस्त आपने प्रोग्राम किए, और मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम शो अपनी जगह पे थे, लेकिन 1-1 पहला नंबर ले गया।
0: बिल्कुल ऐसे सर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ सर।
2: मैंने कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ बेटी, मैं आप जो अगवा कहते हैं, मैंने मेरे साथ नहीं है कोई, साथ नहीं है।
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर,
2: आपकी बेटी भी आपकी इस्तानी,
0: क्या बात है सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अपना ख्याल रखिएगा सर, सर अल्लाह
2: हाफिज़, आपकी बेटी भी हूँ, आपकी इस्तानी भी।
0: मैडम सदफ की तो क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारे सलाम, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ रह नहीं गया। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे एक टॉपिक के हवाले से, एक छोटा सा टॉपिक है, लाइक छोटी सी बात है मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
3: मैं राजा अख्तर बात कर रहा हूँ, जंगल गाँव से। अमना साहब क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है जी, लाख लाख अल्लाह का बहुत शुक्र।
0: चलें सर मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं टॉपिक के लिहाज से, क्या कहेंगे लोगों को?
3: मैं लोगों को यही कहूंगा कि जो दिल में, आपके दिल में जो बात आती है ना, वो ही करें, किसी की मत सुने,
0: किसी की ना सुने, जो दिल कहते हैं उसकी सुने। हाँ
3: बिल्कुल,
0: चले थैंक यू सो मच।
3: हाँ जी, तभी है
0: कामयाबी, तभी है जब दिल की बात सुनी जाए, लोगों की ना सुनी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वेल दैट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। समद कदीर की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, जैसे ही वापस आएंगे तो फिर ज़रा हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि आजकल हम सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हम सभी कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते, क्यों?

जी जनाब, सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन थिंग कि हम सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता. और ये वो रवैया है जो कि मैं बहुत नोटिस करती हूँ, पहले भी था, हमेशा से रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ ही गया है. खास तौर पे यू नो, जब से सोशल मीडिया है, एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियंस, और मतलब हर कोई अपनी ओपिनियन रखता भी है, रखना भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास होता है, और आप लोग ने भी मुझे इसके ऊपर फीडबैक देना है कि सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है, कि अब लोगों से गुफ्तगू करना या किसी भी चीज़ के बारे में बात करना दिन ब दिन ऐसा महसूस होता है कि मुश्किल से मुश्किल ही होता जा रहा है. बिकॉज यू नो, एज सून यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग, या अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आपको एक खदशा ही लगा रहता है कि आगे से कोई यू नो एक आर्ग्यूमेंट ना स्टार्ट हो जाए, या आगे से बंदा उसको ऐसे ही महसूस ना करे कि यू नो एक गुफ्तगू नहीं हो रही है बल्कि कोई हार और जीत का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है. क्योंकि बहुत दफ़ा किसी भी टॉपिक के हवाले से अगर आप बात करते हो खुद को पाएंगे तो अमूमन अगला जो रवैया होता है वो यही होता है कि अगला बंदा जो है वो भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करता है, एंड इवेंचुअली हम जो बात है वो सुनने के लिए नहीं कर रहे होते, बात कहने के लिए नहीं कर रहे होते, बात समझने के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि हम एक दूसरे को या तो कोई चाह रहा होता है कि मैं जीत जाऊं आर्ग्यूमेंट में, वो इवेंचुअली आर्ग्यूमेंट बन जाता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट रियली कूल. जिसकी वजह से बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार बस छोड़ो, कोई भी बात करें ना तो आप कहते हैं अच्छा चलो बस ठीक है, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग. क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत दफ़ा ना जो लोगों की खुशी है, यूँ कह लीजिए कि कोई एक हार्मनी है, हैप्पीनेस है किसी भी रिलेशनशिप को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उससे ज़्यादा हमने प्रायोरिटाइज इस चीज़ को कर दिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और जो आप कह रहे हो वो गलत है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है. आपको कभी वक्त मिले, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कभी आप कॉमेंट्स सेक्शन में जाके देखें, वहाँ पर लोग जिस तरह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या फिर अदरवाइज भी अगर आप यू नो कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन किसी जगह पर चले जाएँ, वहाँ पर आप जाके देखें वहाँ पर किस तरह बात हो रही होती है. सो आई रियली फील लाइक दिस थिंग कि हमें सुनना ज़्यादा चाहिए है, और अपनी राय का इजहार भी करें, लाइक लेकिन राय का इजहार सिर्फ इस तरह ना करें कि मैं अगले बंदे को बता दूं कि व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट. क्योंकि जब हम इस नहज पे चले जाते हैं ना, या इस सोच के साथ किसी से बात करना शुरू कर देते हैं कि इवेंचुअली अगला बंदा ये मान ले कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो ठीक और गलत जो है या हार और जीत जो है इसका ज़्यादा जो ताल्लुक होता है वो हमेशा ईगो से होता है. आप कभी भी किसी भी जगह पे चले जाएं और जब आप इसका निचोड़ निकालेंगे ना तो वो ईगो सेटिस्फेक्शन ही होती है कि मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि मैं जो बात कर रहा हूँ अगला बंदा उसको समझ जाए, राइट. ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि भूलते चले जा रहे हैं, एंड इवेंचुअली क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो प्रायोरिटी रही नहीं है. हमारे लिए जो हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, या हमारी जो किसी चीज़ के बारे में राय है, या हमारा जो बिलीफ है, या यू नो ज़्यादातर जब मसले होते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर होते हैं ना. अगर आप किसी के बिलीफ के ऊपर बात कर लें, किसी की राय के ऊपर बात कर लें, तो मसला बन जाता है. सो वॉट आई रियली वॉन्ट टू से इज़ कि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर ना हमने थोड़ा सा डिसाइड करना है कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ या मैं अपनी राय दे रहा हूँ, क्या मैं इसलिए दे रहा हूँ या क्या मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगला बंदा भी मेरी बात से कन्वेंस हो जाए, या अगला बंदा भी उस बात को मानना शुरू कर दे जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरा बिलीफ है या जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं ज़िंदगी को देखता हूँ, या सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जस्ट यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग माई ओपिनियन या जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट एंड वाइल हैविंग द रिस्पेक्ट. क्योंकि जब आप रिस्पेक्टफुल होते हैं, जब आप दूसरों की जो राय है उसका भी एहतराम करते हैं, दूसरों का जो बिलीफ है उसका भी एहतराम करते हैं, दूसरों की जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है उसका भी एहतराम

काम करते हैं तो आप एक जगह पे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक जगह पे आप रह सकते हैं, आप रिश्ते बेहतर कायम कर सकते हैं. और रिश्तों की जो अहमियत है या फिर उस एक रिश्ते की जो हार्मनी है, एक जगह रहते हुए जो रिश्ता बेहतर बनाना है उसको आप एक बेहतर डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप बाहर कभी आपका जाना हो, मैं खुद मैंने ऑनेस्टली इतना ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितनी मैंने लाइक यू नो ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, या बहुत सारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंस हैं जो कि बाहर जाते हैं, वो देखते हैं, वो बताते हैं कि बहुत दफ़ा जो हार्मनी आप देखते हैं, को एग्जिस्टेंस देखते हैं, या आपको को एग्जिस्टेंस आ जाती है एक जगह पे रहना, मोहब्बत से, एहतराम से, एतमाद से, प्यार से, रिस्पेक्ट से रहना जब आपको आ जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि आप दूसरों को उनके बिलीव्स की वजह से जज नहीं कर रहे होते, आप दूसरों से जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते. जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है वहाँ पे भी आप बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर जाते हैं और इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि चलो ये उसका बिलीफ है. जिस तरह आप अपनी चीज़ के बारे में बहुत टची होते हैं ना कि मतलब इस चीज़ के बारे में कोई बात ना करे, अगला बंदा भी हो सकता है कि उन सारे मामलों को लेकर बहुत टची हो, बहुत ज़्यादा यू नो एक्सट्रीम पे सोचता हो, बहुत उन चीज़ों को लेके यू नो मतलब ऐसा हो कि वो ना बर्दाश्त कर सकता हो. सेम उसके साथ भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप पर्सपेक्टिव टेकिंग भी कहते हैं ना, कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं. तो बहुत सारी नेशंस इसलिए तरक्की कर जाती हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वो जो स्किल है ना वो सीख जाते हैं कि हमने को एग्जिस्ट करना है, एक जगह पे रहना है, मोहब्बत से रहना है, आराम से रहना है, वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स एज वेल. तो ये जो जीत और हार में हम पड़े हुए हैं ना, ट्रस्ट मी, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, सच अ वेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, सच अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग. एंड इट्स अ स्किल जो कि हमें अब सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनें तो उससे पहले आपने लोगों को सुनने की आदत डालनी है कि अगला बंदा जो बात कर रहा है वो कह क्या रहा है, सुन तो लें. अग्री नहीं करते दैट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके, यू कैन जस्ट यू नो अग्री टू डिसअग्री विद समबडी. लेकिन ये जो हम बिल्कुल लड़ाइयों पे आ जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स बना लेते हैं और वॉर स्टार्ट कर देते हैं और बस ये एक मोटिव होता है कि बस मैं जीत जाऊँ और अगला बंदा कन्वेंस हो जाए कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं. एंड आपका दिल नहीं करता कि आप लोगों से बात करें, आपको यही डर रहता है कि यू नो कोई मसला ना हो जाए, जस्ट ट्राई टू बी क्वाइट एंड जस्ट ट्राई टू स्टे अवे, विच इज़ नॉट रियली अ सॉल्यूशन बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमंस, राइट? वी हैव टू टॉक विद ईच अदर. तो ये वो स्किल है जो यू गाइज हमने सीखना है और इसको आगे लेके चलना है. सो वी हैव टू लर्न टू डिसएग्री, जस्ट अग्री टू डिसएग्री.

ओके यू गाइज, वी हैव अ शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक. न्यूज़ ब्रेक से जैसे ही हम वापस आएंगे तो फिर आप लोगों की मज़ीद लाइव कॉल्स के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और इसके अलावा आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं शामिल करूंगी फेसबुक से. आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं, FM 101 चैनल पाकिस्तान हमारे फेसबुक का नेम है, लाइक ID का नेम है, और आप वहाँ पर जाएंगे सर्च करेंगे तो होपफुली मैं आपको मिल जाऊंगी. पोस्ट अपडेटेड है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और 4471 के जो कमेंट्स रह गए लाइक मैसेजेस रह गए हैं वो भी हम शामिल करेंगे. एंड 4471 पर मैसेज करने का तरीका भी यही है कि आप टाइप करेंगे 101, स्पेस देंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे. टॉपिक ये है कि कुछ अगर आप लोगों से कहना चाहते हैं जो आज तक आपने नहीं कहा, कि जैसे मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं, वो आप मुझे लिख कर भेजेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ. वी आर गोइंग टू वर्ड्स अ शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक. स्टिक अराउंड, यू आर लिसनिंग टू FM 101.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

जनाब बस यादें रह जाती हैं और छोटी छोटी सी बातें रह जाती है। दैट इज सच अ गोल्डी नंबर प्रोग्राम ना करूं मैं। यहाँ पे ना मुझे मीठा खिलाया जा रहा था कि मीठी मीठी बातें करूं। अच्छा बिल्कुल जनाब, यू आर लिस्टिंग टू FM 101 चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान और टॉपिक ये है कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू टेल मी। सो पुरानी जीन्स इज सच अ ओल्डी गोल्डी नंबर, बट दिस इज दैट नंबर जो कि आज भी जब आप सुनते हैं तो आप उन्हीं ख्यालों में चले जाते हैं और आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो पुरानी जीन्स के साथ मैं बहुत ही मजे की चीज़ इंजॉय कर रही हूँ, आप जरा इसको सुने, वापस आते हैं।

छोटी। अच्छा देखें, ये भी वक्त ने क्या हमारे साथ जो है वो खेल खेला है ना, कि इफ समबडी इज़ वेरी काइंड टू यू तो एकदम से आपके जहन में अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। मुझे इतने लेकिन वो गन पॉइंट पे बहुत मीठा खिलाया गया तो मैंने कहा दम शम तो नहीं किया हुआ इसके ऊपर इतनी जो आपने मोहब्बत शो किया, बट दैट्स व्हाट इज़, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ स्वीट डिलाइट एंड डिजर्ट, इन फैक्ट इट वॉज सो यमी। एनी हाउ यू गाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, और हम क्या शामिल करेंगे, हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और देखते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और क्या हमें भेज रहे हैं। दैट इज मी। ओके, किंसा अब्बासी हमारे साथ दिए गए, थैंक यू सो मच। मिसेस सईद सिंह, शानदार पोस्ट, क्या हाल है मिसेस सईद, आपकी तबीयत कैसी है, मुझे याद पड़ता है कि आप काफ़ी बीमार हो गई थी, अब कैसी हैं आप ठीक हैं। ओके, अब्दुल हादी हमारे साथ हैं और मानूर जान सिंह के, अभी मेरी दुआ यही है कि कोई इंसान आपको आपको आई एम रियली सॉरी मानूर जान, ये बड़ा खतरनाक आपने मैसेज भेजा जो मुझे समझ नहीं आया, और जो समझ आया वो मैं ऑन एयर पढ़ नहीं सकती बिकॉज ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात होती है। जिशान जावेद हमारे साथ हैं, ओवर फिल्टर डज लुक गुड, थैंक यू वेरी मच, दैट इज वाई वी यूज फिल्टर्स, फिल्टर्स आर फॉर अस। ओके, अब्दुल सतार खोसो हमारे साथ हैं, यू आर सो वेरी प्रीटी, थैंक यू वेरी मच। जारा नूर हमें सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जकीउद्दीन जो कहते हैं कि लिसनिंग इज़ एन आर्ट दैट रिक्वायर्स अटेंशन ओवर टैलेंट, स्पिरिट ओवर ईगो एंड अदर्स ओवर सेल्फ, दैट इज़ व्हाट इट इज़। मोहम्मद सुबहानी है, माशाल्लाह जी, अच्छा पता है लिसनिंग के लिहाज से बल्कि सॉरी गुफ्तगू के लिहाज से कहा भी यही जाता है कि वो लोग ही अच्छी गुफ्तगू करते भी हैं जिनको सुनने जिनमें सुनने की सलाहियत होती है, बिकॉज यू नो जब आप किसी को सुनते हैं ना तो आप तस्वीर का एक दूसरा रुख आपके सामने आ रहा होता है, आप एक नए नज़रिए से किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ जाविये से देखने के को आपको चांस मिलता है, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे ना बस जो मुझे पता है वही सब कुछ है तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यू नो वी जस्ट डू नॉट गेट हैंड्स ऑन इट, बिकॉज हम सिर्फ वो उतनी लिमिटेड नॉलेज के ऊपर इक्तफा कर रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को किसी से मिलें भी तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स पेशेंस, बिकॉज आई रिमेंबर कि बहुत पहले की भी बात है कि बहुत दफ़ा कहा जाता था कि ऐसे टॉपिक्स हों तो इसके ऊपर बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों, क्योंकि हम हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है बात सुनने का। यकीन करें कि अभी भी जो मैंने अभी ये बात की है ना उसके बहुत सारे लाइक बहुत क्या कहना चाहिए कि उसके बहुत सारे रूट्स हैं जिसकी वजह से आई थॉट कि आई शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, कि बिकॉज आई हैव सीन कि ओवर वेरी लिटिल थिंग्स लोग इतनी लड़ाइयाँ करते हैं, लोग इतना एक दूसरे को मारने तक आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, हम ये सीख ही नहीं रहे हैं कि किसी और की राय भी हो सकती है, किसी दूसरे की राय को हम इज्जत भी दे सकते हैं या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, राइट। सो अगर आप चाहते भी है ना कि आप अच्छी गुफ्तगू करें, आप अच्छा बोलें, तो सबसे पहले आपने अपने अंदर ये स्किल्स लेकर आने कि आप सुनें दूसरों को, एटलीस्ट सुन सकें, और उसमें भी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब भी आप कभी किसी से मिलें तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस किया करें, ओपन एंडेड यू नो सवाल पूछा करें जिसका तवील में जवाब अगला बंदा दे सके, जिसमें यू नो अगला बंदा कुछ गुफ्तगू कर सके। उसकी वजह ये होती है, एक तो लोगों को बहुत पसंद होता है सुनना, मतलब कि कौन नहीं चाहेगा कि उसको सुना जाए, है ना, इसलिए जिनको कोई नहीं सुनता वो आरजे बन जाते हैं मेरी तरह। बट सुनना हर कोई चाहता है, राइट, लाइक सॉरी सुनाना हर कोई चाहता है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई गुफ्तगू करता है तो उससे ये भी पता चलता है कि उसका कैलिबर क्या है, आपने उसे किस तरह की बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितनी बात नहीं करनी है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो सकता है, आपको ये भी पता चल सकता है कि लोग ऐसा भी सोचते हैं, यू नो, क्योंकि लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, ठीक है। इसके हवाले से भी कभी किसी दिन बात करेंगे कि हमें लगता है कि जिंदगी सबकी एक जैसी होती है, लेकिन जब आप लोगों को सुनते हैं ना, उनकी स्टोरीज सुनते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, आपको पता चलता है कि नो, लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीबडी, हर किसी की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है, और फिर आपके अंदर एम्पथी भी आती है और आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है। ताहिर अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, वर्ल्ड एन एफ एम 101 टीम, मुहर्रम ट्रांसमिशन इज सुपर, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। Zakiuddin is saying Meta has introduced new updates across its ecosystem, headlined by the expansion of premium subscription plan for Instagram, Facebook and WhatsApp. Key update also include new AI tools for Facebook, a major variable line expansion with ye mujhe padhne nahi aa raha, mushkil word hai, new threads community features and ad free experience. This is also nice, achhi baat hai. Okay, Talat Jabin hamare sath maujood hain, kehne samajh to gayi hongi, nahi samjhi na Talat sahib, nahi samjhi, tashreeh likh ke bheje na hame. ओके, उस्मान अली कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद देखकर एंड सुनकर अच्छा लगा, एंड यू आर सेइंग आरजे आमना सलाम फ्रॉम फैसलाबाद, शो
going really well. Aapki rawani bahut zabardast hai and you are saying ki aapki punjabi bhi achhi hai. Thank you. Then we have Anazar Muhammad with us and you are saying har kisi ki apni soch hote hai aur har insaan apni soch ke mutabik sawal karta hai aur us sawal ka jawab koi bhi nahi de sakta. Nahi koi koi to de sakta hai. Nazir Khosrow hamare saath hai Sobatpur Balochistan se. Aapne hamara saath diya. Muhammad Iqbal hame bahut sare stickers bhej rahe hain. Thank you very much. Well you guys, you can call me up on 051-111-0101 yani ke 051-111-0101. ایک گالا پروگرام میں شامل کریں گے, کالز ایڈ کریں گے اور پھر ہم ذرا بات کریں گے کہ کبھی کبھار زندگی آپ کو ایک ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں پہ آپ کی جو دعائیں ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں اور خاموشی اس کو جو ہے وہ یو نو اوور کم کر لیتی ہے یا خاموشی اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سنتے رہیے گا FM 101.

0: Okay, 051-111-0101. Let's see who do we have with us on the call. Hello, caller. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kya hal hai? Alhamdulillah, mala khair.
1: Shukar alhamdulillah, mama Malika, kya hal
0: hai? Alhamdulillah, main bilkul theek hoon. Aur alhamdulillah, mala khair, mujhe ye bataein ki dry fruits ka kya hal hai? Garmi bahut zyada hai, dry fruits saste ho rahe hain?
1: Okay, hame jo
0: अच्छा आप छुट्टियाँ मना रहे हैं. ओके,
1: 15 अगस्त तक मेरी छुट्टी है.
0: वेरी गुड, कितने खुशनसीब है ना आपके, आपको छुट्टियाँ मिल गई हैं.
1: और फिर 2.5 महीने छुट्टी होगी हमारा.
0: वाह जबरदस्त. अब ज्यादा नहीं बताना, मैं नजर लगा दूंगी, मुझे छुट्टियाँ नहीं होती. ओके, सो मुझे ये बताए, आई नो बताया जा रहा है कैसे इलाकों में भी जो है काफी ज्यादा गर्मी है. सो अल्हम्दुलिल्लाह वाला फिर टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं लोगों को टॉपिक? हाँ जी, टॉपिक पे बात करेंगे.
1: मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितना तरफ से मार्केट सुन रहे हैं कि हमेशा कोशिश यही कर लेना की कि कोई मुसलमान के दिल क्या कहना सुना हो जाए.
0: क्या ना हो जाए?
1: किसी का दिल
0: आजार ही ना हो जाए. बिल्कुल ऐसा ही. चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. कमेंट कर दिए, चले मैं देखती हूँ. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू.
0: जी सर, कौन है हमारे साथ?
2: अजीज कियानी बोल रहा
0: हूँ. अजीज कियानी साहब बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? ठीक है.
2: नजीर
0: कियानी साहब बात कर रहे हैं, जिनको इश्तियाक साहब सलाम देकर गए थे. ठीक है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारे बुजुर्ग कॉलर हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाले.
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. सो नजीर साहब क्या कहेंगे, टॉपिक के लिहाज से बात करेंगे?
2: जी पहली तो मैं ये बात कहूंगा जो पहले मेरा हल कुछ आपने गुफ्तगू फरमाई कि जो आपने कहना है ना, ये मुझे इतना बुरा लगता है ना, जब ख्वातीन या कोई भी कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे. यार लोगों को क्या आपने करना है, आपने जो बात करनी है वो करें. ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे. जो आपको अच्छी लगती है बात वो करें, और ये मत कहें कि जी लोग क्या कहेंगे.
0: बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल.
2: ये बात है कि देखिए, जो कहने वाला है या बोलने वाला है ना, उसको सुनने का भी ज़र्फ रखना चाहिए.
0: ऐसा ही है.
2: और जितना ज्यादा आप सुनेंगे वो बोलने से बेहतर है. मैं तो कहता हूँ बोलने से सुनना बेहतर है.
0: बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल.
2: और ये है कि जब भी आप बात करें तो पॉजिटिव और इखलास से, और जुमलों का चुनाव अच्छा करें. बस वो अगर आप पॉइंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहते हैं कोई, तो आप बयान कर दें, फिर उसके बाद दूसरा क्या कहता है वो उसको गौर से सुने. हो सकता है गौर से आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपने, आप जो बात उन्हें समझाना चाहते हैं वो बेहतर तरीके समझ गए हैं और उसका फिर जवाब भी दे रहे हैं. आप गौर से सुनेंगे उसको तो हो सकता है आप अपना इरादा बदल दें कि नहीं मैं गलत था. गौर से सुनेंगे तो सब पता चलेगा ना. इसलिए मैं कहता हूँ कि सुनना बहुत बेहतर है.
0: बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही. थैंक यू सो मच नजीर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. Well, that's what it is. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
3: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन है हमारे साथ?
3: जी नईम बलोच बात कर रहा हूँ, लाहौर से.
0: नईम साहब बात कर रहे हैं, क्या हाल है नईम? ठीक है आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है. आप इतना बोलते हैं, आपके सर में दर्द नहीं होता?
0: मेरे सर में बहुत दर्द है, मतलब इतना दर्द हो गया कि अब मैंने उस दर्द को भी ना, मेरे दर्द मेरे सर का हिस्सा बन गया, अब मुझे टेंशन नहीं होती.
3: जब आप ना कंटिन्यूसली बोल रही थी ना, तकरीबन 4:50 से 5 के दरमियान, तो आपको सुन सुन के मेरा गला खुश्क हो रहा
0: था. पानी पी लेना था आपने, टेंशन की क्या बात. मैं अपने साथ बॉटल रखती हूँ, पानी पी लेती, मैं अपने साथ बॉटल रखती हूँ, पानी पी लेती हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लिया करें. ठीक है,
3: और काफी इन्फॉर्मेटिव बातें करती हैं आप. मैं वैसे 101 को तो काफी अरसे का सुनता हूँ, कंटिन्यूसली कभी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट टुडे लिसनिंग वेरी फर्स्ट टाइम. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आप इतनी बातें लाती कहाँ से वैसे, बाय द वे?
0: इसलिए मैं आरजे हूँ ना, इसलिए हमें आरजे कहा जाता है, इसलिए हमारा हमें करनी पड़ती है इतनी सारी बातें. ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच.
3: बातें निकालना आरजे को तो बहुत अच्छे से आता है.
0: दैट्स व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच नईम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. कितने हमारे मासूम कॉलर जो ना परेशान हो गए. हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. दरख्शां साहब, काफी अरसे के बाद आना हुआ आपका, खैरियत थी?
1: बस दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी तेरे फरेब है गमजदगार के.
0: क्या बात है, क्या
1: गमजदगार के जिमेले है ना, ये इंसान को अदीम अल फुर्सत बना देते हैं, अपनों से दूर कर देते हैं. बारह लो गालिब ने कहा था ना, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, मगर तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा.
0: ये कब कहा था उन्होंने?
1: तो ये कब कहा था? वन वन पे जिंदगी की जमेलों ने थोड़ा उलझाया, तो इधर उधर भी होना पड़ता है. ये
0: नहीं, बहुत अच्छा, इधर उधर रहना चाहिए बंदे को, पता है, इधर उधर ही होते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जिंदगी में. अगर ये झमेले ना हो तो इंसान परेशान हो जाए.
1: ये ऐसे ही है ना, सारे महाजों पे जंग लड़नी होती है.
0: बिल्कुल, जंग ही लड़ते रहना चाहिए.
1: फिर जब नाम ना,
0: हाँ जी,
1: हाँ, मनो बलवा नहीं उतरता.
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अपने लिए तमाम करना होता है, रोजी रोटी का,
0: ऐसे
1: और अपने से उपस्था जितने लोग है ना,
0: हाँ,
1: उनके लिए.
0: बिल्कुल ऐसा ही है. चलिए, टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे?
1: टॉपिक अभी जो ऑर्डर बात कर रहे थे ना, जब आपने पानी की बोतल पकड़ी है, तो मैं तब मैंने कॉल मिलाई है. अगर थोड़ा सा बता दे तो मैं, क्योंकि मुद्दत के बाद कॉल किया, ये ना हो कि आप कहे सुना नहीं तो जाओ बाहर में.
0: नहीं नहीं, कभी भी मैं ऐसे, मैं ये नहीं कहती कि सुना नहीं तो जाओ, ऐसे मैं सिर्फ कॉल बंद कर देती हूँ. मैं कुछ कहती तो हूँ ही नहीं. हाँ नहीं, हमारा हमारा हमारा तरीका वारदात मुहज़्ज़िब है, हमें ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते. हाँ जी, तो सर टॉपिक ये है कि हम बात कर रहे हैं कि कभी कभार हम बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं ना लोगों को, लेकिन हम कह नहीं पाते हैं. तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वन लाइनर आपने कंप्लीट करना है कि मैं कहना चाहता हूँ लोगों से क्या कहना चाहते हैं.
1: वो है शेर में करूंगा कि दुख का कहना चीख उठो, दिल का कहना वजह निभाओ, सब कुछ सहना, चुप चुप रहना काम है इज्जतदारों का. लेकिन बात बर्दाश्त
0: अच्छा, करें शेर में,
1: अगर दूसरे शरीफ खान की बात को बर्दाश्त करें तो हम
0: वेटिंग के शेर जो है ना अभी खत्म होगा, मैं कहूंगी
1: सीख वाह हो जाएंगे. अपनी बात दलील के बगैर करेंगे, जिस बात में आके करेंगे उसमें, कहते हैं गुफ्तगू एक हद से ज्यादा आवाजें बुलंद हो जाए तो समझो उसमें गुफ्तगू नहीं रही, वो दलैल को नहीं रही, बस अब आप की जाती है ना बीच में शामिल
0: है ना. बिल्कुल ऐसी बात है. चलिए
1: बात करें ऐसी दलील के साथ सुने तो दोनों फरीकों का नुकसान नहीं होगा, भला हो जाएगा. लेकिन अगर जिस बात में अगर अपनी अना की आप जारी कर रही है तो फिर वही होगा, अना के मोड़ पे बिछड़े तो उम्र भर न मिले. हम एक ही शहर में रहे कभी ना मिले,
0: फिर कभी ना मिले. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. अच्छा वैसे पता है मैंने ना ये टैलेंट सीखना है यू गाइस, मैंने जिंदगी में पता है क्या सीखना है, मैंने भी ना ऐसे शेर व शायरी में बातें करना सीखना है, मैंने सब कुछ सीखना है. मुझे ये नहीं आ रहा, मतलब ये मुझे नहीं आ रहा समझ के ये कैसे होगा कि मतलब मैं भी एकदम से मेरे जहन में शेर याद आए और मैं भी शेर व शायरी में बात करूँ. मतलब क्या ही मजा है ना इस बात में भी कि आप बात ना करें, आप शेर पढ़ें, मतलब शेर में आपकी बात का जवाब हो जाए. मेरे साथ क्या होता है कि मुझे शेर जहन में आता जरूर है याद, लेकिन एक मिसरा याद आता अगला मैं खुद ही भूल जाती हूँ, फिर मैं कितनी से बेहतर है कि मैं वैसे ही बात कर लेती. But anyhow, Janab, we are going to talk about something really interesting. Just other day, I was reading a book and, you know, wo book is baare mein thi ke zindagi mein na, chunke hum bahut fast paced zindagi guzaar rahe hain aur हमें नहीं पता होता कि यू नो हम किस तरफ जा रहे हैं, काम है, जैसा अभी दरख्शां साहब कह रहे थे कि ज़िंदगी के झमेले हैं, जंगे हैं, ये है वो है, यू नो, सो हम बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं. लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत ही सटल तरीके से चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं कि अगर हम रुक जाएँ, थोड़ा सा थम जाएँ, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएँ ज़िंदगी में, तो हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हमें पता चलता है कि यार ये तो मेरे बारे में बदल गया है, ये तो मेरी ज़िंदगी में डिफरेंट हो गया है. लेकिन चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम उन चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो हमें कभी इतनी खूबसूरत चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बदल रही होती हैं उसकी तरफ हम नज़रसानी नहीं करते या उसकी तरफ देखते नहीं हैं. सो उन्हीं चीज़ों में से एक ऐसा फिनोमेना है जो इंसान की ज़िंदगी में तब्दील होता चला जाता है और उसको एहसास भी नहीं होता. और ये जो फिनोमेना सो ब्यूटीफुल इट इज़ अबाउट दुआ, कि कहते हैं कि ज़िंदगी जो है آپ کو مختلف موڑ سے لے کے جاتی ہے نا, مطلب کبھی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ خدا تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے, اور آپ کی دعا میں بس صرف بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں, بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز یہ کر دیں, اینڈ یو نو اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کون ایسے کرتا ہے کہ پلیز پلیز پلیز اللہ تعالیٰ پلیز پلیز ایسے کر دیں. یو نو ایک یہ والا مومنٹ بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ یو ریئلی وانٹ کہ آپ کی جو دعائیں ہیں نا وہ answer ہو جائے, just pray about it, right?

लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि बहुत दफ़ा ज़िंदगी हमें जब अपने लाइक वो मोड़ गुजार रही होती है, हम उन मोड़ों से गुजर रहे होते हैं, तो एक वक्त ये होता है कि जब हम बहुत दुआएं कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम एक वक्त ऐसा आता है कि हम उन्हीं दुआओं में जी रहे होते हैं, यानी कि वो दुआएं जो हम एक वक्त पे मांगा करते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हम उन दुआओं में जी रहे होते हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक लम्हे के लिए सिर्फ रुके और अपनी ज़िंदगी पे नज़र सानी करें, तो आपको ये महसूस होगा कि इस वक्त भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिस पे जो आप एक वक्त पे ना अल्लाह ताला से मांगा करते थे कि अल्लाह ताला प्लीज़ आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए, और अब वो आपके पास हैं। लेकिन चूंकि हम ज़िंदगी की दौड़ में इतने लगे हुए हैं कि हमने उन चीज़ों के बारे में कभी नोटिस ही नहीं किया, फिर एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर आपकी जो दुआएँ हैं ना, जब आप नोटिस कर लेते हैं तो ये दुआएं जो हैं वो शुक्र में तब्दील हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अदा किया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम रुकें और सोचें कि इस वक्त भी आप, जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बहुत सारी दुआएं जो हैं वो जी रहे होंगे, दे वुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट वंस यू यूज़ टू आस्क अल्लाह ताला कि गिव मी दिस। लेकिन फिर इससे आगे भी एक मरहला आता है जहाँ पे कहते हैं कहने वाले या लिखने वाले या बुज़ुर्ग कह लें या फिर यू नो जो थोड़ा सा इस हवाले से बेहतर मकाम पे होते हैं, वो कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो इस मकाम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुदा का शुक्र तो करते रहते हैं लेकिन आपकी जो दुआएं हैं ना वो खामोशी की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। अब जब वो खामोशी की शक्ल इख्तियार करती हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप लाइक शुक्र भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मांगने के लिए कुछ रहता नहीं है। और जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं एंड व्हेन यू नो सेल्फ ट्रांसेंड्स टू सम अदर पॉइंट, तो वहाँ पे सिर्फ आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं और वहाँ पे आपको अल्लाह ताला की ज़ात की लाइक यू नो ज़ात के बारे में मोहब्बत दिखाई दे रही होती है। आप कुछ भी सोचते हैं तो आपको उसकी मोहब्बत नज़र आती है, आपको उसकी शफ़क़त नज़र आती है, आपको उसकी हिकमत नज़र आती है। मतलब कहते हैं ना कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, बहुत सारी जो दुआएँ कबूल नहीं भी हुई होती हैं वो भी ज़ाहिर हो जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपको ये महसूस होगा कि आप दुआ करने के लिए बैठे हैं, आप खुदा ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे हैं और आपके लिए मांगने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज़ात की जो फरमान है, इवन यहाँ तक भी बनाए, वॉज रीडिंग दिस बुक, इज़ सो इंटरेस्टिंग, कितना मज़े का वो लिखा हुआ था। शायद मैं इतना बेहतर बयान भी नहीं कर पा रही होंगी, बट आई रियली होप कि यू गाइज़ कैन कनेक्ट विद दिस इन्फॉर्मेशन, यू कैन कनेक्ट विद व्हाटएवर आई एम सेइंग, कि यू नो देखम से पॉइंट कि आपको ना वो सारी चीज़ें आपके कान में आयात जो है वो बाकायदा आपको सुनाई दे रही होती हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत का एहसास हो रहा होता है और आप शुक्र के उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि आप कुछ ख्वाहिश नहीं करना जा रहे होते। मतलब आप कहते हैं कि जो रब ताला की ज़ात ने देना है वो दे देगी, वो मुझ तक पहुंच जाएगा, एंड यू आर इन दैट एरा ऑफ तवक्कल एज वेल कि वट एवर विल हैपन एंड यू नो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला उसका भी एहसास हो जाएगा। तो ये जो साइलेंस की एक स्टेज है ना, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टेज, ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप ज़िंदगी में इतना स्लो डाउन हो जाएं और इन चीज़ों को जो दुआ का पूरा एक कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है, इसको आप इतनी खूबसूरती से ऑब्ज़र्व करें कि आप अभी किस स्टेज पर हैं, क्या आप उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि दुआ तो कर रहे हैं लेकिन उस दुआ में सिर्फ और सिर्फ खुदा की खुशनूदी शामिल है, अल्लाह ताला के फरमान शामिल है। यू कैन लिसन टू वट एवर ही हैज़ बीन सेड, यू कैन लिसन टू एवरी हिकमत बिहाइंड हिज डिसीजंस, बिहाइंड वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, वट एवर यू वांटेड इन योर लाइफ, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप सिर्फ एक मिनट के लिए सोचें भी

And at that point, when you reach that quiet moment now, when you reach that quietness in your life, quietness ही हुआ ना कि खामोशी की उस नहज पे जब आप चले जाते हैं ना, तो फिर आप इर्द गिर्द जब देखते हैं तो इर्द गिर्द हर चीज उस जात की गवाही देती हुई आपको नजर आती है। ये जो भी आप कलाम सुन रहे, दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलाम। कहते हैं ना कि खुदा नजर नहीं आता, हम खुदा को ढूंढते ही कब हैं? उस जात से मिलने के लिए हमें तो अपनी जिंदगी से निकलना पड़ेगा ना, खुद को स्लो डाउन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस फिक्र के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि जिक्र तो हम सभी करते हैं, लेकिन फिक्र कौन कौन करता है? क्योंकि उस जात तक पहुंचने के लिए जिक्र के साथ फिक्र की भी बहुत जरूरत है। और जब इंसान उस फिक्र तक पहुंच जाता है ना, तो फिर आपको खुदा तलाश करने की जरूरत नहीं मिलती, नहीं पड़ती, आप खुद से मिलते हैं। वो कहते हैं ना, खुद से खुदी और खुदी से खुदा। हम उस खुदी तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट टुडे, लेट्स डू इट टुडे। दिस इज द टाइम, 28th June 2026। लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम टुडे। स्लो डाउन इन योर लाइफ एंड जस्ट लुक एट योर लाइफ एंड देखें कि आप इस वक्त किस स्टेज पर मौजूद हैं और क्या आप उस जगह तक जा सकते हैं।

0: I just love this one. और जब भी मैं ये प्ले करती हूँ मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसके साथ गुफ्तगू करूँ. कुछ कलाम ऐसे होते हैं ना जो कि आपको किसी और मकाम पे ले जाते हैं. दिस इज़ वन ऑफ देम. एनीहाउ जनाब, अमीर लोगों की हम मैसेज अब शामिल कर रहे हैं. ठीक है, अमीर लोग यानी हमारे 4471 की जो आवाम है. अब फेसबुक वाले कहेंगे क्या मतलब, हम भी तो पैकेज करवाते हैं. नहीं, आपका पैकेज होता है ना मतलब, लेकिन ये देखिए आपको बस पता नहीं है अभी क्यों 4471 वालों जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, शामिल करती हूँ मैं, पैसे नहीं मैं ज़ाया करने दूंगी. ओके जनाब, आप ही प्लीज़ कभी एक फुल शो BTS के टॉपिक पर भी करें. आई रिक्वेस्ट यू. चलें इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई अगैन कि हम BTS के टॉपिक पे भी जो है वो प्रोग्राम करें. BTS के मरीज जो हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा मैसेज में, तो मैंने आपका नाम खुद ही से रख दिया. ये मेरा एक टैलेंट है. बट यू नो लिटरली दिस इज़ एक्चुअली जो BTS फीवर है ना, ये BTS फीवर आपने सुना होगा, ये वाकई मैं खुद से नहीं कह रही, BTS फीवर है एक जो जिसको चढ़ जाता है बुखार, वो फिर उतरता नहीं है. ये हमारे मरीज को स्टूडियो में भी बैठे हुए इनको भी हमने ड्रिपे लगा के दूसरी तरफ किया था. ये तो बेचारी कोरिया जाने लगी थी. मैं कह नहीं देखो सब्र करो, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान ही आपको बनना है. अच्छा जी, मैं कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझसे पूछना बंद करें कि आप शादी कब करोगे. दानियाल फ्रॉम इस्लामाबाद. हाँ, ये भी बड़ा सवाल है यू गाइस. ये वाकई अगर आप ना 24 साल से तकरीबन 30 साल की उम्र में मौजूद हैं, अगर आप लड़की हैं, और अगर आप 24 साल ट्रेनिंग लड़कों की थोड़ी लेट होती है, 28 साल से अगर आप 32 साल की उम्र में मौजूद हैं, अगर आपने शादी नहीं की, तो ये वो सवाल है कि मतलब लोगों की वोकैबुलरी में ना, लाइक डिक्शनरी में ना क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मतलब क्या से क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछेंगे. कोई आपसे नहीं पूछेंगे बेटा ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ज़िंदगी सही चल रही है, मतलब काम शाम सेट है, रात को नींद सही आ रही है, बेटा इंसोमिया का शिकार तो नहीं हो गए आप, मतलब कोई भी नहीं पूछेगा. लेकिन पूछेंगे तो क्या, हाँ जी शादी क्यों नहीं हो रही. अच्छा मज़े की बात तो ये है कि मतलब आई कैन रियली रिलेट विद दिस इन अ वे, कि ऐसे लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि बेटा शादी कब है, जिनको आपने ना शादी पे बुलाना भी नहीं होता. ठीक है, मतलब कभी मेरा दिल करता है कि मैं उनसे पूछूं कि मतलब आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अंकल एंड आंटी. मतलब ऐसे लोग आपसे पूछ रहे होते हैं जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता, बट दैट्स व्हाट इट इज़. ओके जनाब, मरी से हमारे साथ मौजूद हैं. सारा ने हमारा साथ दिया है और आप प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं. मैं लोगों से कहना चाहती हूँ जियो और जीने दो. ओके, देन वी हैव अहमद फ्रॉम KPK. ऐसे आपने सिर्फ अपना नाम लिख के भेजा, थैंक यू वेरी मच. इसके अलावा हमारे साथ माहम मौजूद है और माहम हमें जेहलम से सुन रही हैं. एंड यू आर सेइंग सलाम टू ऑल लिसनर्स. वालेकुम अस्सलाम. ओके जनाब, हम जा रहे हैं फेसबुक पर और फेसबुक से देखते हैं कौन कौन हमारे साथ से मौजूद है. काशिफ अकरम हमारे साथ हैं. वेलकम डियर आरजे, हमको 4 साल पहले का पता है कि आपके प्रोग्राम का नेम इवनिंग ड्राइव टाइम है. मुझे भी याद है काशिफ अकरम, आप हमारे रेगुलर लिसनर हुआ करते थे एक ज़माने में, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल से आप भी ज़िंदगी के झमेलों में क्या कहते हैं कि मसरूफ़ हो गए, आज आप नज़र आए. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग वंस अगैन एंड वी से वेलकम टू यू. ओके, आसिम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. मैं मलेशिया से हूँ और आपने कहा कि मैं संडे को आपका प्रोग्राम सुनता हूँ. आज जो सॉन्ग लगाया है पुरानी जीन्स और गिटार, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, एक बार सॉन्ग लगा दें आप का शुक्रिया. मैंने चला दिया. एंड मानूर जाने सिंह, सॉरी फॉर व्हाट डियर. उसके अलावा तलत जबीन हमारे साथ हैं. एनवर सिंह, नमाज असर भी पढ़ लिए, चलेंगे तो आपने बहुत अच्छा किया. हमदुल्ला मलखिल कहते हैं कि मेहनत अगर शौक हो तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है. एंड उसके अलावा हमदुल्ला जो फिलासफर हैं हमारे, उन्होंने एक और फिलासफी पेश की है, बहुत सारी हैं लेकिन ना दो हम शामिल करेंगे आज. एंड हमदुल्ला सिंह, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है, अगर सेहत साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है. दैट इज़ सो ट्रू. इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी दे और किसी का भी मोहताज ना करे. दैट इज़ व्हाट वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर. किंजा अबासी हमारे साथ मौजूद हैं. यू आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ स्टिकर्स. मिसेस सईद हमारा साथ दे रही हैं और वकार अहमद ने हमारा साथ दिया. शो आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू वेरी मच. एंड इसके अलावा मिसेस सईद वंस अगेन, थैंक यू. Okay, Janab, let's take two of your calls on 051-111-0101 and light and bright segment ka phir aagaz karte hain. Hello, caller. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
1: वालेकुम अस्सलाम, आप क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: जी, मैं लाहौर से रिमशा।
0: रिमशा बात कर रही है, क्या हाल है रिमशा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ से।
0: थैंक यू। सो थैंक यू कहते रहे ऐसे मामलात में। अच्छा, सो रिमशा मुझे ये
1: बताया।
0: बिल्कुल,
1: मैं पहली बार आपका शो सुन रही हूँ।
0: ओके, थैंक यू वेरी मच रिमशा।
1: आप बहुत प्यारा शो करती हैं और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू सो मच रिमशा, बहुत शुक्रिया। आप क्या करती हैं जिंदगी में? गर्मी को एंजॉय कर रही है, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। गर्मी को कैसे एंजॉय करते हैं रिमशा, हमें भी बताएं। हमें तो गर्मी में कुछ नहीं समझ आ रहा, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है।
1: गर्मी में मुझे आम खाने के मिलते हैं
0: इसलिए। ओके, आमों की वजह से गर्मी आपको पसंद है। आपको पता है आम जो है वो कितने अच्छे होते हैं? लाइक लिटरली जस्ट अदर डे आई वाज रीडिंग अबाउट इट रिमशा, जो आम होते हैं ना वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, पता है आपको?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, सो और क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के लिहाज से, कुछ कहेंगी
1: टॉपिक के हवाले से? अभी मैं ये कहूंगी लोगों को कि अगर कोई खुश रहना है तो उसे खुश रहने दीजिए, क्योंकि किसी की खुशी में डंग मत मारा करें। और अगर पहले सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, फिर किसी और पे उंगली उठाया करें, पहले अपनी आदतें सुधारें, सुधारिएगा।
0: डांटे रिमशा, डांटे इन लोगों को, मैं तो कहती हूँ और भी कुछ
1: लोगों को तो यही कहना चाहूंगी। और एक पैगाम अगर मेरे
0: कौन सुन रहे हैं?
1: अगर मसरूफियत खत्म हो गई है तो मुझे कॉल कर ले प्लीज।
0: जी, अगर मसरूफियत खत्म हो गई है तो कॉल कर ले। बहुत शुक्रिया रिमशा, बस हम इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं यू गाइस 101 पे प्रोग्राम, हम इसीलिए तो करने आते हैं ताकि लोग खुद डायरेक्ट कॉल ना करें एक दूसरे को। वो आरजेस के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में कॉल करो, यहाँ पे कॉल करके मैसेज दे। भाई क्या बात है हमारी। ओके, हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कामिल? ठीक है आप?
2: खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ओके, सो कामिल
2: क्या आपको खुश आमदीद कहता हूँ और टॉपिक क्या रखा हुआ है? मैंने अभी जो रेडियो ऑन किया
0: सर, टॉपिक मैंने ये रखा हुआ है कि आलू बुखारे और इमली का जो जूस है वो अच्छा कहाँ से मिलेगा।
2: इमली और आलू बुखारे का जूस, इसके अलावा टॉपिक कौन सा है
0: सर? टॉपिक यही है ना सर, कोई बता ही नहीं रहा इतनी देर से, 4 बजे से पूछ रही होंगे इमली और आलू बुखारे का जूस कहाँ से मिलेगा, कोई नहीं बता रहा मुझे। देखिए कितनी ज्यादती है।
2: जूस आप घर पे बनाए वो सबसे अच्छा होता है,
0: घर पे बना लें, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी ना सर। हम मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे बना बनाया हमें मिल जाए कहीं से।
2: यही बात है, हम लोग यही सुस्ती के मारे हम कहते हैं बस हमें बनी बनाई चीज मिले,
0: है ना। हम बहुत सहल पसंद हो गए, है ना।
2: हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है, आपको जो है सहूलतों को जहमत बना लिया है।
0: बिल्कुल ऐसा ही, कुछ कहें लोगों को, ये जो लोग सुन रहे हैं ये भी सहल पसंद है, इनको भी कुछ कहें, ऐसी कोई बात करें इनको।
2: क्या कहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए कुछ बुरा न सोचें और अपने हाथ से कोशिश ये किया करें कि आपकी वजह से मतलब आप लोग किसी की खुशी का सबब बने, ना कि बाहर से गम।
0: बिल्कुल ऐसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच कामिल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वैसे पता, इस्लामाबाद में ना एक इमली और आलू बुखारे का जूस मिलता था यू गाइस, इट वाज वेरी फेमस। मतलब अगर आप ओजी इस्लामाबादी हैं ना, लाइक इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक बहुत लाइक 90s से मैंने सुना है कि 97 के पता नहीं उस वक्त से वो आलू बुखारे और इमली का जूस मिलता था, बट अब वो यहाँ से कहीं चले गए। अगर आप लोगों को पता है कि वो कहाँ गए हैं तो आपने ज़रूर मुझे बता रहे हैं, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में भी आप टैग कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर किसी को पता है कि मैं कौन से आलू बुखारे और इमली के जूस की बात कर रही हूँ, बिकॉज इट वॉज सो यमी, क्योंकि वो घर का आलू बुखारे और इमली का जूस होता था, अब वो इस्लामाबाद में नहीं, वो पता नहीं कहाँ गए हैं। आई नीड टू सर्च दैट एज वेल, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। वो अलग बात है, मेरे डॉक्टर ने कहा है कि प्लीज़ खुदा के वास्ते अपने गले पर रहम करें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, लेकिन गर्मी हो इतनी शदीद वाली और आलू बुखारे और इमली का जूस ना हो, ये तो फिर ज्यादती वाली बात है।

Okay, so now time is really short, so let's quickly move towards light and bright segment. And आज का segment छोटा सा है, short सा है, छोटू सा है, पर अच्छी बात करने की कोशिश करेंगे. और बात हम चूंकि लोगों के हवाले से कर रहे हैं, और बहुत दफ़ा हम ये बात कहना भी चाहते हैं लेकिन हम कह भी नहीं सकते. सो ये भी जो एक पूरा सेगमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द टॉपिक, एंड इसको हम कंक्लूड भी करेंगे. यू नो, आई एम श्योर कि आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, एंड सोशल मीडिया पर भी आजकल बहुत सारी जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं, लाइक हर तरह की जो बुरी खबर है, आप सोशल मीडिया खोलें तो वो आपके सामने होती है. लाइक ट्रस्ट मी, इसकी वजह से जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद कर दिया, एंड उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश की, कि ऐसी हर खबर से मैं जिस हद तक दूर रह सकूँ रहूँ. लेकिन वही बात है कि आप कबूतर की तरह आँखें बंद करके तो ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं, बट कुछ ना कुछ आपके सामने आ ही जाता है. तो बात जो सारी होती है ना यू गाइस, जो हम बात करने जा रहे हैं, कि दैट इज़ अ माइंडसेट. आप देखें कि जो हम कहते हैं ना कि हर बंदे को अपनी सिक्योरिटी मेज भी करनी चाहिए, खुद को देखना भी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाने दें, दिस एंड दैट, मतलब किसी भी चीज़ के हवाले से हम देख लें, किसी भी बुराई के हवाले से देख लें, सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो हम यही कहते हैं ना कि नहीं होना चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक वाई, वट इज़ द रीज़न. मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल राय है, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर से जो खुदा खौफी है ना, वो बहुत जो लगे लाइक हम हमारे अंदर से जो माइंडसेट है ना खुदा खौफी वाला, वो बिल्कुल ही अब ख़त्म होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे ना दो, कह लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी के ना दो तरीके होते हैं. आप दुनिया में जब दुनियावी लिहाज से अगर आप देखें ना, तो जहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है, हम कहीं कभी भी वहाँ पे ऐसी जो हरकत और सकनात है वो नहीं करते. हम चोरी वहाँ पे नहीं करते हैं, हम किसी से लड़ाई वहाँ पे नहीं करते, हम खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ यू नो कुछ बुरा सलूक वहाँ पे नहीं करते हैं, कुछ भी. हम हमेशा अलर्ट रहते हैं. वाई? बिकॉज वी नो कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हमें कोई देख रहा है, और हमने इस जगह पे इस तरह का कोई भी गलत काम नहीं करना जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करता हो, या यू नो कानून से बाहर हो, इखलाकी तौर पर अच्छा ना समझा जाता. तो हम उस जगह पे तो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, बड़ा अच्छा रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल में खौफ होता है कि जी कोई हमें देख रहा है. दिस इज़ कॉल्ड यू नो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं दुनियावी लिहाज से एक्सटर्नली एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप चौकन्ना है, आप कुछ ऐसा नहीं करें. ये तो हम सब में मौजूद है. लेकिन इस सारी चीज़ों से हट के जो एक होती है ना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एहसास होना, एक इंटरनली आपके अलार्म्स का जो कहते हैं ना जागे रहना, ज़मीर का जागे रहना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मोस्टली जो हम लोग हैं उनमें ख़त्म होता जा रहा है. हम खुद पे, लाइक मैं खुद को देखूँ, आप खुद को देखें, हम दूसरों की तो चले बाद में बात करें ना, कि हम खुद को देखें कि हम कितनी दफ़ा कुछ करते हुए जो हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है, हम रुक जाते हैं इस एहसास से कि अगर यहाँ पे हमें कोई और नहीं भी देख रहा, तो एक खुदा ताला की ज़ात है जो ऊपर बैठी हुई है और वो हमें देख रही है, और उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, वो हर चीज़ से वाकिफ़ है. जो खुदा खौफी का कॉन्सेप्ट है, जो माइंडसेट है, कितने हम ऐसे लोग हैं जो हम खुद को इस नज़रिए से ज़िंदगी गुजारते हैं, या इसको सोचते हुए किसी भी अमल को करना चाहते हैं, किसी भी अमल को करते करते रुक जाते हैं. जो इनर आपका एक ज़मीर वाली चीज़ है ना, जो इनर आपकी अकाउंटेबिलिटी, हम कितना खुद को उस चीज़ के साथ अलाइन रखते हैं. दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन एज वेल. जो मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं ना माशरे में, एक तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दैट इज़ अनदर डिबेट, हमने उस हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन हमें आपकी अकाउंटेबिलिटी, हम कितना खुद को उस चीज़ के साथ अलाइन रखते हैं, दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन एज वेल. जो मुझे लगता है कि जितनी भी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं ना माशरे में,

है कि हमें इस तरह जिंदगी को गुजारना है कि बेशक अगर वहां पे कैमरा नहीं भी लगा हुआ तो ऊपर एक जात बैठी हुई है जो देख रही है, एंड आई विल बी अकाउंटेबल, मतलब मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किया जाएगा। आप यकीन करें कि हम बहुत बड़े जुराइम जो है वो डिस्कस करते रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होते हैं, हर जगह डिस्कस होते हैं, लेकिन बुराई तो छोटी से छोटी चीज़ भी बुरी होती है ना। मतलब एक तो एक बड़ा जुर्म है, लेकिन उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें भी हम कर जाते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, और फिर हम कहते हैं जी ज़माना ख़राब हो गया, जबकि वो हम खुद भी कर रहे होते हैं। सब्ज़ी वालों का आप देख लें, लाइक यू नो आप सब्ज़ी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, इतना अच्छा आप उनकी मर्ज़ी के उनको पैसे भी दे देते हैं, लेकिन व्हाट इन द एंड यू गेट, कुछ ना कुछ ऐसा आपके उस सब्ज़ी फ्रूट में कुछ ना कुछ ख़राब डाल दिया जाता है, हमें नहीं अंदाज़ा होता, ठीक है। और जब हम घर आते हैं हम देखते हैं तो उसमें ख़राब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ होता है। हम समझते हैं चलो इस बंदे ने, जो हमारा ख़रीदार है, जो ग्राहक है, उसने नहीं देखा तो चलो यू नो लेट्स डू इट, हम उसको बिल्कुल कैटर नहीं करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी और शॉप पे जाते हैं, नाप तोल हो रहा है, आप नाप रहे हैं, आपको नहीं पता चला, जो ग्राहक है उसको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, एंड यू जस्ट गो गेट टू गो विद इट, आप कमा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगले बंदे को नहीं पता, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि उसने थोड़ी देखा, कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन हम भूल रहे हैं कि समबडी एल्स इज़ वॉचिंग एंड समबडी एल्स विल बी क्वेश्चनिंग अस। तो ये वो जो खुदा खौफी वाली चीज़ है ना, ये मुझे लगता है कि हमारे अंदर से बहुत कम होती जा रही है, एंड इसके ऊपर हम सबको मिलकर जो है ना, मुझे खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये तभी होता है जब आप कनेक्टेड रहते हैं, आप खुद को बारहा ये रियलाइज़ करवाते रहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ कम भी आ रही है मेरे हिस्से में, या यू नो अगर मैं आज इतनी चीज़, जैसा मैं अगर जिस एग्जाम्पल दे रही हूँ, शॉपिंग की एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह की एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई नो महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे हिस्से में कम भी आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, मैंने हलाल करके इसको लेके चलना है, मैंने कोई बुरा काम नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं करना कि जिस पे जब कल को मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझसे सवाल हो तो मैं सवाल का जवाब देने के काबिल हूँ, विच इज़ वी कॉल यू नो यू मेक योर लाइफ आखरत ओरिएंटेड, जिसकी तरफ से हम हटते ही चले जा रहे हैं और दिन ब दिन जराइम सामने आते ही चले जा रहे हैं। बल्कि मुझे इससे याद आया, जस्ट द अदर डे आई वॉज यू नो गोइंग समवेयर ना, तो मैं जा रही थी एंड आई वाज टेकिंग द कैब, जो आजकल प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल रही होती, कैब्स वगैरह, तो मैंने इसी तरह एक गाड़ी कराई एंड ही वाज वेरी एजुकेटेड, अच्छा खासा इंसान, ठीक है, अच्छा राइड करा ली मैंने, एंड मैं जब पहुंची तो उस दिन ना मेरा मोबाइल का कोई प्रॉब्लम था, मेरा 4G नहीं चल रहा था, बिकॉज यू नो आजकल काफ़ी इंटरनेट के इशूज़ वगैरह हो रहे हैं, तो मेरा 4G नहीं चला, तो मैंने नोटिस नहीं किया कि मेरी जो राइड है वो स्टार्ट हुई है स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, इट वाज आल्सो मिस्टेक ऑन माय एंड कि मुझे देख लेना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज मेरा मोबाइल का इशू था मैंने नहीं देखा। अच्छा जब मेरे घर के हम करीब पहुंचने लगे ना, तो देर इज़ दिस वन रोड, मतलब एक रोड का ना फ़र्क रह गया, तो जब हम करीब पहुँचने लगे तो कहते हैं कि सिस्टर वो आप राइड स्टार्ट मैं कर दूँ, क्योंकि मैंने राइड उस वक्त स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं एकदम मैं अलर्ट हो गई, मैंने क्या मतलब कि आपने राइड क्यों नहीं स्टार्ट किया, मेरा तो यहाँ पर बहुत स्वीट हुआ आप लोगों के साथ, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो ना क्या आपने मलिक अच्छा जी कैसे हैं आप स्टफ यू नो, लेकिन अगर आप मुझे वैसे कभी इन मामलों में देखें तो मैं अच्छी खासी मतलब मसले वाले लोग हैं हम, ठीक है, तो एकदम मैं तो लाइक होगी मैंने क्या मतलब क्या आपने राइड क्यों नहीं स्टार्ट की क्या, तो उन्होंने उनका जवाब ये था कि एक्चुअली ना हमारी जो कंपनी है उसने कोई प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज़ कर दी है, तो हमारे जो पैसे हैं वो ज़्यादा कटते हैं, तो मुझे थोड़ी सी ना बचत हो जाएगी, मुझे 40-50 रुपये ना ज़्यादा मिल जाएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मैं इतनी उस पर परेशान हुई, एंड ये जो भी मैं आपसे गुफ्तगु कर रही हूँ मुझे उस पर भी ख्याल आया, उनको तो खैर मैंने अच्छा खासा उनकी मैंने कंप्लेन भी की, बिकॉज ऑनेस्टली इन मामलों में ना मैं बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना रहम वाली वो चीज़ नहीं करती, बिकॉज दिस इज़ वट यू शुड बी डूइंग। मैंने उनकी कंप्लेन भी की, मैंने कॉल भी की, सब कुछ किया, एंड उनको भी मैंने अच्छा खासा यू नो लेक्चर भी एक दे दिया कि ये गलत है, दिस इज़ समथिंग वी आर नॉट सपोज टू डू, कि आप देखें सिर्फ 50-60 रुपए के लिए हमने ये भूल गए कि चलो इन ड्राइव वाले ओहो मतलब चलो गाड़ियों वाले अगर वो नहीं भी उनको पता चल रहा कि आपने ऐसी हरकत कर दिया है, ठीक है, तो ऊपर खुदा तो बैठा है उसको तो पता है ना आपकी रोज़ी में तो वो एक चीज़ ऐड हो गई है, गलत ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पैरामीटर्स हैं यू गाइस जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा शामिल करने की ज़रूरत है एंड ख़ुद को अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है। क्यों कहा जाता है कि जब भी आप बिस्तर पर जाएँ तो आप ज़रूर ख़ुद से ये सवाल करें कि मैंने क्या कुछ आज ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे खुदा ताला की ज़्यादा नाराज़ हो सकती है या जिसका मुझे हुक्म नहीं है। ख़ुद को हमेशा
अकाउंटेबल ठहराया, कैथारसिस करें, एंड देन इवेंचुअली आप जो है चीज़ों को बेहतर करना शुरू हो जाएंगे. सो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे बेहतर इंसान दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद को कंट्रोल कर सकता है. सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम, टुडेज़ लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट. इन फैक्ट

यू नो वी हैव टू मेक दिस खुदा खौफी वाला माइंडसेट अलाइव इन आर सेल्फ, ताकि हम जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें. मैं और आप, हम सब अपना अपना एहतसाब करें और देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या बेहतर करना चाहिए और किस चीज़ से खुद को रोक देना चाहिए.

ओके जनाब, रमज़ान गुजर हमारे साथ मौजूद हैं और रमज़ान गुजर साहब क्या फरमा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो यू आर सेइंग कि मैं ऑनर, मेरी ऑनर आप कह रहे हैं कि आपकी कॉल नहीं, और लाहौर से आप हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी शादी कब होगी, जब होगी तो बता दूँगी. जकीउद्दीन हमारे साथ हैं. द बिजनेस मूव्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल स्ट्रीट साइड सेटअप्स एंड कैन नाउ बी फाउंड. अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपने मुझे वो बताया कि मैं ऑनर पढ़ने लगी थी, ऐम ही पब्लिसिटी हो जाती है. मतलब ठीक है, बहुत अच्छा है उनका आलू बुखार और इमली का जूस, लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना हम पब्लिसिटी कर देंगे. थैंक यू वेरी मच जकीउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो आसान कर दिया. थैंक यू सो मच. जरा मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ, मैं भूल ही ना जाऊँ कि ये वहाँ पे चलेंगे अब. ओके जनाब, चलें जी, प्रोग्राम के ख़त्म होने तक मुझे ये भी पता चल गया है कि आलू बुखार और इमली का जूस जो है वो कहाँ से अच्छा मिलेगा. मतलब ये होता है, पता, आई डोंट नो, आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते नहीं. अगर आपने एक अच्छी चीज़ किसी जगह की खाई हुई हो ना, तो अगर आप बाकी कहीं से भी ट्राई कर लें, जब तक आपको वो वाला टेस्ट आपका ऐसा डेवलप हो जाता है ना कि आप फिर आपको नहीं अच्छा लग रहा होता है, तो आपको वही वाली चीज़ चाहिए होती है जो आपने खाई हुई होती है, राइट. तो ये मेरे साथ ये वाले मसले हैं, इसलिए मैं बड़ा परेशान थी अंदर अंदर से ना, बहुत परेशान थी कि यार अल्लाह क्या मतलब, मैं गर्मियों में आलू बुखार और इमली का जूस नहीं पिया करूँगी. अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पानी का जो टेस्ट है ना वो भी नहीं होता. ये भी मैं आपको बताऊं कि पानी का भी टेस्ट होता है. मतलब ये भी एक वक्त हम सुना करते थे कि यू नो पानी का क्या जायका होता है, लेकिन अगर आप कभी अपने घर से बाहर जाएं और अगर आपका घर वाला पानी जो आप पीते हैं, ठीक है, किसी और के घर का पानी पिए, तो उसमें भी आपको डिफरेंस फील होगा. अगर आप किसी खास यू नो ब्रांड का पानी पीते हैं, जस्ट फॉर इंस्टेंस कोई लोग हो सकते हैं कुछ यू नो जो पीते हो ब्रांडों का पानी, तो अगर आप किसी और ब्रांड का पिए तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होता है कि देयर इज अ डिफरेंस. तो ये वो चीज़ है जो कि मैंने कहा चले जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैं बता देती हूँ. मानूर जान हमारे साथ मौजूद हैं और आप कह रही हैं कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे. थैंक यू वेरी मच. हमदुल्ला मलाखिल ने हमारा साथ दिया. मिसेस सईद हमारे साथ मौजूद रही. ज़ारा नूर है. अब्दुल सतार खोसो हमारे साथ हैं. ताहिर अजीज़ इज़ विद अस एंड देन जकीउद्दीन वंस अगेन. उस्मान अली हमें सुन रहे हैं. आमिर अली ने हमारा साथ दिया और कहते हैं कि इस्लाम आमना, आज काफ़ी अरसे के बाद वापस आई हैं. मैं नए मोबाइल पर सुन रहा हूँ और उस पर आपकी आवाज़ मुख्तलिफ लग रही है. कहते हैं कि बाकी ये कहना था कि ये एफएम एक कौमी चैनल है, इस पर सिर्फ उर्दू में प्रोग्राम क्यों नहीं होते, क्यों हम एहसास कमजोरी का शिकार हैं, क्यों हर फिक्रे में अंग्रेज़ी का तड़का लगाना होता है. ओके, सो आमिर, ऐसी बात है कि बेशक ये एक कौमी चैनल है, लेकिन इसको बहुत से ममालिक में सुना जा रहा होता है, लाइक यू नो इंटरनेशनली भी लोग सुन रहे होते हैं. और तीसरी बात ये नहीं, दूसरी थी, तीसरी जो भी बात थी वो तीसरी बात ये है कि चूँकि हमारा जो अब मुल्क में गुफ्तगू करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा शामिल हो गई है कि हम अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों को मिला के बोल रहे होते हैं, जिसको आप बायलिंगुअलिज्म कहते हैं. और ये हमारी जिसे कहते हैं ना कि रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर उर्दू में बात की जाए तो कोई मुजायका नहीं है, आपको मुकम्मल उर्दू में भी गुफ्तगू करनी आनी चाहिए, और इसी के बरक्स आपको मुकम्मल अंग्रेज़ी में भी गुफ्तगू करनी आनी चाहिए. लेकिन आजकल का ये एक तरीका है कि आप उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों को मिलाकर बोलते हैं, और कोई लोग इतना इस चीज़ को अब बुरा नहीं महसूस करते, क्योंकि अब हम हर चीज़ से जो है ना वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ टू को क्या कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में यू गाइस क्या कहते हैं यूज़ टू को, हम इन सब चीज़ों से आदि होते जा रहे हैं, है ना. तो इसलिए जो है यहाँ पे उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में अलग अलग प्रोग्राम भी होते हैं, और उर्दू और अंग्रेज़ी का एक जो मुश्तरका प्रोग्राम है वो भी होता है. और इससे बिल्कुल ये जाहिर नहीं होता कि हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, इससे जाहिर होता है कि हम आदतन ये सब कुछ करते हैं. ठीक हो गया. एनी हाउ, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ प्रोग्राम. आई रियली होप कि आपने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा. एंजॉय किया तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. ज़िंदगी रही और गर्मी थोड़ी सी कम हुई, तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. मेरा प्रोग्राम होता है हर इतवार को और पीर को 4 से 6, 4 to 6 इन इवनिंग ड्राइव टाइम. इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त. बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स. दिस इज़ मी योर वेरी ओन आरजे आमना मलिक साइनिंग आउट. अल्लाह निगहबान.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

Oh.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: This is FM 101.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

ارادے میں چھپے اس گروہ

0: असलामुअलैकुम, रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद
1: और शहयार अहमद।
0: पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: नायब वजीर आजम ने बहरीन की वजीर खारिजा और यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा नायब सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है।
0: वज़ीर मंसूबा बंदी ने कहा है कि हुकूमत के जुरअतमंदाना फैसलों ने मईशत को कामयाबी से मुस्तहकम किया है।
2: पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान में जदीद बैटरीज की तैयारी के मंसूबे एक मुवक्ती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं।
0: वज़ीर मवासलात ने मुल्तान लोधना रोड को दोरोया करने की मंजूरी दे दी है।
2: सिंध के वजीर आला ने कहा है कि गंदम के काश्तकारों को आयानत की मद में 43 अरब रुपए दिए गए हैं, जिससे सूबा इजाफी पैदावार के जरिए खुद कफील हो जाएगा।
0: बलोचिस्तान में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकारी और निजी कॉलेजों में 150 ई कॉमर्स लेबोरेटरीज कायम की जा रही हैं।
2: आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने रियासत का अमन तबाह करने के लिए कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है।
0: इस्लामी तआवुन तंजीम ने अक्वामे मुत्तहिदा के मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के अज़्म का एदा किया है।
2: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के दौरान हलाकतों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है।
0: दो रोजा मैंगो फेस्टिवल आज लाहौर में खत्म हो गया।
2: फीफा आलमी कप में नॉकआउट मरहले का पहला मैच कल जनूबी अफ्रीका और कनाडा के दरमियान लॉस एंजलिस में खेला जाएगा।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फरीहा हसन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीरे आज़म और सऊदी वज़ीरे ख़ारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीरे मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत के दिलेराना फैसलों ने कामयाबी से मईशत को मुस्तहकम किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कुलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से रियासत का अमन ख़राब करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले का पहला मैच आज रात लॉस एंजलिस में जनूबी अफ्रीका और कनाडा के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, द ब्राइड ऑफ पाकिस्तान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

कुछ कुछ लाइव ऐसे मामलात होते हैं जिसमें समटाइम ऐसा कुछ हो जाता है तो आपने ज़्यादा परेशानी में हम चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और साथ साथ आपको बताएंगे क्यों क्यों क्यों क्यों ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और कोई बात नहीं। बस इतने से मसला था, हो गया, रिजॉल्व हो गया और आसानी जो है हमने इसको पकड़ लिया कि क्यों मसला कह रहा था।

ओके जी, और आपको बताना चला कि प्रोग्राम में हमने टॉपिक भी रखना है, और टॉपिक ये है कि आप लोगों से हम गपशप लगाएंगे, पूछेंगे और गम है या खुशी है, तो ये नहीं पूछेंगे टॉपिक ये है क्या है, अगर आपको अगर कोई गिफ्ट दिया जाए, ऐसा वो कौन सा गिफ्ट है जो आप नहीं लेंगे और क्यों नहीं लेंगे? क्या आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जो आप

लगा मेरी वॉइस सही आ रही है, म्यूजिक की भी आ रही है सही। ओके टॉपिक आप लोगों से हमने शेयर कर दिया कि आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जो आप नहीं लेंगे और क्यों नहीं लेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी है।

वो किसी अगर मुझे गिफ्ट मिले कि मेरी मर्जी के ना हो, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। मर्जी का गिफ्ट कौन सा होता है? कौन सा गिफ्ट होता है मर्जी वाला? शहजादी मंजूर हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, थैंक यू सो मच। और काफी दिनों बाद आपको लाइव सुन के बहुत अच्छा लग रहा है।

कितना खूबसूरत वक्त था कि जब फैसले जो है वो एक दूसरे पे छोड़े जाते थे कि मुझ में मेरा कुछ भी नहीं बाकी, तू वही, मैं वही कहूँ, मैं वही करूँ जो तू कहे। आप लोगों के पार्टिसिपेशन भी साथ से शामिल करेंगे 051-111-0101-9202-540। क्या आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जो आप नहीं लेंगे? अच्छा, और जी मिलते हैं गिफ्ट, मिलते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा वक्त अभी दूर नहीं है, पास पास से। और कितने दिन रह गए हैं जी? अच्छा तो 5-6 दिन रह गए हमारी बर्थडे में, और जुलाई में है जी, बिल्कुल जुलाई में है। टाइम से कह नहीं है तो 10:30 हुआ चाहते हैं सामिन, और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। यार मुझे ये वॉइस जो है ना इस सिंगर की, फीमेल सिंगर, अभी ना ये प्रोफेशनली जो है वो गाना शुरू किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोज़, इनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना, वहाँ पे ये कवर्स जो है वो गाया करती थी इनका। आज भी वो सॉन्ग मुझे याद है, वो वाला सॉन्ग मुझे आज तक मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने गाया वो। और अभी भी मालूम नहीं है कि वो पाकिस्तानी सॉन्ग है या कि फिर वो पाकिस्तानी सॉन्ग नहीं है। हाँ, मुझे बता सकते हैं इसका टाइटल क्या हो सकता है? Can I sing? सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, ऐसा मंजर हो बहाश कहाँ रहता है। सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, ऐसा मंजर हो तो होश कहाँ रहता है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसके अंदर से, मैंने जो मेन मुझे, क्योंकि इनकी वॉइस बड़ी पसंद है। सोहा वसीम

आपने जो लाइंस गई हैं बहुत अच्छी हैं, और मैंने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना है जी। मैंने भी नहीं सुना है, मैंने भी इनका एक कवर सुना है, मैंने गा तो दिया, पता नहीं है नहीं है।

ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और गर्मी का ख्याल रखें प्लीज़। और पानी तो मैं आज स्पेशली ले के आया हूँ। देखें काफ़ी दिनों बाद जब लाइव आए हैं तो एकदम से लव्स फंस रहे थे क्योंकि और कोई बोलने नहीं देता ना मुझे।

0: ओके जी, आप लोगों की कॉल्स भी साथ से शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहां से हैं और क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। कौन सा आपको गिफ्ट दें जो आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? तभी से ठीक है। क्वेटा में आजकल?
1: बिल्कुल क्वेटा में बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: क्वेटा में गर्मी है?
1: बिल्कुल, ये 2 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: मैंने तो सुना है क्वेटा में इतनी गर्मी नहीं होती है।
1: नहीं नहीं होता है, क्योंकि ये तो गर्मी भी इसका खुश्क है और सर्दी भी खुश्क है।
0: गर्मी भी खुश्क है और सर्दी भी खुश्क है। क्वेटा, क्वेटा से? हाँ,
1: क्वेटा से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो आपको कौन सा गिफ्ट अगर दिया जाए तो आप वो गिफ्ट नहीं लेंगे?
1: कौन सा गिफ्ट? क्या
0: अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो आप नहीं लेंगे, वो कौन सा गिफ्ट है?
1: वो जो है तकरीबन कपड़े।
0: कपड़े?
1: बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कपड़े बहुत ज्यादा
0: है। अच्छा, मतलब मेरे वाला ग्राम है, अपनी चॉइस के कपड़े लेने हैं। ठीक हो गया। मतलब हाँ ना, पता चले कोई गिफ्ट में आपको कपड़े दे कोई 1500-2000 रुपए वाला, आजकल तो सिलाई भी 2000 हो गई है ना। कपड़ा तो अच्छा हो ना कम से कम।
1: बिल्कुल, तकरीबन 7-8 हजार वाला सूट हो तो सही है।
0: 7-8 हजार का कपड़ा तो अनु ही देना लायक। ठीक हो गया, सही है। और कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप तो मेरे से भी ज्यादा जल्दी में रहते हैं। अच्छा जी, क्या है नेक्स्ट वीक? अच्छा जी, नेक्स्ट वीक क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जुनी मशद मौजूद है लाहौर से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का।

ओके जी, मज़ीद आप लोगों के साथ साथ पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे। आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जो आप नहीं लेंगे, वो ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है? वक्त को साथ है 10:38 और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक।

0: सताते हो मुझे तुम। जब इंसान अपने पसंदीदा शख्स से बात करने के लिए तरस जाता है ना, तो तब महसूस होता है उस फकीर का दुख जो सारा दिन मांगता है और आखिर शाम को खाली हाथ लौट जाता है। आपको लगता है कि फकीर आजकल के जो हैं वो खाली हाथ लौट के जाते हैं? मैंने तो आजकल ऐसे ऐसे फकीर देखे। मैं रिसेंटली ऑफिस से मुझे लेट जाना था, लेकिन मैंने देखा एक फकीर को। तकरीबन 7:30 का टाइम था शायद, सुबह सुबह का। पैकिंग करते हैं ना, उनको 10-20 और इस तरह के छोटे जो है वो नोट दिए जाते हैं। तो वो ना कुछ रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं वो, उन्होंने क्योंकि आगे कस्टमर्स को जो है वो बिल वगैरह के कटिंग में देने होते हैं पैसे वापस। हाँ जी, और सुबह सवेरे ना माशाल्लाह कोई 7 बजे के टाइम ना उन्होंने कोई 2-1 हज़ार रुपये आराम से बट लिए थे। और मैं सोच रहा था अच्छा अभी तो पूरा दिन बाकी है। ओके जी, मजीद हम लोगों के पार्टिसिपेशन को शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ और कहां से हैं और क्या कहना चाहते हैं। 0511100101 9202540 जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया है उनको बताते चलते हैं कि टॉपिक है आपको कौन सा गिफ्ट दें जो आप नहीं लेंगे एंड व्हाई, क्यों क्या दसो ना मिकी। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर चूट चूट हमारे साथ मौजूद है। 10 बजे हुए से आते हैं और 48 मिनट आपका मेरे साथ ठीक रात के 12 बजे तक। So calls, साथ से शामिल करेंगे और कॉलर्स कहते हैं कि आप हमें शामिल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम दोबारा बता दें। लाहौर से रिमशा। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्लाह ताला का बहुत करम है। लाहौर का मौसम कैसा है?
1: बहुत
0: अच्छा। आप मुझे स्ट्रीमिंग पे सुन रही हैं या रेडियो पे सुन रही हैं?
1: नहीं नहीं, आपकी ट्रांसमिशन आती है
0: तो आपको
1: आपका शो
0: सुनाई
1: देते हैं
0: लाहौर। अच्छा, और लाहौर वाले शो मेरा लाइव करते हैं, थैंक यू सो मच लाहौर वालों। और जो लाहौर के लिस्टनर हमें सुन रहे हैं उन सब को भी
1: मैं आपको सुनती रहती थी पहले भी। कुछ दिन ऐसे हुए था कि आपकी ट्रांसमिशन जो था बिल्कुल ही, आपकी ट्रांसमिशन आती है
0: लाहौर वाले शो मेरा लाइव करते हैं, थैंक यू सो मच लाहौर वालों। और जो लाहौर के लिस्टनर हमें सुन रहे हैं

0: कोई भी अभी देखिए ना, वो त्रेड़ा बांध, त्रेड़ा बांध साहब ने कहा मुझे कोई शेवर मुर्गी गिफ्ट करे मैं कभी भी ना लूं।
1: ओके
0: तो आप क्या नहीं लेंगे?
1: अगर मुझे कोई भी यानी के घड़ी वगैरह या सूट वगैरह तो मैं नहीं लूंगी।
0: सूट और घड़ी नहीं लेंगी आप?
1: नहीं लूंगी। अगर मुझे कोई प्यार, अगर यानी फैमिली में ऐसा होता है कि मुझे कोई प्यार से काया बो या चाचू वगैरह पैसे भी दे रहे हैं तो बोल ही रहती मैं जल्दी करके, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, ये सब कुछ मुझे अहमियत नहीं रखती ये सब चीजें मेरे
0: लिए। कहाँ होते हैं ऐसे लोग,
1: क्योंकि पैसे
0: तो हाथ की मैल होती है। वैसे ये मैल वाली जो बात है ना, आजकल पता नहीं हमारे हाथों पे तो लग ही नहीं रही है मैल, ये वाली पता नहीं कहाँ चली गई है।
1: नहीं आप देखिए पसीने में इंसान चेहरे पे कितनी वो जमा हो जाती है किनके और पसीने से।
0: हाँ ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है
1: आजकल के लोग। जो आपके पास हमेशा रहे।
0: हाँ तोफू तोफू ठीक हो गया, सही है। और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: और आप इस तरह से मुस्कुराते रहे।
0: थैंक यू सो मच।
1: और भाई कॉलेज ज्यादा लिया करें प्लीज।
0: कॉलेज ज्यादा ले तो फिर मुझे डर लगता है ना।
1: अल्लाह क्यों डर लगते हैं, कॉलेज आएंगे आपका हौसला बढ़ेगा, आप उनके साथ बहस करेंगे फिर तो सही आएगा।
0: हाँ चलें ठीक है कोशिश
1: करते हैं। आप डरा ना करें, आप बहादुर बनिए, आप बहादुर बनिए मेरे।
0: नहीं नहीं मैं बहादुर ही हूँ, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव जो है कॉल्स शामिल करता हूँ। ठीक है
1: ओके
0: थैंक यू सो मच।
1: थोड़ी सी कॉल्स है ना आप ज्यादा लिया करें, लोगों के पास जो है ना काफी लोग आपको कॉल कर रहे होते हैं फिर कहते हैं कि हमारी कॉल नहीं मिलती, बेचारों की कॉल भी करिए करिए।
0: आप कह रही हैं कॉलेज ज्यादा लिया करें, लोग कहते हैं आप बातें ज्यादा किया करें।
1: मासूम लोग देखिए आपको सुन रहे होते हैं मेरे जैसे।
0: अच्छा चलो ठीक है, सही, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इश्क जी ठगबाज ना कोई ठग लेंदा।

जब महबूब से एक तरफा मोहब्बत हर हद पार कर जाए, सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना हो। ये इश्क है।

0: 0501111001 और कहते हैं कि आप इश्क पे क्यों इतनी बात करते हैं, क्या करें, आदत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से?
1: नहीं भाई, नहीं बात कर रहा हूं, लाहौर से।
0: नाम दोबारा बता दे मेरे भाई।
1: नहीं बात कर रहा हूं, लाहौर से।
0: नहीं बात कर रहे लाहौर से, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी?
1: बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, लगा कदम है। आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, मजा आ रहा है।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कौन सा गिफ्ट आप लेना नहीं पसंद करेंगे?
1: ऐसे तो जब कोई गिफ्ट देता है तो मेरे हिसाब से वैसे से इनकार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ।
0: जी जी।
1: अगर मुझे कोई वॉलेट गिफ्ट करेगा तो मैं वो नहीं लूंगा।
0: क्यों?
1: क्योंकि वो मुझे अपनी पसंद का अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई परफ्यूम गिफ्ट करेगा तो वो मैं वो भी नहीं लूंगा।
0: वो भी मेरी तरह आपको अपना अपने वाला पसंद है?
1: क्योंकि वो मुझे अपने हिसाब से अच्छा लगता है। और वैसे गिफ्ट अगर कोई दे तो ले लेना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, अगले बंदे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, अगर मुझे कोई दिल गिफ्ट करेगा तो मैं वो भी नहीं लूंगा।
0: अच्छा, क्यों?
1: वो तो अपनी मर्जी का पहले से लिया होता है ना।
0: हाय हाय हाय, मतलब कौमी मसला
1: है जी?
0: कौमी मसला है, कौमी
1: कौमी मसला। हाँ, ये कह सकते हैं कौमी मसला है। वैसे आप ये जो टॉपिक आपने सोच के रखा है, ये आपको किसी ने कहा था, आपने कुछ सोचा है?
0: खुद जी, छोटा छोटा सा दिमाग, काफी सारी बातें आ जाती हैं इसमें।
1: आप मैंने अक्सर पहले भी कभी ना कभी आपका मैंने प्रोग्राम एक दो दफा सुना है, मैं रेगुलर तो इतना कोई नहीं सुनता, तो आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं।
0: आए, हम खुद भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अब क्या करें, अब रहे नहीं है वैसे।
1: अभी भी है, अभी आप जिंदा है।
0: हाँ, अभी मुझ में जिंदा है,
1: अभी भी है। वैसे आप इंटरेस्टिंग है, आपको इतनी ज्यादा आवाम पसंद करती है। अब अगर लेट्स सपोज हम आपको कॉल कर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग आपको कॉल कर रहे हैं, तो आप इंटरेस्टिंग है तो आपको करें, और आप इंटरेस्टिंग है तो आपको 101 ने प्रोग्राम दिया है।
0: आए होए। ये भी सही कहा आपने।
1: हाँ जी, तो आप इंटरेस्टिंग है, बल्कि इवन दैट मैं तो सब आरजेस परफेक्ट शेयर करूंगा। सारे जो 101 के आरजेस हैं, जब भी सुनते हैं सब अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ एक दो ऐसे खास आरजेस हैं जिनके प्रोग्राम को ज्यादा एंजॉय करता हूँ। अगर टॉप ऑफ द लिस्ट मैं अगर 101 के आरजेस में से देखूँ तो मुझे ज़ीशान नासिर का प्रोग्राम अच्छा लगता है।
0: He is, yes. इनको उनके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, बड़ा इनफॉर्मेटिव और बड़ा
1: एनर्जी से। इतना मज़े का होता है, लाइक ऐसे फील होता है जैसे बंदा कोई मूवी देख रहा है।
0: हाँ, क्योंकि आजकल वो ड्रामों में तो आ रहे हैं,
1: हमें इमेजिनेशन में लेके चले जाते हैं। बिल्कुल,
0: देखें एक ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, उसकी निशानी होती है ना, कि वो आपको अपनी आवाज के जरिए जो है ना, वो आपको उस शहर में ले जाता है कि जहाँ पे आपको जो होना चाहिए।
1: जो स्टोरीज लेके आते हैं वो बहुत मजे करते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम की जो खास चीज मुझे लगती है आपकी सॉन्ग सिलेक्शन। आपकी सॉन्ग सिलेक्शन हमेशा टू गुड होती है, लाइक मेरे हिसाब से किसी आजे को आगे ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि फलां सॉन्ग लगा दे, तो आप ऑलरेडी इतने मजे के सॉन्ग चलाते हैं।
0: चलें ठीक है, थैंक यू। इस वक्त हमें न्यूज की तरफ बढ़ना, इंशाल्लाह फिर बात होगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फरीहा हसन से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम और सऊदी वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत के दिलेराना फैसलों ने कामयाबी से मईशत को मुस्तहकम किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से रियासत का अमन खराब करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ग्यारह बज के 5 मिनट हुआ चाहते हैं सामिन, और टॉपिक है कि आपको ऐसा कौन सा गिफ्ट दें जो आप नहीं लेंगे। कुकड़ी तो मैंने याद आ गया वैसे, त्रेड वन से छा गया वैसे, मतलब जो थोड़े बहुत लोग ही खाते ने ना उन्होंने भी छाड़ देने हैं, क्योंकि आपको आपके ड्राइवर ने बताया है, उसी आप पे कोई मेहनत नहीं की थी।

0: एक बड़ा ही खूबसूरत सा सिंगर और पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा नाम कमाया और एक रियलिटी शो में एक पड़ोसी मुल्क में था, वहाँ पर भी जाके पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, लेकिन एक हादसे में जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। बहुत ही यंग सा टैलेंट पाकिस्तान की उभरती आवाज़। जैन अली खान।
1: निशा सा निशा सा रे सा। आड़े आड़े प्रिया।

कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह, एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरे तुमसे कर ली, और तीसरी बेपनाह कर ली।

ये डांची का भी बहुत लंबा एक सिलसिला एक किस्सा है, अब तो वो डांचियां भी नहीं रही हैं। क्यों जी इतने मसरूफ हो तो सही।

एक्चुअली मुझे मालूम है 4 तारीख को मेरी बर्थडे और वो सैटरडे का दिन बन रहा है आई थिंक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। चले जी कोई बात नहीं, खैर है जिंदगी में ये पल भी आते हैं और गुजर जाते हैं और ये भी गुजर जाएगा। पहले होते थे कुछ चीज़ें, हम बड़ी बेताबी से बेसब्री से उनका इंतज़ार करते थे कि वो सेलिब्रेट भी होती थी और अपना एक था एक मामला, लेकिन अब

कहते हैं कि जो जुबान है ना उसको बहुत ही कंट्रोल में रख के बात करनी चाहिए। तलवार का जख्म भर सकता है, गोली का जख्म भर सकता है, काटने का जख्म भर सकता है, लेकिन जुबान का कहाँ फिर।

एक बार कहो तुम मेरी हो। नियतों का फितूर गायब है, तू मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। तू निशानी मोहब्बत की मन

गुरूर, हुसन और ताकत सब मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि इंसान की इब्तदा भी मिट्टी है और अंजाम भी। और इतना कीमती कभी खुद को ना समझे। हमने मिट्टी को इंसान बनते देखा है।

चलो मोहसिन, मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं, उसे आजाद रखते हैं। हमारे खून में रब ने यही तासीर रखी है, बुराई भूल जाते हैं, अच्छा याद रखते हैं। मोहब्बत में कहीं कम से, मोहब्बत में कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए, मोहब्बत में कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए। हम अपना हर कदम उसके कदम के बाद रखते हैं।

मेरा मुसाफिरा की झगड़ा, तेरा मेरा मुसाफिरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना।

समझा था कि तू है तो दरअसल है तेरा हम है तो हमें धर का झगड़ा क्या तेरी सूरत है आलम में शबानों तेरी आंखों के सिवा दुनिया।

Emiré con Fayacón. ऐ मेरे कुनफाया कौन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। ऐ मेरे कुनफाया कौन, तेरी हद से मैं कहां दूर निकल सकता हूं। तेरी मर्जी है मुझे तोड़ दे और फिर से बना। फिर मुझे खाक नशीं करके यूं ही जीना सिखा। मेरे अंदर जो खला है मेरे मौला भर दे। तूने जो खास तवज्जो से बनाया है ये दिल, इसको मिट्टी में मिला दे या तू पूरा कर दे। मेरे खालिक, मैं तेरे कुन की तलब में जिंदा हर घड़ी एक कयामत से गुजर जाता हूँ। इतनी शिद्दत से मेरा पहलू सुलग उठता है, दर्द की हद से गुजर जाता हूँ, मर जाता हूं। ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे कुन फयकून।

एक ताज़ा हिकायत है, एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने। एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। कुछ तुमसे मिलता था बातों में, शबाहत में। हाँ तुम सा ही लगता था शोखी में, शरारत में। तुम सा ही लगता था शोखी में, शरारत में। दिखता भी तुम्ही सा था दस्तूर मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन गैरों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा। फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो, कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है।

मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी मोहब्बत।

उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करती हो? तुम जिससे हंस के मिलती हो मैं उसको दोस्त बनाता हूं, तुम जिस रास्ते पर चलती हो मैं उससे आता जाता हूं। तुम जिनको देखती रहती हो वो ख्वाब सरहाने रखता हूं, तुमसे मिलने जुलने के कितने ही बहाने रखता हूं। कुछ ख्वाब सजाकर आंखों में पलकों से मोती चुनता हूं, कोई लम्स अगर छू जाए तो मैं पहरों उसको सोचता हूं। जिन लोगों में तुम रहती हो, तुम जिनसे बातें करती हो, तुम जिनसे हंस के मिलती हो, जो तुमको अच्छे लगते हैं वही मुझको अच्छे लगते हैं, वही मुझको अच्छे लगते हैं। जिस बाग में सबको जाती हो, जिस सब्जे पर तुम चलती हो, जो शाख तुम्हें छू जाती है, जो खुशबू तुमको भाती है, वो ओस तुम्हारे चेहरे पर जो कतरा कतरा गिरती है, वो तितली छोड़ के फूलों को जो तुमसे मिलने आती है, जो तुमको छूने आती है, उन सब के नाजुक जज्बों में मेरे दिल की धड़कन बसती है, मेरी रूह भी शामिल रहती है। तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाई रहती हो, मैं तुमको तकता रहता हूं, मैं तुमको सोचता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, हर मौके पर हर मंजर में मैं साथ तुम्हारे रहता हूं। मैं चश्मे तसव्वुर में अक्सर बस तुमको देखता रहता हूं, बस तुमको सोचता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करती हो?

इजाजत ये मोहब्बत भी अपनी अपनी होने लग जाती है। इंसान को यूं लगता है कि जो जज्बा उसकी ज़ात के अंदर पनप रहा है और परवान चढ़ रहा है, बस वही है, वही हकीकत है, वही सबसे बढ़कर है। ये मासूमियत पाई जाती है ऐसे तमाम जज्बों में जो अपने अंदर शिद्दत रखते हैं। कभी गौर कीजिए, ऐसी ही मासूमियत आपको नफरत और गुस्से में भी नजर आएगी, क्योंकि ये भी वो जज्बे हैं जो अपनी ज़ात के अंदर बहुत शिद्दत रखते हैं। लेकिन क्या है कि हम इंसान मानूस होते हैं ज्यादातर उन चीजों से, यहां तक कि उन जज्बों से भी जो अपने अंदर कोई ना कोई मुस्बत पहलू जरूर रखते हैं। गो के नफरत और गुस्से के मुस्बत पहलू हमें कभी जिंदगी में मालूम पड़ भी जाया करते हैं, लेकिन उसके लिए एक वक्त दरकार हुआ करता है कुछ समझने के लिए, या इन जज्बों को समझने के लिए और इन जज्बों में से मुस्बत पहलू को निकालने के लिए। मेरा नाम है आतिर अली सैयद, मुसाफत शब एफएम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। 12 बजकर हुआ चाहते हैं तकरीबन 35 मिनट। टेलीफोन लाइंस अब आपके लिए खोल दी गई हैं 920-2540-9202540, इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051। कॉलर को शामिल करते हैं जी, लेकिन ड्रॉप होगी, दोबारा कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छा हूँ जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं ठीक हूँ जी। कौन है, कहाँ से? लाहौर से। शिजा? अच्छा ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा हूँ जी। क्या कहेंगी? ये तो रब की देन है, मेरा इसमें क्या कमाल है। सॉरी, मुझे आपकी बात थोड़ी समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बहुत ऐसा, दोबारा बोलिए। जी जी, पूछिए पूछिए। मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, दोबारा बोलिए। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि क्या नहीं बोलना माइक पे। हाँ बस जी हाँ, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।

0: जी हाँ, ऐसा ही है। सिर्फ रेडियो प्रेजेंटर बनने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बहुत से अवामिल में हमें यही ख्याल रखना होता है कि यहाँ क्या नहीं करना, यहाँ ख़ुद को कैसे रोकना है, यहाँ क्या बात है जो नहीं करनी है। हमारी ज़्यादातर तवज्जो रहा करती है उन मामलात की तरफ, उन अवामिल की तरफ जो करने होते हैं। हमारी कोशिश होती है कुछ करना सीख लें, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कुछ ना करना। एक और कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे आप? ठीक हैं?
0: अच्छा हूँ जनाब, कौन है, कहाँ से?
1: जी, मेरा नाम खालिद है, मैं रावलपिंडी जी से बात कर रहा हूँ।
0: ठीक है, आप ठीक हैं जनाब?
1: आपका प्रोग्राम जी सर बहुत बहुत मेहरबान सर, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत सलाम सर।
0: वालेकुम
1: सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है सर, मैं बहुत शिद्दत से इंतजार करता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे
1: सर? और आपका शेर व शायरी का बहुत अच्छा है सर।
0: सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।

वो कहती है सुनो जाना मोहब्बत मोम का घर है, तपस्या बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। वो कहती है सुनो जाना मोहब्बत मोम का घर है, तपस्या बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। मैं कहता हूं कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो वहां कुछ और हो तो हो मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे, कि मैं इसमें कमी कोई भी गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूं मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है जुदाई से बहुत डरता है दिल मेरा, कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूं यही खदशे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम, मेरी बातें मेरी यादें मेरी आंखें भुला दोगे। मैं कहता हूं कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, अगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें थमने लगती हैं। वो कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है, कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूं। मैं कहता हूं कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। वो कहती है मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो, कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूं। मैं कहता हूं मताए जा बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूं जिंदगी महसूस करता हूं। वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते कि तुम्हें बता सकूं कि दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूं मोहब्बत तो निगाहों से छलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है, तुम्हारी खामोशी। वो कहती है बताओ ना किसको खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो जिसे ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूं ये मेरी शायरी है आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। वो कहती है कि आतिफ जी बहुत बातें मनाते हो, मगर सच है ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। मैं कहता हूं ये सब बातें फसाने एक बहाना है, कि पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाए, पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाए, फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं।

सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की। दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की। अहले महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, मैं भी खामोश रहा, उसने भी पुरसिश नहीं की।

जिस कदर उससे ताल्लुक था चला जाता है, जिस कदर उससे ताल्लुक था चला जाता है, इसका क्या रंज हो जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की। और ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शिश नहीं की हमने गुजारिश नहीं की। एक तो हमको अदब आदाब ने प्यासा रखा, उस पे महफिल में सुराही ने भी गर्दिश नहीं की। हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की। ऐ मेरे अब्रे करम देखिए वीराना जा, क्या किसी दश्त पे तूने कभी बारिश नहीं की। कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मक्तले शहर में ठहरे रहे जुम्बिश नहीं की। वो हमें भूल गया हो तो अजब क्या है फराज, हमने भी मेल मुलाकात की कोशिश नहीं की। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होंठों ने जुम्बिश नहीं की।

मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। आपके टेलीफोन कॉल्स हैं 9202540 पर। और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051

0: तो अब चंद टेलीफोन कॉल्स को शामिल करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जनाब।
1: काफी टाइम के बाद आपको सुन रहे हैं। इतना टाइम तो नहीं गुजरा, तकरीबन योम अशूर के बाद
0: जी हाँ
1: आज आपको सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनते हुए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: आज कुछ रंग ही हो रहा है सैयद की जुबान में, बैठे ही कुछ और है, गुफ्तगु ही कुछ और है।
0: ठीक है
1: शाह जी, बहुत गिने चुने हुए लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत बख्शी होती है कि जिनकी आवाज में मिठास और जिनकी आवाज में दर्द होता है, मतलब जुबान में मिठास और आवाज में दर्द होता है।
0: आपकी मोहब्बत है जनाब।
1: बहुत बहुत गिने चुने लोग होते हैं अल्लाह ताला ने जिन्हें गॉड गिफ्टिंग सलाहियत से नवाजा होता है।
0: आपकी मोहब्बत
1: जिनमें आप हैं।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्कियां अता फरमाए, फतेहें अता फरमाए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत सारी इसलाह की है हम जैसे नाकार लोगों के लिए।
0: ठीक है।
1: जैसे कि आपकी गुफ्तगू में मैंने करने की बात सुनी। अच्छा, कुछ एक करना ऐसा होता है कि इंसान कुछ दुनियावी ख्वाहिश लेकर चलता है और वो पूरी नहीं होती, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की मसलियत होती है।
0: बेशक ऐसे ही।
1: यहाँ पे एक और करने के बारे में हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा है, पंजाबी का वो शेर लिखते हैं कि करना करना हर कोई आखे, मैं भी आखा करना, करना करना हर कोई आखे,
0: मैं भी आखा करना,
1: मैं भी आखा करना, जिस करने विच खुशबू ना होवे उस करने नु क्या करना।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: अब इस बात को लेकर अगर चला जाए ना, इसमें बहुत बड़ी गहराई की बात है। अगर समझे तो ये बहुत बड़ी बात मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमा गए हैं।
0: ऐसे ही है।
1: तो मैंने कहा आज आपसे ये शेयर कर लूं।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस पे बात करूंगा
1: इंशाल्लाह। सलाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए।
1: और आपके लिए स्पेशल सलाम सर।
0: बहुत शुक्रिया।

0: आपके पैगामात भी शामिल करूंगा जनाब। अपने 4471 पर अपना पैगाम भेजना है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा, एक स्पेस के बाद अपना पैगाम अपने नाम और जगह के नाम के साथ 4471 पर भेजिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जनाब, आप ठीक है?
1: ये आपकी नशरियात अचानक से गायब हो गई है, फिर से नहीं आ रही।
0: अच्छा कहाँ पे?
1: ये फर्क इस्लामाबाद में।
0: अच्छा चलें टेक्निकल टीम को ये पैगाम पहुंचाते हैं।
1: वो जब वो बेना बात कर रही थी कि रेडियो आरजे बनने के लिए चाहिए होता है, तो उसके बाद तो वो चली गई, आ ही नहीं है। तो
0: अच्छा
1: हम सुन रहे हैं, आ जाएगी। पहले भी गायब हुई थी थोड़ी देर के लिए, आ गई थी, अब नहीं आ रही।
0: ठीक है ये पैगाम पहुंचा देते हैं जनाब।
1: और सब तबीयत ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ जनाब, अच्छा हूँ।
1: ज़्यादा
0: जी फरमाइए इरशाद।
1: मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दवा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जा बदब, मुझे जिंदगी की दुश्मन दे। मैं गमे जहाँ से निडाल हूँ, कि सरापा हजन व मलाल, जो लिखे हैं मेरे नसीब में वो अलम किसी को खुदा न दे।
0: बहुत अच्छा।
1: न ये जिंदगी मेरी जिंदगी, न ये दास्तां मेरी दास्तां, न ख्याल वहम से दूर हूँ, मुझे आज कोई सदा न दे।
0: बहुत अच्छा।
1: मेरे घर से दूर हैं राहतें, मुझे ढूंढती है मुसीबतें। मुझे खौफ ये कि मेरा पता कोई गर्दिशियों को पता न दे।
0: बहुत अच्छा।
1: तेरा क्या भरोसा है चारा घर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। तेरा क्या भरोसा है चारा घर, ये तेरी ख्वाहिशें मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे।
0: बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा।
1: मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे।
0: बहुत अच्छा।
1: दर यार पर बड़ी धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। अभी नहीं अभी नींद आई है, हुस्न को कोई शोर करके जगा न दे।
0: बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा।
1: मेरे दाग दिल से है रोशनी, यही रोशनी मेरी जिंदगी। मुझे डर है मेरा चारा घर, ये चराग तुम ही बुझा न दे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: सलामत रहिए
1: सलामत रहिए सलामत रहिए तमाम सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है कैसे हैं आप? ठीक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए तबीयत ठीक है?
0: मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे?
2: मेरी ठीक है यार, आपका बहुत अच्छा लगा यार, खूबसूरत आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, मैं सुनती हूँ आपको बहुत शौक से यार, कमाल आवाज है यार।
0: बहुत शुक्रिया।
2: आवाज बहुत अच्छा आप प्रेजेंट करते हैं, शेयर शेयरिंग ऐसे कोई नहीं कर सकता जैसे कि आप करती हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
2: मैं बहुत पहले भी सुनती थी आपको, इतने प्रोग्राम आपके सुने हैं तो मुझे अच्छा लगा।
0: अच्छा चले आपका उसने समाया था, बहुत शुक्रिया।
2: मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सलाम कहना चाहूंगी आपके भाई रिमशा नीलापी और सभी सुनने वाली स्नातों का सलाम है, रिमशा को मेरा सलाम है। ठीक है
0: ठीक है,
2: आपके लिए बहुत ही दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया सलामत रहिए।
2: थैंक यू अल्लाह
0: हाफिज़।

शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। तुम सर बसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं, मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं। गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले हमें। है जो हमारा एक हिसाब, उस हिसाब से आती है हमको शर्म के पे हम मिले तुम्हें। तुमको जहाने शौक व तमन्ना में क्या मिला, तुमको जहाने शौक व तमन्ना में क्या मिला। हम भी मिले तो दरहम और बरहम मिले तुम्हें। अब अपने तौर ही में नहीं तुम सो काश के, अब अपने तौर ही में नहीं तुम सो काश के। खुद में खुद अपना तौर कोई दम मिले तुम्हें, खुद में खुद अपना तौर कोई दम मिले तुम्हें। और इस शहर हीला जो में जो महरम मिले मुझे, फरियाद जाने जा वही वही महरम मिले तुम्हें। और देता हूं तुमको खुश किए मिजगां की मैं दुआ, देता हूं तुमको खुश किए मिजगां की मैं दुआ। मतलब ये है कि दामने पर नम मिले तुम्हें, मतलब ये है कि दामने पर नम मिले तुम्हें। मैं उनमें आज तक कभी पाया नहीं गया, मैं उनमें आज तक कभी पाया नहीं गया। जाना जो मेरे शौक के आलम मिले तुम्हें, तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया। शर्मिंदा हैं कि उसमें बहुत खम मिले तुम्हें। तुमने हमारे दिल में बहुत बहुत दिन सफर किया, शर्मिंदा हैं कि उसमें बहुत खम मिले तुम्हें। और यूं हो के कोई और ही, यूं हो के और ही कोई हवा मिले मुझे, यूं हो के और ही कोई हवा मिले मुझे। हो यूं के और ही कोई आदम मिले तुम्हें, हो यूं के और ही कोई आदम मिले तुम्हें। मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं, गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें।

0: मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और मुसाफत शब एफ एम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। 1:27 हुआ चाहते हैं, 2 बजे तक आपका मेरा साथ है इस महफिल में। चंद कॉल्स को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: एक दफा फिर मैं आई हूँ आजमाने कि मेरी कॉल करती है कि नहीं।
0: अच्छा
1: कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक
1: हूँ। बोल रही हूँ कराची से जी। माशाल्लाह अच्छे, बड़े अच्छे अच्छे शोरा को शामिल कर रहे हैं आप। अभी जॉन साहब थे ना ये?
0: जी हाँ।
1: इनका तो अंदाज ही बिल्कुल अलग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और आप पढ़ते भी बहुत खूब है, खूब भी पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आते एक बात पूछूं जरा सी आपसे।
0: जी जी।
1: आपने एक दफा किसी प्रोग्राम में बताया था कि आपने नहीं शायद या मुझे ख्याल है आपने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपने मास्टर्स किया था।
0: जी हाँ।
1: है ना, और मुझे ये लगता है कि आपने उर्दू लिटरेचर में किया होगा।
0: उर्दू में मैंने कुछ भी उर्दू जितनी जितनी लाजमी थी उतनी ही पढ़ी है मैंने, उसके अलावा उर्दू शौक में रही है बस।
1: कमाल है सच में। मैं तो यही मैंने कहा पता नहीं आते ने वहाँ गलती से गलत बोल दिया या यहाँ गलत बोल दिया।
0: बल्कि
1: जवाब उर्दू है,
0: बल्कि मैं अपने अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और वो दौर जो था उसमें वालिद ने बड़े शौक से, मैं वो वाहिद बच्चा था जिसको इंग्लिश मीडियम में डाला था। और मुझे याद है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपने बात छिड़ी तो मुझे वाकया याद आ गया कि हमारे टीचर ने हमें ये ऑप्शन दिया, वो था आई थिंक सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट था या पाकिस्तान स्टडीज़ का, तो उसमें हमें उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में रख सकते हैं। तो मैंने बड़े शौक से वो उर्दू में रखा, तो वो अगले दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बताए बगैर वो कॉलेज चले गए और उन्होंने कहा कि ये उर्दू का ऑप्शन आपने क्यों रखा है, हमने इसलिए तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो उससे हुआ ये कि वो पूरी क्लास का इंग्लिश में हो गया, वो जिनको उर्दू का ऑप्शन था वो भी खत्म हो गया, उनका आप सबके सब इंग्लिश में ही पढ़ेंगे।
1: तो आजकल के बच्चों के साथ भी यही है और मुझे बड़ा दुख होता है। आते हमारी अपनी जबान है, आपने तो वाकई कमाल किया है कि ये आपका रहा भी नहीं सब्जेक्ट और बहुत बहुत ही अच्छा भाई। अल्लाह ताला और आपको इसमें और आगे तक ले जाए। बहुत
0: बहुत शुक्रिया।
1: चलिए मैं आपको एक ऐसे शायर की एक नज़्म सुना रही हूँ जिनको आप अभी पढ़ चुके हैं, आप इनको पहचान जाएंगे। मोहब्बत के चिरागों को हवा कैसे बुझाएगी, मोहब्बत के चिरागों को हवा कैसे बुझाएगी, हवा पुरजोर है पुरशोर है मुजोर है लेकिन, हवा चालाक है सफाक है बेबाक है लेकिन, हवा यरगार है आजार है तलवार है लेकिन, हवा बेमहर वैशी लहर है पर कहर है पुर कहर है लेकिन, मोहब्बत के चिरागों को हवा कैसे बुझाएगी।
0: बहुत अच्छा।
1: लेकिन मोहब्बत का आखिर है मोहब्बत का, मोहब्बत का जो जमीन है मोहब्बत का वही मालिक हवा भी है,
0: आपकी आवाज ब्रेक होने लग गई है माजद के साथ। बहुत खूबसूरत नज़्म आप शामिल कर रही थी लेकिन माजद के साथ आपकी आवाज ब्रेक होने लगी, दोबारा कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जनाब।
2: अब्दुल्लू हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: ठीक है, आप ठीक हैं जनाब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशवा महरम के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ अब्बास साहब को और अमन फराज साहब को।
0: ठीक है।
2: तो अमन फराज साहब ने एक मनसब कही है इमाम हुसैन अली मुकाम, इमाम अली मुकाम की शान में।
0: लेकिन मैं चाहूंगा कि मुनासबत से अगर आप कुछ सुना दें तो सही रहेगा, जो प्रोग्राम की मुनासबत चल रही है। जी हाँ।
2: गजल, गजल पे
0: जी जी
2: तो
0: जी जी।
2: तो फराज साहब की गजल है। ये मैं भी क्या हूँ इसे भूल कर उसी का रहा, कि जिसके साथ ना था हम सफर उसी का रहा।
0: बहुत अच्छा।
2: वो बुद्ध के दुश्मन दिन था बकौल नाथे के, सवाल सजदा जब आया तो दर उसी का रहा।
0: बहुत अच्छा।
2: हजार चारों घरों ने हजार बातें की, कहा जो दिल में सुखन वो सबर उसी का रहा। जबरदस्त शेर है। हजार चारों घरों ने हजार बातें की, कहा जो दिल में सुखन वो सबर उसी का रहा।
0: बिल्कुल।
2: बहुत सी ख्वाहिशें इसको बादशों में भीगी हैं, मैं किस तरह से کہوں عمر بھر اسی کا رہا.
0: واہ واہ واہ.
2: لگتا ہے کہ اپنے حرف کی توقیر جانتا تھا فراز. اسی یہ کفے قاتل پر سر اسی کا رہا.
0: بہت اچھا.
2: یہ میں بھی کیا ہوں اسے بھول کر اسی کا رہا. کہ جس کے ساتھ نہ تھا ہم سفر اسی کا رہا.
0: بہت اچھا.
2: یاد رکھیں
0: سلامت رہیں آباد رہیں. بہت شکریہ.

और इस मुसाफत में अगला पड़ाव आगाज़े मोहब्बत जो कि बहुत खूबसूरत हुआ करती है, वहां से कुछ आगे चलकर पहले पड़ाव पर कुछ ख्याल बिखरते हुए महसूस हों और उसके बाद ये इदराक होने लग जाता है इंसान को कि शायद कुछ ऐसा है कि इस जज्बे में अब वो बात रही नहीं जो आगाज में हुआ करती थी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मुझे एक कशिश हुआ करती है किसी अजनबी के लिए, वो कशिश शायद अपना बन के अब महसूस हुआ नहीं करती, ऐसा लगने लगता है। और ये पड़ाव हुआ करता है जब इंसान को लगता है कि बहुत सी मजबूरियां हैं जो इस एहसास को लिए चल रही हैं। यह हम इंसान अपनी जात के अंदर एहसासात के साथ साथ इतना एहसास रखते हैं, यूं कहिए कि ये एक तरह से हमारी अखलाके ही हुआ करती है कि हम यूं ही उठ के चल नहीं दिया करते, इतना भरम रखते हैं शायद। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने की जो वजूहात हुआ करती हैं वो हम पेश नजर रखते नहीं हैं। हमें सिर्फ जज्बा नजर आता है, हमें सिर्फ इंसान नजर आते हैं, हमें सिर्फ लहजे नजर आया करते हैं, हमें तल्ख जुमले नजर आया करते हैं और हमें यूं लगता है कि रिश्ते में, ताल्लुक में, एहसास में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। अजीब हुआ करते हैं हम इंसान जिन एहसासात के लिए कभी पूरी ताकत लगा दिया करते हैं, उन्हीं एहसासात में जब कहीं कोई अना आ जाती है, कहीं कुछ तल्ख जुमले आ जाया करते हैं और एक छोटी सी दरार हुआ करती है, हम उसको भरने की काविश नहीं किया करते, हम उसको बढ़ने देते हैं और वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उसका कोई सिरा रहता नहीं है जिसको थाम सके इंसान। और दोष दे दिया करते हैं हम इस मोहब्बत के जज्बे को।

और यह पड़ाव हुआ करता है जिस पड़ाव को हम बस कबूल करने लग जाते हैं, हम मानने लग जाते हैं कि अब हमारी जिंदगी में यही है और हमें इसी को लेकर चलना है, यही पड़ाव है। उस रिश्ते को, उस दरार को भरने की काविश नहीं हुआ करती। और वही पुरजोश इंसान जो अपनी पूरी जान लगा दिया करता है उस एहसास के लिए, अपने सामने खड़ा इस एहसास को टूटता हुआ देख रहा होता है और कुछ कर नहीं पाता, या शायद कुछ करना चाहता ही नहीं है, न जाने क्यों। एक तसल्ली सी हुआ करती है कि यही हमारे इंसान होने की दलील है, यही दलील है इस शय की कि हम अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, जहन रखते हैं। हमें यूं लगता है कि हम खुद को बचा रहे हैं,

लेकिन कहीं वो एक थोड़ी सी कसक बाकी होती है, थोड़ी सी कजी बाकी हुआ करती है। वही उस रिश्ते की कुछ यादें, उसके कुछ नकूश जिनको धुंधला नहीं कर पाते, लेकिन हकीकत आशना भी होते चले जाते हैं। ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, कितने अंदेशों की हामिल हैं ये दिल की धड़कन है। बेशतर इसके के हम फिर से मुखालिफ समत को बेखुदा हाफिज कहे चल दें झुका कर गर्दने। आओ आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। आओ उस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तलख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैवस्ता किया। वो जो इस गम से ज्यादा जहां गुसल कातिल रहा, वो जो एक सेले बला अंगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मोजन, चीखती यादें लिए उजड़े हुए सपने लिए। मैं भी नाकाम वफा था, तू भी महरूम है मुराद। हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रास आ गया, तेरी खोई मुस्कुराहट कह कहों में ढल गई, मेरा गुमगुश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दोपहरों में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी घटाएं हो गईं, तेरा बर्फीला बदन बेसाख्ता लो दे उठा, मेरी सांसें शाम की भीगी हवाएं हो गईं। जिंदगी की साथें रोशन थी शमों की तरह, जिस तरह से शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह महताब की वादी में दो साए रवा, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में। आओ आओ ये सोचें भी कातिल हैं तो बेहतर है यही, आओ ये सोचें भी कातिल हैं तो बेहतर है यही, फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें, अपने अपने बेवफाओं के लिए रोते रहें।

सितारे लहू में लुथड़े थे, हवा के हाथ में खंजर था और फूलों की फटी फटी हुई आंखों में एक दहशत थी। इरादे टूटते जाते थे और उम्मीदें हिसारे दश्त में बिखरी थीं इस तरह जैसे निशान भटके हुए काफलों के रह जाएं। हमारे पास से लम्हे गुजरते जाते थे, कभी यकीन की सूरत कभी गुमान की तरह उभरता डूबता जाता था वसवसों में दिल, हवाए तुंद में कश्ती के बाद बां की तरह। अजीब खौफ का मंजर हमारे ध्यान में था, सरों पे धूप थी और महर साहिबान में था। चिराग बुझते थे लेकिन धुआं न देते थे, नहीं थी रात मगर रत जगह मकान में था। हुरूफ भीगे हुए कागजों पे फैले थे, था अपना जिक्र मगर अजनबी जबान में था। नजर पे धुंध का पहरा था और आईना किसी के अक्से फसूं साज के गुमान में था। हम एक राह पे चलते तो किस तरह चलते, तेरी जमीन किसी और ही मदार में थी, मेरा सितारा किसी और आसमान में था। हम एक दूजे से मिलते तो किस तरह मिलते, समय का तेज समंदर जो दरमियान में था। हम एक दूजे से मिलते तो किस तरह मिलते, समय का तेज समंदर जो दरमियान में था।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफिर शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काविश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं, शामिल करना चाहूंगा। हज़रत, बात हुई एहसासात की, आगाज़ मोहब्बत की, और मोहब्बत की मुसाफत में आने वाले बहुत से मोड़, ज़िंदगी की मुसाफत में जिसमें मोहब्बत को साथ लिए चलते हैं हम, वो मुंजमिद जज्बा जिसको कोई तमाज़त पिघलाने लग जाती है और हम इंसान उसकी गिरफ्त में आ जाया करते हैं। वो जो अदवार हुआ करते हैं, वो अदवार गुजरते चले जाते हैं और गुजरते रहेंगे जब तक हम समझने की काविश नहीं करेंगे कि वो जो दरार पड़ने लगती है उसको हम भरते क्यों नहीं हैं। ऐसा क्या है कि हम हाथ बढ़ाते नहीं हैं। हमारी अना हुआ करती है शायद, हम इंसान बहुत अना परस्त हैं, न जाने क्यों हमें अपनी अना बहुत प्यारी होती है। किसकी नज़र में यह हमें मालूम नहीं, अपनी नज़र में या जो लोग हमारे गिरद नवा में हुआ करते हैं उनकी नज़र में अपना कोई मकाम, और वो क्या मकाम, क्या उस मकाम का कोई नाम हुआ करता है। और अगर देखा जाए तो वो तलखियाँ, वो तल्ख जुमले, वो कड़वे अल्फाज, और ऐसा कुछ भी क्यों कर आ जाया करता है, क्यों कर डेरा डाल लिया करता है, ऐसा क्या है। हम इंसानों की जिबिल्लत में एक बात शामिल है कि हम जीतना चाहते हैं, हम अपना आप मनवाना चाहते हैं, लेकिन बस ये भूल जाया करते

हैं कि कहां जीतना है और कहां खुद को रोक लेना है। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। लेकिन ये अनाज जब शामिल हो जाया करती है और हम बस सिर्फ जीतना चाहते हैं जिंदगी के हर मैदान में, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमें कब सिखाया गया था ये, कब बताया गया था ये। हम तो खाली जहन आए थे इस दुनिया में। हमें तो जो बताया गया, जो हमने सीखा इसी दुनिया से सीखा, वो कौन लोग थे जो हमें ये सिखा गए, जो हमें ये बता गए कि बस जीतना है, गर्दनों पर पैर रखकर जीतना है, जज्बों का खून करते हुए जीतना है, किसी भी तरह जीतना है, बस हासिल करना है, जीतना है। हमें जीतने का मतलब ही नहीं बताया, हमें यह नहीं बताया कि उन्होंने जो कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। वो सब्र करने वाले कौन हुआ करते हैं और वो कब सब्र किया करते हैं। वो जो उन्होंने कहा है कि तुम शुक्रगुजार रहोगे तो मैं और अता करूंगा, तो शुक्रगुजारी क्या है, हमें यह बताया नहीं, यह हमने सीखा नहीं। हम बस इस दुनिया की दौड़ में भागते चले जाते हैं, इस मुसाफत में हम किसी पड़ाव पर रुकना ही नहीं चाहते। हमें लगता है बहुत कम वक्त है और बहुत कम वक्त में हम कसीरुल मकासिद लोग न जाने क्या हासिल करने की दौड़ में भागते चले जाते हैं। और जब कभी मुजमहिल होकर चंद लम्हे हमें मुयस्सर आ जाएं, और अगर कहीं कहीं कोई एक छोटी सी कुछ हासिल कर लेने की तमन्ना हमारी जात के अंदर हो, जिसकी किरण रोशन हो, कोई ऐसी कंदील हो जिसकी रोशनी कहीं से हमारी तारीख जात के अंदर कुछ एक थोड़ा सा हिस्सा रोशन कर सके, तो हम हकीकत आशना होने लग जाते हैं। लेकिन ये जो अना है, ये ऐसा खौल हमारे गिर्द बना दिया करती है कि कहीं से कोई रोशनी, कोई किरण हमारे वजूद में दाखिल नहीं हो सकती। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने खुद को क्या बना दिया है। हमने कोई गुंजाइश नहीं रखी कि हमारी जात के अंदर कोई रोशनी की किरण दाखिल हो सके, तो ना हमें सब्र करना आता है, ना हमें शुक्रगुजारी आती है। हम हारते हैं तो कहते हैं कि न जाने हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हां, यकीनन किसी ने हमारे खिलाफ कोई चाल चली होगी। हमें दूसरे के कंधे पर डालना आता है, हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर पाते हैं। हमारा जहन इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाता कि हमसे भी कुछ गलत हो सकता है। हम अना परस्ती के उस खौल में न जाने खुद को क्या समझ रहे होते हैं। जब हमें यह मालूम पड़ता है कि वो कहते हैं कि कोई मुश्किल जो तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने किसी किए की वजह से होती है, और फिर तुम हमें पुकारते हो, और फिर जब हम वो मुश्किल दूर कर देते हैं तो यूं मुंह फेर लेते हो जैसे हमें जानते ही नहीं। हां, ऐसे ही तो हुआ करते हैं हम इंसान। और जब हम अपनी जात के अंदर इतनी गुंजाइश रखते हैं कि हम चुप कर सकें, हम खामोश रह सकें, जब हम पलट कर जवाब ना दें, जब हम कुछ ना करें, खुद को रोक सकें कि यहां कुछ ना करना बेहतर है, यहां जवाब ना देना बेहतर है, यहां खामोश रहना बेहतर है। उस्ताद कहा करते थे कि जब तुम्हें कोई ऐसी दलील मिल जाए जिससे तुम दूसरे को जेर कर सको, तो उस वक्त में वो दलील रोक लो और उस इंसान से ताल्लुक को बचा लो। लेकिन हम तो नेस्तो नाबूद करना जानते हैं। और यकीन कीजिए कि जब इतनी गुंजाइश रखी हो अपनी जात के अंदर कि एक किरण दाखिल हो जाए, तो वो एक किरण ही अपना काम कर दिया करती है। इतना ही चाहिए होता है। और
हम जो समझते हैं कि हम इंसान कुल कायनात हैं, हमारा जहन जो जानता है वही सब कुछ है, दर हकीकत वो कुछ भी नहीं हुआ करता। हमें उतना ही पता होता है जितना हमने देखा होता है, और इन दो आंखों से हम कितना ही देख सकते हैं। बहुत से ऐसे राज हैं इस कायनात के जो हम तक नहीं पहुंचे, और इस तरक्की के दौर में पहुंचकर हमें यूं लगता है कि हम बहुत कामयाब इंसान हैं। तो कोई पल मुयस्सर आ जाए, अगर कोई लम्हे मुयस्सर आ जाए खुद से मुलाकात के, तो ये सोचना चाहिए कि वो क्या है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि चंद लम्हों को रुक कर हम सोचें कि क्यों है कि ये दरारें बढ़ती चली जा रही हैं, क्यों है कि हम दूर होते चले जा रहे हैं इंसानों से, क्यों ऐसा है कि हम अपने दिल की बात किसी समाज से नहीं कर सकते। हमारे हाथ में एक टेलीफोन है, एक मोबाइल है जिससे हम अपने दिल की बात कर रहे होते हैं, और उससे हमें जवाब की तलब हुआ करती है। और कैसी अजीब बात है कि चंद लम्हों के लिए वो जवाब हमें मुतमइन भी कर ही दिया करता है, लेकिन किसी अस्पताल में जो मरीज मुंतजर है अपने किसी अजीज का कि वो उससे मिलने आएगा, उसको एक उसके मोबाइल पर मैसेज या उसको एक टेलीफोन कॉल या एक फूलों का गुलदस्ता वो खुशी नहीं दे सकता जो उसके अजीज का अपना वजूद, उसका लम्स, उसकी कुर्बत, उसकी आवाज, उसकी खुशबू उसको दे सकती है। इंसानों के लिए इंसान बहुत जरूरी है, इंसान को मुआशरती पैदा किया गया है। अगर हम चंद लम्हों के लिए इन मशीनों को बंद कर दें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम तो कुछ भी नहीं। हमें यूं लगेगा कि जैसे सारी दुनिया बंद हो गई है, हमने खुद को इनमें महव करके रखा हुआ है और भागते चले जा रहे हैं। कोई पड़ाव नहीं है, कहीं रुकते नहीं हैं। और जब वो किरण हमारी जात के अंदर दाखिल होती है, वो रोशनी की किरण, और जब वो डेरे डालती है तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, कोई है जिसने ये कह रखा है कि मैं तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाऊंगा, लेकिन उसकी राह पर चलना होगा, वो राह जिसको वो सराते मुस्तकीम कहते हैं। और जब उस राह पर चलने लगते हैं और धीरे धीरे वो किरणें हमारी जात के अंदर डेरे डालती हैं, तब मालूम पड़ता है कि दर हकीकत नूर क्या है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज, और इससे बड़ी हकीकत और कुछ नहीं। मोहब्बत का जज्बा गलत नहीं था, मोहब्बत ही तो हकीकत है इस कायनात की, क्योंकि इस कायनात की ताज़ीन और आराइश बहुत मोहब्बत से की गई है। वो इंसान जिसको हसन तकवीम का दर्जा दिया गया, उसकी तख्लीक बहुत मोहब्बत से की गई है। तो मोहब्बत ही है जो करनी है, और ये इंसान मोहब्बत ही के मुस्तहिक हैं, तल्ख लहजों के नहीं। जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम कीजिए, खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा आपकी ज़िंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज़ को याद रखिएगा, और कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो माज़त चाहूँगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आतिर अली सैयद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी।